सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 15 जुलाई वर्ष 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को है। आइए अब आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सीईटीए आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता डीसीसी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन सीईटीए और डीसीसी का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथेसिय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार

0: मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत की सुंदरता अत्यंत अनूठी और मनमोहक है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय है तो दक्षिण में विशाल समुद्र, पश्चिम में सुनहरा रेगिस्तान है तो पूर्व में घने और हरे भरे जंगल। ये विविधता भारत को दुनिया भर में सबसे सुंदर और खास बनाती है। कवि सदियों से इस अतुल्य भारत की रूपरेखा और विविधता के गुण गाते आए हैं।

जैसे एक ही सोने के अलग अलग आभूषण होते हैं या एक ही मिट्टी से कई तरह के बर्तन बनाए जाते हैं, वैसे ही परमात्मा भी एक है, लेकिन इंसानों की आस्था के हिसाब से उसके रूप और नाम अनेक हो गए हैं। सभी धर्मों का सार यही है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और हर कण में उसकी शक्ति का वास है। आइए सुने ये भक्ति रचना।

जब भी प्रेम की बात होती है तब राधा और कृष्ण का नाम सबसे पहले स्मरण आता है। कहा जाता है कि जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो वृंदावन का कण कण मंत्रमुग्ध हो जाता था। मुरली की हर तान उनके हृदय में प्रेम, विरह और मिलन के अनगिनत भाव जगा देती थी।

सुख दुख, मान अपमान, प्रशंसा और निंदा, जब मन इन द्वंद्वों से ऊपर उठता है तब जीव को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इन बातों से विचलित हुए बिना आत्मिक शांति और परमात्मा की ओर बढ़ता है, वही जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ पाता है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख है चंद्रशेखर कुरिल का, वाचक स्वर है मनीष कुमार सोनी के।
1: भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवताओं से भी उच्च स्थान दिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद का उद्घोष है मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात माता और पिता साक्षात देवता हैं। इस संसार में मनुष्य का अस्तित्व उन्हीं के कारण है। माता जहां प्रेम करुणा और ममता की प्रतिमूर्ति है, वहीं पिता उस मजबूत छत के समान है जो हमें बाहरी दुनिया की धूप और तूफानों से बचाए रखता है। उनकी सेवा करना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक परम सौभाग्य और आध्यात्मिक साधना है। एक बालक के जन्म से लेकर उसके सफल होने तक माता पिता अपने सुखों का जो बलिदान देते हैं उसका मूल्य चुकाना असंभव है। गर्भ धारण करने से लेकर अपनी रातों की नींद त्याग कर शिशु का पालन करने तक माँ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। हिंदी के विभिन्न सामाजिक लेखों में अक्सर मातृत्व के मनोवैज्ञानिक संबंधों को रेखांकित किया गया है। पिता परिवार की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को दबाकर वे हमेशा बच्चों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। आज के भागदौड़ भरे जीवन और एकल परिवार के बढ़ते चलन में माता पिता की सेवा का महत्व और भी ज्यादा प्रासंगिक और बढ़ जाता है। सेवा का अर्थ केवल उन्हें भोजन या दवाइयां देना नहीं होता, बल्कि वृद्ध अवस्था में माता पिता सबसे अधिक अपने बच्चों का समय और साथ चाहते हैं। उनसे बैठकर बात करना, उनके अनुभव सुनना ही सबसे बड़ी सेवा है। उम्र के साथ स्वभाव में भी परिवर्तन आता है, कभी भूलने की आदत भी आ जाती है। ऐसे समय में उनके प्रति धैर्य रखना और सम्मान देना अनिवार्य है। समय समय पर उनके चिकित्सा, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, ये भी एक सेवा का भाव है जो आवश्यक है। हमारी संस्कृति के कई ऐसे महान उदाहरण हैं जो माता पिता के सेवा से जुड़े हुए हैं। जैसे एक उदाहरण श्रवण कुमार का है, जिन्होंने अपने माता पिता को कांवड़ बिठाकर यात्रा कराई और उनकी सेवा में अपने प्राण दे दिए। भगवान श्री राम का उदाहरण भी यहाँ प्रासंगिक हो चला है, जिन्होंने पिता के एक वचन को निभाने के लिए राजपाट त्यागा और 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। बुद्धि के देवता गणेश जी, जब ब्रह्मांड की परिक्रमा की बात आती है तो गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और सिद्ध किया कि माता पिता के चरणों में ही सारा संसार है। ये विडंबना ही है कि आज वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ गई है, कई बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझने लगे। सामाजिक विशेषज्ञों और कई शैक्षणिक लेखों के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है वो समाज में कभी वास्तविक सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। कानूनन भी माता और पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम बच्चों को उनकी देखभाल करने के लिए बाध्य करता है, लेकिन सेवा कानून से नहीं बल्कि हृदय से होना चाहिए। माता पिता की सेवा से मिलने वाला आशीर्वाद

0: अमोघ होता है। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं। जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको देखकर वही संस्कार सीखती है। कहा जाता है कि जिसकी सेवा से माता पिता प्रसन्न है उससे ईश्वर स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता हमारे जीवन के वे जीवित देव वृक्ष हैं जिनकी छांव में हम फले फूले हैं। उनकी सेवा करना हमारा नैतिक धर्म है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज जो हम हैं उन्हीं के संघर्षों का परिणाम है। उनकी वृद्ध अवस्था में उनकी लाठी बनना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होना चाहिए। तदनुसार मातृ देवो भव पितृ देवो भव।
1: अभी सुन रहे थे आप आज का चिंतन। आलेख था चंद्रशेखर कुरिल का और वाचक स्वर थे मनीष कुमार सोनी के। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। आज जानिए वर्षा जल संचयन भविष्य में जल संकट का समाधान, इस विषय पर जानकारी स्मिता दुबे से।
2: खेती की बात कार्यक्रम में स्वीकार करो तुम्हारी बहन स्मिता की राम राम। भाई बहनों, और आज अपन अपना इन कार्यक्रम में बात करा वर्षा जल संचयन भविष्य में जल संकट को समाधान। हाँ भाई बहनों, जल हमारा जीवन को सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, हम सब जाना है इके भी, और इका बिना तो जीवन की हम कल्पना भी नहीं करी सका। पर हम देख रहे हैं कि आजकल जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उका में भूजल को अत्यधिक जो दोहन हुई रही है, जंगलना की कटाई हुई रही है, जल को दुरुपयोग हुई रही है, यो हमारा सामने गंभीर जल संकट पैदा करी रही है। कभी हमने समय रहते या जल संचयन इके नहीं अपनायो तो आने वाली पीढ़ी ना के पानी की भारी कमी को सामना करना पड़ सके है। ऐसी स्थिति में हम चाहवा तो वर्षा जल संचयन सबसे सरल, सस्तो और प्रभावी उपाय है। भाई बहनों, वर्षा जल संचयन को अर्थ है वर्षा का पानी के एकत्र करी ने उको उचित उपयोग करनो। यो भी करी सका कि उके भूमि का अंदर पहुंचाई के और हम भूजल स्तर के भी बढ़ी सका। हाँ, हम घर ना की छत, विद्यालय हमारा, सरकारी भवन ना, इन सब में खेत ना में वर्षा का जल के संचयन की व्यवस्था करी के नरो साड़ो पानी बचाई सका। हाँ, वर्षा जल संचयन का नरा सारा लाभ भी है, जिससे भूजल स्तर बढ़े है, गर्मी ना में पानी जो है उनकी उपलब्धता बनी रहे, बाढ़ और जल भराव की समस्या नहीं होए, और खेती का सारू भी पर्याप्त पानी मिले। पर्यावरण संरक्षण में भी यो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावे और साथ ही भविष्य की जल आवश्यकता की पूर्ति करने में भी हमारी सहायता करे है। हम सोचा कि सरकार प्रयास करे तो भी पर्याप्त नहीं है, हम सब नागरिक ना के भी यो करना चाहिए। हमारो भी यो कर्तव्य है कि जल को उपयोग हम सोची समझी ने करा, पानी की एक एक बूंद के समझा और साथ ही वर्षा जल संचयन के जीवन को एक हिस्सा बनावा। बेबण और वैसे नरी सारी ऐसी विधि ना है जिका से हम वर्षा का जल के संचित करीने रखी सका। हाँ, और साथ ही हमारी खेती की सिंचाई का सारू भी पानी भर सका। देखो आजकल खेतना में जो तालाब बने हैं, खेत तालाब जिनके बोले, उनके बड़े के भी हम चावा तो उसमें वर्षा का जल के संचित करी के रखी सका। हाँ, जिका से कि कई बार हम सिंचाई करी सका बाद में, है नी। हमारा तालाब ना जो पुराना बनिया हुआ है उनको गहरीकरण करी के भी हम वर्षा का जल के ज़्यादा से ज़्यादा संचित करी सका। हमारी छतना का पानी जो है वो भी हम चावा तो हमारा घर का जो बोरिंग ना रहे ट्यूबवेल रहे उकी में उतारी सका। अच्छा, हमारा जो खेत ना है उका में जहाँ पे बोरवेल है वहाँ पे भी हम चावा तो खाड़ा खोदी ने उका में दगड़ पत्ती नाखी ने नरी सारी ऐसी व्यवस्था ना रहे कि भाई जिका पे रेती भरी दो थोड़ी घनी, तो ऐसे करी के और हम वर्षा का जल के भी जमीन का अंदर उतारी सका। हाँ भाई बहनों, और हम चावा तो बड़ी हमारी कदी बड़ी बड़ा मकान ना रहे तो उकी नीचे जमीन में टंकी बनवाई के भी हम छत को पानी उका में उतारी सका, बोरवेल में भी उतारी सका। हाँ, आसपास कहीं खाली जमीन पड़ी है तो उका में भी खाड़ो खोदी ने और दगड़ पत्थर नाखी ने और उका में भी पानी वर्षा को है उके जाने देवांगा तो उका से भी भूजल स्तर बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावांगा।

0: से भी हमारे वर्षा को जल हमारे पास सारू बचे गो। तो भाई बहनों ऐसी नरी सारी विधि ना है जी के करी के, और हम चावा छोटा छोटा डैम बने के इनमें भी नरी सारी हमारे सरकार भी मदद करे है, तो इनके करी के हम वर्षा का जल के संचित करी के रखी सका हाँ। और भविष्य में आने वाली जो परेशानी है वर्षा की कमी से, पानी की कमी से, उकसे निदान पाई सका हाँ। इका साथे मारी वाणी के दुआ विराम, राम राम।
1: अभी सुन रहे थे आप खेती की बातें, जिसमें आज हमने जाना वर्षा जल संचयन, भविष्य में जल संकट का समाधान, इस विषय पर जानकारी, और जानकारी दे रही थी स्मिता दुबे। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग रंजन जोगलेकर के गायन स्वर में।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शतरूपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शतरूपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फलमूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

अभी सुन रहे थे आप श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग, रंजन जोगलेकर के गायन स्वर में। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आपकी प्रशंसा और प्रतिक्रियाओं से सजा आपका पत्र कार्यक्रम आज लेकर आएंगे हम सुबह 7:20 से। सुबह 8:30 से श्रोताओं सुनना न भूलिएगा फिल्म संगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम आपको सुनवाया जाएगा आज सुबह 9 से। बिहारी दास राव के गाए कुछ मालवी लोकगीत इस कार्यक्रम में सुनिएगा, और साथ ही सुगम संगीत में आप सुनेंगे ए हरिहरन की गाई कुछ गैर फिल्मी रचनाएं। सुबह 9:15 पर सुगम संगीत, और उसके बाद सुबह 9:30 से सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे प्रकृति वाहने का संतूर वादन, राग होगा बैरागी भैरव। आपकी फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन-इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन हम लेकर आएंगे सुबह 10:05 से, और सुबह 11 से सुनिए एक और फोन-इन कार्यक्रम, फोन करें और गीत सुने। दोपहर 12 से सुनिएगा फिल्म संगीत, और संग्रहालय से ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 से। महिला कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 1, लोक संगीत दोपहर की सभा में सुनिएगा 1:30 से, और सुगम संगीत 1:45 पर। 2 से फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे आप। और चित्रपट संगीत सुन सकेंगे दोपहर 2:30 से। शाम 5 का समय होगा युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का। शाम की सभा में 5:45 से आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत, और हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCRT का आप सुनेंगे शाम 6।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम की सभा में सुनिए ए हरिहरन की गाई कुछ और गैर फिल्मी रचनाएं शाम 6:30 से, और लोक संगीत के कार्यक्रम में हरिहरेश्वर पोद्दार की गाई कुछ लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:45 से। शाम 7:20 का समय होगा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का। आज सुनिए मशरूम की खेती में नई संभावनाएं, इस विषय पर उर्वशी उपाध्याय की वार्ता। श्रोताओं, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर कर्टन रेजर कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:15 से। रात 8:30 का समय होगा हमारे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का। चित्रगीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 से, और चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम रात 9:30। नाटक तबादला, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता होंगे संजीव मालवीय। ये नाटक आप सुनेंगे रात 10:00 से। श्रोताओं, हमारी शाम की सभा में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 से, जिसमें शास्त्रीय संगीत में रात को आपको सुनवाएंगे प्रकृति वाहनी का संतूर वादन, राग होगा पुरिया कल्याण।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, संस्कृत में समाचार कुछ ही देर में दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः अद्य प्रवर्तते। तेन सह सामाजिक सुरक्षा सन्धिरपि, या डीसीसी इति द्विगुण अंशदान सन्धिः नाम्ना प्रसिद्धः क्रियान्वितो जातः। अनेन ब्रिटेन देशे कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यावसायिकेभ्यः कार्यावसराः प्रतिस्पर्धा सामर्थ्यं च वर्धिष्यन्ते। एषः सन्धिः तावत् ब्रिटेन देशस्य विपण्यां 99% यावत् शुल्कश्रेणीषु भारतीय वस्तूनां शून्य सीमा शुल्कं सुनिश्चीकरोति, येन भारतीय निर्यातस्य संवर्धनं भविष्यति। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् वाणिज्य सचिवः राजेश अग्रवालः इतं सन्धिं भारतस्य व्यापार विकासे महत्वपूर्णं सोपानम् इति अवर्णयत्। प्रशासनेन निगदितं यत् तैः पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य सूक्ष्मावलोकनं विधीयते। भारतेन होमुर जल सन्धि मध्यस्थात् सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यद् वैश्विक स्तरे जनानाम् आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते। मन्त्रालयेन ईरान देशस्य उपाभियान प्रमुखं समाहूय एकं वक्तव्यं प्रकाशितम्। श्री जयसवालः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन तेहरान प्रशासनाय स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटय्य तत्र दुरापन्नानां घटनाक्रमाणां तीव्रा निन्दा विहिता। अस्मिन् आक्रमणे एकस्य भारतीयस्य अमूल्यं जीवनं विनष्टम्, बहवः भारतीय नागरिकाः च व्रणिताः सञ्जाताः, येषु केचन गंभीराः सन्ति। प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढ विरोधः प्रकटितः, सहैव एतादृशानां आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं च प्रदत्तम्। अनेनैव सः तेनोदीरितम् यत् क्लेश शमनाय उभय पक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य संवाद राजनययोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिमेशिया क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। वित्तीय अपराध निरोधकेन प्रवर्तन निदेशालयेन महादेव आभासीय द्यूत तन्त्रांश सम्बद्धे कथित धन शोधन प्रकरणे एकस्याः प्रशासनेतर तन्त्रांश वित्तीय प्रौद्योगिकी संस्थायाः अध्यक्षः निगृहीतः। केन्द्रीयाभिकरणेन अचिरमेव तस्य अध्यक्षस्य तस्य कुटुम्बीनाम् अथ तेन स्वयं संचालितानां नियन्त्रितानां च विभिन्नानां व्यावसायिक प्रतिष्ठानां 40,900,000,000,000 रूप्यकाणां स्थावर जंगम सम्पत्तिः विधिवत् कुण्ठिता। असमराज्ये विनाशकारिणः जलाप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि नितरां संकटमयी वर्तते, येन राज्यस्य 600 अपि जनपदेषु 37,000+ जनाः अत्यन्तं दुष्प्रभाविताः। शोकाकुले अस्मिन् संकटावधौ शोणितपुर जनपदस्य चारिद्वार मण्डले जले निमज्जनात् एकः जनः पञ्चत्वं गतः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रकटिता। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृश्येव संकट स्थितिः उत्तर पूर्व भारते छत्तीसगढ़ झारखण्ड पश्चिम बंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। पुरुषोनाम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडांगणे भारतेन इंग्लैंड दलं षट्स्तोभैः पराजितम्। अक्षर पटेलः स्वस्य उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे दोहरा अंशदान समझौता भी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिनवाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच

0: यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयार जाबल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।
2: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: प्रायोजित कार्यक्रम वदन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर GST की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे अपने भोपाल केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की करेगा मेजबानी। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। इंदौर से अबुधाबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का आगाज आज से। और भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में कल 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सौश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। ये सेमिनार आचार्य सुश्रुत की जयंती के मौके पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सीईटीए आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है, जिससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: SME, इनोवेशन, लेबर, एनवायरमेंट एंड जेंडर।
0: प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव की शुरुआत आज से होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस महोत्सव का शुभारंभ इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में करेंगे। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा। इंदौर के अलावा 17 जुलाई को धार, 19 जुलाई को झाबुआ, 21 जुलाई को अलीराजपुर, 23 जुलाई को बड़वानी, 25 जुलाई को खरगोन, 27 जुलाई को बुरहानपुर और 30 जुलाई को खंडवा में बलराव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी, उन्नत बीजों, नवीन कृषि यंत्रों, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण तथा शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। महोत्सव में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उत्कृष्ट किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जनकल्याण के लिए सरकार ने 10,800 करोड़ रूपये के अलग अलग विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय अधोसंरचना विकास मद में 8,445 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रूपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति पर मोहर लगाई है। मंत्रिपरिषद ने कुंडलिया वृहत सिंचाई परियोजना 31 मार्च 2000

0: 2031 तक संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसे राजगढ़ और आगरमालवा जिले के 1,39,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दूसरे दिन आज आगरमालवा और खंडवा सहित प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल में इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
2: हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियां आ गई, लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 से वित्त पोषित प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से अबुधाबी का आज शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबुधाबी से सीधे जोड़ेगी। टाटा समूह की विमानन इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित यह सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। इंदौर से अबुधाबी हवाई सेवा प्रारंभ होने से मालवा निमाड़ के क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वार्ता पिछले सप्ताह वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने सभी पहलुओं पर ठोस प्रगति की और कई मुख्य मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बॉयलिंग वाटर रिएक्टर और लाइट वाटर रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थमने के बाद भोपाल समेत कुछ शहरों में दिन का तापमान बढ़ गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में पिछले 6 दिन से भारी या अति भारी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 241.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य बारिश से 260 मिलीमीटर कम है। वहीं पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल में औसत से 6% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज और सतना समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला कोषालय में 16 और 17 जुलाई को तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए IFM IS केयर्स कैंप लगाया जाएगा। अशोकनगर में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को सिविल जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। ओमान में होने वाली यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 के लिए मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के 4 खिलाड़ियों आयुष, करण, महक और नौशीन का चयन भारतीय टीम में किया गया है। डिंडौरी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से बाइक रैली निकाली गई और इंदौर में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जिलों में 14 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्तक सेड स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की करेगा मेजबानी। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। इंदौर से अबुधाबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का आगाज आज से और भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र।

0: लफ्ज कागज पर उतरे तो एहसास बन जाते हैं, दिल से लिखे जाए तो खत खास बन जाते हैं। इस कार्यक्रम में हर चिट्ठी एक कहानी है, यहाँ आपके शब्द भी आवाज बन जाते हैं। जी हाँ, आ गए हैं हम लेकर आपकी भावनाओं, प्रशंसा, प्रेम और प्रतिक्रियाओं से सजा कार्यक्रम आपका पत्र। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी तृप्ति लटपटे
1: और राजेश पाठक का
0: नमस्कार।
1: तृप्ति जी, क्या बात है, बादल छा रहे हैं, बारिश हो नहीं रही है
0: जी,
1: और बारिश का माहौल है
0: बिल्कुल।
1: और इनके साथ साथ, बारिश के माहौल के साथ साथ, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के पत्रों की भी बरसात हो, मेल की बरसात हो
0: बिल्कुल।
1: तो ये और अधिक से अधिक हो। तो सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम अपना ये लाइव पत्रोत्तर जो चल रहा है, इसका आप मेल बता दें
0: जी। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है apkapatraindori@gmail.com पर। आपका पत्र इंदौर @gmail.com, ये हमारा मेल आईडी है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी प्रशंसा, अपनी शिकायतें, सब कुछ हमें इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं
1: जी। और जो मेल नहीं कर पाते हैं और पत्र भी नहीं भेजे हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9993290063, एक बार पुनः सुन लें, 9993290063, इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी भावनाओं जो हैं हम बिल्कुल शेयर करेंगे। तो बादल की बात हो रही थी, तो बादल छाए बरसात की रात हो, दिल की गहराइयों में खो जाए जब बारिश के साथ हो, हर बूंद में छुपी है एक कहानी, बारिश के मौसम में जीते हैं हम अपनी जिंदगानी। और हमारे जो श्रोता हैं वो अपने पत्रों और मेल के साथ इस आशा के साथ जी रहे हैं कि हमारा बिल्कुल नंबर बिल्कुल आएगा
0: जी,
1: बिल्कुल आप बिल्कुल लिखें और अजमाएं, बिल्कुल हम आपकी भावनाओं के साथ शेयर करेंगे। और एक स्वस्थ विचार होनी चाहिए ताकि लोग, सुनने वाले को भी अच्छा लगे
0: बिल्कुल,
1: कि हम लोग भी स्मार्ट हो रहे हैं
0: बिल्कुल, हमें इंतजार रहता है।
1: हिंदी साहित्य में बारिश मौसम सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि कवियों की भावनाओं, प्रेम और विरह को दर्शाने का एक सशक्त माध्यम रही है। पंत और निराला जैसे कवियों ने इसे प्रकृति का श्रृंगार और क्रांति का प्रतीक माना है, जो विरह और उदासी में जीवन में नवनिर्माण की उम्मीद लाती है। और फिलहाल हम अपने श्रोताओं के मेल का उम्मीद कर रहे हैं, व्हाट्सएप का उम्मीद कर रहे हैं
0: जी।
1: तो अब हम सिलसिला शुरू करते हैं पत्रों। तो ये सबसे पहले हमारे किन श्रोताओं के मेल की बरसात हुई है, एक एक करके पढ़ें
0: जी। पहला पत्र है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम आगनपुरे, वंदना भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी का। इन्होंने कहा है कि हमें आकाशवाणी इंदौर के

0: ये कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। दिनांक 11 जुलाई 2026 को जो कार्यक्रम विकसित होता भारत, इन्हें बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में अक्षय शर्मा ने अक्षय ऊर्जा माध्यम के प्रोपराइटर से दुर्गेश नंदिनी जी की बातचीत जो थी, इन्हें काफी लाभदायक लगी। साथ ही 14 जुलाई 2026 को महिला सभा कार्यक्रम इन्हें बहुत पसंद आया, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना के विषय में जो जानकारी दी गई, इन्हें बहुत लाभदायक लगी। साथ ही रूप लावण्या में नाखून की चमक बरकरार रखे और मानसून के विषय में दी गई सभी जानकारी इन्हें बहुत पसंद आई और इन्होंने प्रेजेंटर नीलम चौरी जी को बहुत सारी बधाइयां दी है।
1: आप का हम बधाइयां जो है उन तक प्रेषित कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ से काफी अच्छे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं
0: जी।
1: पीएम सौर ऊर्जा जो है, इस पर केंद्रित कार्यक्रम काफी लोगों ने पसंद किया। पसंद के साथ अगर अपनाएंगे, और इसमें 78,000 की सब्सिडी भी अगर आप लगाते हैं घर पर, तो आपने हमारा कार्यक्रम पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल लेने के पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज 15 जुलाई 2026 है। इसका महत्व क्या है? नेशनल बीए डॉर्क डे की स्थापना हानि रहित सामाजिक असहजता और लोगों को यादगार बनाने वाली मनमोहक विलक्षणताओं का जश्न मनाने के लिए की गई थी, और नेशनल क्लीन ब्यूटी डे की स्थापना संभावित रूप से हानिकारक सिंथेटिक रसायनों के बिना सौंदर्य प्रसाधनों और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। इसके अलावा जो है सेंट एस्टेवन दिवस भी है, और 15 जुलाई को इतिहास के प्रमुख घटनाओं में विमान निर्माता कंपनी बोइंग की स्थापना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देने की घोषणा, और भारत के महान सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म भी शामिल है।
0: क्या बात।
1: और इसके अलावा जो है 15 जुलाई का जो महत्व कई आयने में है, जैसे खास करके हमारे युवा दोस्तों के लिए 15 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और इसके अलावा इस दिन को राष्ट्रीय पालतू पशु अग्नि सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और विश्व रबर वर्म दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। तो खास करके जो विश्व युवा कौशल दिवस जो आज मनाया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन की शुरुआत 2014 में युवाओं को तकनीक, व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करने के महत्व को उजागर करने के लिए की गई थी। इसके अतिरिक्त नेशनल क्लीन ब्यूटी डे भी मनाया जा रहा है। तो आज ढेर सारे दिवस हैं, ढेर सारे दिन मना रहे हैं
0: जी।
1: बहुत बहुत
0: बहुत विशेष दिन है आज।
1: हमारे पास एक श्रोता फोन कर रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप के माध्यम से अशोक जी, आपका हम जो भी भावनाएं हम शेयर करेंगे, बहुत बहुत
0: जी। और राजेश जी, मैं श्रोताओं को एक बात और कहना चाहूंगी कि ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नहीं है, तो आप जो मेल कर रहे हैं गीतों के लिए, आप गीतों के लिए मेल ना करिए, उसके लिए हमारा
1: आप जो सप्ताह भर का कार्यक्रम सुनते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कार्यक्रमों में कैसा
0: कोई सुधार
1: हो, क्या क्या गड़बड़ियां हो रही है
0: जी,
1: हम ताकि हम सभी लोग मिल के जो आकाशवाणी से जो प्रसारित हो एक अच्छी संदेश श्रोता तक पहुंच सके
0: जी। इससे जुड़े अपनी सारी प्रतिक्रियाएं आप हमें मेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो अगले खत की ओर बढ़ते हैं। अगला पत्र है जो भेजा है हमें कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली जी ने। इनका कहना है कि 10 जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा सुना, जो कि नगर की गतिविधियों पर केंद्रित था, बहुत पसंद आया। इसी दिन सुबह 8:30 बजे अंतरण बातचीत क्रम में डॉक्टर पंकज अग्रवाल से ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी जी की बातचीत इनके मन को भा गई। 12 जुलाई को वसुंधरा के अंतर्गत भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण विषय पर डॉक्टर विवेक चौरसिया की वार्ता प्रेरणादायक लगी। इसी दिन सुनहरे पल कार्यक्रम में दो जुबली महान अभिनेता राजेंद्र कुमार और प्राण के बारे में बहुत कुछ जानने को और सुनने को मिला। इन्हें गीत और सब कुछ बहुत पसंद आया, शालिनी जी को बधाई दी है। साथ ही 14 जुलाई को सुनहरे पल में 60 से 70 के दशक के अपने जमाने के पार्श्व गायिकाओं में कमल बारोद, वाणी जयराम, प्रीति सागर जैसे बहुत सारे कलाकारों को शामिल किया गया। पद्मश्री जी ने इन गायिकाओं के इतिहास के बारे में बड़ी सहज और संजीदा ढंग से श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाई, जिसके लिए वो उन्हें काफी शुभकामनाएं दे रहे हैं।
1: और आपकी शुभकामनाएं जो है हम उन तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ढेर सारे कार्यक्रम काफी ध्यानपूर्वक सुनते हैं
0: जी। बिल्कुल।
1: भेरूलाल बख्तरिया धाकर जी।

0: बुंदेलखंड जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हमें व्हाट्सएप किए हैं। लिखते हैं 12 जुलाई को सुबह वसुंधरा कार्यक्रम में डॉक्टर विवेक चौरसिया जी से भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण वार्ता में सनातन काल से जल का महत्व और गंगा अवतरण की कथा, गंगा मैया का स्वर्ग से सीप जटाओं से होकर पृथ्वी पर गोमुख गंगोत्री तक आना और गंगा सागर में विलीन हो जाना आदि जानकारी बहुत पसंद आई। वार्ता की अंतिम पंक्ति जल का स्वरूप नहीं धर्म देखा जाता है बहुत अच्छी लगी। आज प्रातः भजन गायिका रंजन जोगलेकर की आवाज में रामचरितमानस में स्वयंभू मनु और सतरूपा के राजपाट त्याग कर कंदमूल फल खाकर नैमिषारण्य वन में कठोर तप करने का प्रसंग बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो मानस गान आप सुनते हैं एक किसान होकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत
1: और बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल। और भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण के बारे में डॉक्टर विवेक चौरसिया जी ने जो बताया, वास्तव में विषय की गहराइयां काफ़ी थी और कई लोगों को दिल को ये छू लिया। और यह सार्थक तभी होगा जब हम भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए जल संरक्षण का कार्य करेंगे। वर्षा के एक एक बूंद को हम सहेजेंगे ताकि आने वाले भविष्य में हम अपने बच्चों को पानी की कमी ना हो, इसका जो है हम सुनिश्चित कर सकें।
1: काफ़ी सारे देश हैं जो पानी की कमी से आज से ही जूझना चालू हो गए हैं, तो हमें अभी से सतर्क होना पड़ेगा, अभी से अवेयर होना पड़ेगा, तभी जाकर भविष्य में हम सब इन परेशानियों से बच सकते हैं।
0: जी, स्लोगन भी है, सेव ड्रॉप ऑफ रेन वाटर।
1: जी बिल्कुल।
0: एक एक बूंद को बचाना होगा, खेत का पानी खेत में ही संरक्षण करना होगा। अब देखिए हमारे पास खरगोन से रचना राजेश खेड़े जी, तनुज अनुपमा, हनी खेड़े जी, सीबी जी लिखे हैं। प्रस्तुतकर्ता को बधाइयां देते हुए लिखे हैं, आपको भी उन्होंने नमस्कार किया है, मेरे को भी किया है
1: नमस्कार।
0: और लिखते हैं, आपके केंद्र के सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, 9 जुलाई का आपका पत्र जो है बहुत मनमोहक लगा। और महिमा जी और राजेश जी की सफल प्रस्तुति के लिए इन्होंने धन्यवाद किया है और इनके पत्रों का भी स्थान मिला, काफ़ी खुश हैं। और राजेंद्र कुमार जी पर फिल्माए गीतों ने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। और 14 जुलाई की खेती की बात में फसल जीवन बीमा की जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी लगी। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों पर केंद्रित हम जानकारी प्रसारित करते रहते हैं। श्रोताओं, सभी श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए आपने हमारे कार्यक्रमों को सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल
1: है अनिल बामनिया जी का इंदौर से। उनका कहना है कि आपका पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार अनिल जी। उनका कहना है दिनांक 8 जुलाई को आकाशवाणी इंदौर से हमने आपका पत्र कार्यक्रम सुना जो कि हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस दिन मेरे पत्र को पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका, बल्कि सब कुछ पढ़ा गया लेकिन पत्र पढ़ते समय आखिरी लाइन तक देखे, जिस उनका कहना है कि आखिरी लाइन तक उनका पत्र पढ़ा जाना चाहिए। और साथ ही उनका कहना है कि दिनांक 12 जुलाई को युवाणी कार्यक्रम उन्होंने सुना जिसमें बारिश को लेकर युवाओं से जो चर्चा की गई वो अच्छी लगी। तो प्रशंसा भी है और एक शिकायत भी है राजेश जी।
0: जी तो देखिए सभी आप लिखें, सभी पढ़ना और सभी श्रोता जितने भी मेल और व्हाट्सएप कर रहे हैं, एक साथ सामंजस्य बनाना जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप जो लिखें हम शामिल करें। अनिल बामनिया जी के साथ प्रमिला बामनिया जी, नंदनी, मुस्कान, नीलम और समस्त बामनिया परिवार जी ने ये व्हाट्सएप भी हमें किया है।
1: जी जी,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद भी। और आपसे यही कहना चाहेंगे, हम लाइव इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं और कोशिश यही रहती है कि जितने भी मेल्स और SMS हम तक पहुंच रहे हैं वो सभी को शामिल किया जाए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए श्रीमाली जी जो है हमें व्हाट्सएप भी किए हैं
1: जी।
0: और इन्होंने सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं इन्होंने किया है। और अमावस्या पर नर्मदा जी के उत्तर तट पर सफाई अभियान चलाकर नर्मदा जी से प्लास्टिक की सामग्री, गंदे कपड़े निकालकर नर्मदा जी के आसपास साफ सफाई व सभी श्रद्धालुओं को नर्मदा जी को स्वच्छ करने की अपील की है। बहुत अच्छे

0: सुंदर विचार हैं इन्हें, और ये कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, और वहाँ से इन्होंने वक्रोत्तर भी भेजा है। ये देखिए पूरी साफ सफाई जो है चल रही है, और नर्मदा का तट जो है बिल्कुल स्वच्छ है,
1: क्या बात,
0: और पूरी टीम है इनकी। तो इस तरह से जो सामूहिक कार्य करते हैं हमारे श्रद्धालुगण के लिए ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। बहुत बहुत
1: इन्हें बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे भी ऐसे कई सारे लोगों को जोड़ते रहे और ऐसा ही समाज में जो है वो काम करते रहे, ताकि इनसे और भी लोग प्रेरित हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला मेल,
1: अगले खत की ओर बढ़ते हैं, जो हमें भेजा है धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी जी ने दिनांक 14 जुलाई को प्रातःकालीन बेला में प्रसारित प्रोग्राम सुनहरे पल इन्होंने सुना, जो बहुत पसंद आया। इस प्रोग्राम में प्रस्तुतकर्ता पद्मश्री तपस्वी जी को नवाचार करते हुए कमल बारोट और काफ़ी सारे इन्होंने जो है वह कलाकारों के नाम लिए हैं, यानी गायिकाओं जिनके नाम स्थापित गायकों में शुमार नहीं है, बावजूद इनके गाए हुए गीत बहुत लोकप्रिय हुए हैं, ये सब इन्होंने शामिल किए जो इन्हें बहुत पसंद आया। पद्मश्री जी को बहुत सारा इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं उनका प्रिय गीतों को देने के लिए, साथ ही पूरी टीम को और इस प्रभावशाली पेशकश के लिए उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला,
1: अगला है सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह जी का, हमें ये मेल मिला है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। दिनांक 10 जुलाई को प्रातः 8:30 बजे प्रसारित अंतरण बातचीत के क्रम में डॉक्टर पंकज अग्रवाल से ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी जी की बातचीत मन को भा गई, बातचीत काफी सार गर्भित लगी। दिनांक 12 जुलाई को वसुंधरा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण विषय पर डॉक्टर विवेक चौरसिया की वार्ता इन्होंने सुनी, वार्ता काफी प्रेरणादायक लगी। वाकई में आज हम सभी को जल संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि जल है तो बेहतर कल है, इन्होंने कहा है। 14 जुलाई को प्रातः 7:20 पर फिल्म संगीत का सदाबहार नियमित कार्यक्रम सुनहरे पल सुना। इस कार्यक्रम में सन 1960 से 1970 के दशक की अपने जमाने की पार्श्व गायिकाओं के बारे में सार्थक जानकारी प्राप्त हुई। इतनी सफल और शानदार प्रस्तुति हेतु प्रस्तुतकर्ता साथी को हृदय से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। गांव लेकोरा आंजना उन्हेल जिला उज्जैन से लिख रहे हैं लखन दास बैरागी जी, व्हाट्सएप किए हैं और लिखते हैं, आज सुबह रामचरित मानस चिंतन और आपका पत्र हम इंतजार करते हैं, और दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को नमस्कार करते हुए लिखा है कि परिक्रमा में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अच्छी लगी और मुकाम सिंह चौहान जी की जानकारी जो है पसंद आई। आकाशवाणी के सारे कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए सभी लोग आनंद ले रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा
1: का। बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो एक बार फिर से याद दिला दें सभी को कि आप आपका पत्र कार्यक्रम में हमें मेल भेज सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया, प्रशंसा, सुझाव और शिकायतें हम तक पहुंचा सकते हैं।
0: हमारे बीच हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदारे जी लिखते हैं, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। कार्यक्रम पेश कर रहे पाठक जी और तृप्ति लटभटे जी, आप दोनों का प्यार भरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार।
1: आपको भी नमस्कार।
0: आकाशवाणी इंदौर और विविध भारती चैनल के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके इन्होंने चॉइस टाइम लिखा है, एमएच हॉटलाइन लिखा है, और मन भावन चॉइस टाइम में अपने अनाउंसर जी को, इन्होंने अनाउंसर नहीं लिखा अलाउंसर लिखा, तो अनाउंसर होते हैं
1: जी।
0: इनको ज्यादा से ज्यादा खत शामिल करने के लिए कहिएगा। हम तृप्ति जी और हम सभी उद्घोषक भाई बहनों को कहते हैं कि अधिक से अधिक श्रोताओं के खत पे और शामिल करें, तो नए श्रोता अगर और जुड़ते हैं तो और अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: होता क्या है कि एक ही श्रोता सभी कार्यक्रमों में सभी का नाम जाए, ये भी संभव नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और आगे लिखा है, जैसे मुकाम सिंह चौहान जी ने चॉइस टाइम में 125 खत शामिल करते हैं, पद्मश्री तपस्वी मैडम जी का जवाब नहीं। तो कुछ लोग कोशिश करते हैं, हम सभी से निवेदन करते हैं अधिक से अधिक जो है खत पत्र और मेल श्रोताओं को शामिल करें।
1: शामिल किया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गोरखे जी। अगला मेल,
1: अगला मेल हमें मिला है पालदाना का, इंदौर से, हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और बबलू मंसूरी जी का। सबसे पहले इन्होंने शायरी से शुरुआत की है, हमेशा की तरह जो इनका अंदाज है, फूल हो गुलाब

0: जैसा, महल हो ताज जैसा और आकाशवाणी हो तो इंदौर जैसा।
1: क्या बात,
0: आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: हम आपको भी नमस्कार
0: जी। हम इस कार्यक्रम में कोरोना समय के बाद पहली बार शामिल हो रहे हैं। हालांकि हम पहले बहुत पत्र भेजते थे जब पत्रों को ही शामिल किया जाता था, और अब ईमेल भी शामिल हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
1: देखिए, आकाशवाणी भी हाईटेक हो गया। पहले रेडियो लोग सुनते थे
0: जी,
1: और अब न्यूज ऑन एयर ऐप पर डिजिटलाइज हो गया। अब पूरे यहाँ के कार्यक्रम पूरा विश्व में सुना जाता है
0: जी।
1: तो समय के अनुसार जो है परिवर्तन करना चाहिए, चाहे आप अपने व्यवहारिक जीवन में करें या कार्यक्रम सुनकर हमारे साथ प्रतिक्रिया में करें। परिवर्तन जरूरी है, संस्था भी परिवर्तन करता है और
0: श्रोतागण
1: भी करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, जो वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो फिट है। परिस्थिति के अनुसार
0: अपने आप
1: को उसमें अनुकूलन आना चाहिए, अपने आप को अनुकूल कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आगे इन्होंने कहा है कि दिनांक 8 जुलाई को आपका पत्र बहुत ही अच्छा लगा। महिमा जी और राजेश पाठक जी द्वारा प्रस्तुत ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार लगा। ढेर सारे श्रोताओं की प्रतिक्रिया शामिल की गई, उनका जवाब बेहद खूबसूरत अंदाज में दिया गया। साथ ही 7 जुलाई को MH हॉटलाइन कार्यक्रम इन्हें एक नंबर लगा। प्रोग्राम की शुरुआत बहुत ही शानदार कव्वाली के साथ की गई।
1: क्या बात।
0: 8 जुलाई को चॉइस टाइम प्रोग्राम दिल को छू गया, एक से बढ़कर एक गीतों का समावेश हुआ। इस प्रोग्राम में जो रूपाली जी ने काफी तादाद में पत्र शामिल किए, सफल व आकर्षक प्रस्तुति हेतु उन्हें और पूरी टीम को शुक्रिया कहा।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें लिखा। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं आनंद जोशी जी, तनुजा जोशी जी लिखते हैं, इंदौर आकाशवाणी पर जल संरक्षण एवं हर बूंद पानी की किस तरह संरक्षित की जाए, इस पर बहुत शानदार चर्चा प्रस्तुत की गई, पूरी टीम को बधाई दिया है। आगे लिखते हैं, 28 एवं 29 जुलाई को इस वर्ष खंडवा में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा और दादाजी धूनी वाले की नगरी खंडवा में इस समय पूर्ण रूप से सेवा भाव लिए होती है। संपूर्ण देश के नागरिक और श्रद्धालु पधारते हैं। और देखिए, इस दिन जो है
0: जी,
1: जब मैं भी खंडवा आकाशवाणी केंद्र पर पदस्थ था तो हम भी श्रद्धालुगण के लिए स्टॉल लगाते थे। काफी लोग स्टॉल लगाते हैं, हर एक संस्था लगाती है
0: जी।
1: हर एक जितने भी स्वसेवी संस्थान और कई स्टॉल, और कई लोग, इसकी कल्पना नहीं है कितने लोग लगाते हैं, श्रद्धालुगण की सेवा करते हैं ऐसा। और ये पूरे देश में एक यूनिक टाइप का होता है, पूरा भंडारा और सब फ्री होता है।
0: क्या बात है।
1: और बारिश की
0: तो दूर दूर से लोग
1: बिल्कुल
0: आते
1: बिल्कुल होंगे। बारिश की बूंदे होती है, कई लोग पकोड़े बनाते हैं
0: जी। क्या जब मैं था
1: जी, तो उस समय एक बार कार्यक्रम देख रही थी आकाशवाणी के बगल में, एडिशनल SP सीमा लवा जी थी
0: जी।
1: वो भी पधारी और खुद ही भीड़ गई और हमारे श्रद्धालुगण को जो है सेवा में शामिल हुई और अच्छी पकौड़ा खिलाई।
0: क्या बात है,
1: बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच। तो इस तरह जो होता है, उस समय कोई अधिकारी अधिकारी नहीं रह जाता, एक सेवा होता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: चाहे शासकीय सेवा हो या किसी भी सेवा के माध्यम
0: या लोक सेवा
1: हो, लोक सेवा हो,
0: और पूरा दृश्य आपने
1: पूरा दृश्य एक अलग टाइप का माहौल हो जाता है
0: जी।
1: और ऐसा लगता है कि जब शासकीय सेवक और पब्लिक के बीच लगती है कि पूरी दूरियां खत्म हो गई है, तो इस तरह से पब्लिक भी आपस में इंटरेक्शन करते हैं और काफी सहज महसूस करते हैं। आपने हमें लिखा, गुरु पूर्णिमा उत्सव के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी
0: जी। अगला मेल हमें मिला है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से। अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मुसा, राजकुमार बोडाना, इन सभी का। साथ ही सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप का। इन्होंने हम दोनों को नमस्कार कहा है। नमस्कार आप सभी को।
1: आपको भी नमस्कार।
0: इस सप्ताह का सुनहरे पल कार्यक्रम मैंने बहुत अच्छा लगा। लोक रंजनी सुना, फोन करे गीत सुने, लोक संगीत, ये सारे प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। युवाणी में हेलो फ्रेंड से भी सुना, जो कि इन्हें बहुत पसंद आया, और इस सभी कार्यक्रम के लिए इन्होंने धन्यवाद कहा।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि आपके पास एक लिफाफा आया है, ये लिफाफा किन का है, ये अनिल बामनिया जी की
0: अनिल कवचाले जी का है। इनसे बस यही गुजारिश रहेगी कि थोड़ा ये राइटिंग जो है वो पढ़ने में थोड़ी हमें परेशानी आती है।
1: अनिल बामनिया जी, आपसे निवेदन है
0: अनिल
1: कवचाले जी कि आप जो है पत्र जो है आप बिल्कुल टाइप करवा के लिखें
0: जी,
1: क्योंकि आपका पत्र पढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए बहुत अफसोस के साथ मैडम जो है आपका पत्र नहीं पढ़ रही है। आप व्हाट्सएप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास एक व्हाट्सएप संदेश आया है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से, विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मैंक मुनत, चेतन नाहटा, ये लिख रहे हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम ज्ञानवर्धक मनोरंजन से भरपूर होते हैं और 3 जुलाई को खेती गृहस्थी कार्यक्रम में प्रगतिशील कृषक भेरूलाल बख्तरिया जी की जो भेंट वार्ता सुनी काफ़ी अच्छी लगी। सोयाबीन की फसल को लेकर काफ़ी इन्होंने लाभप्रद जानकारी दी। अच्छी जानकारी के लिए बख्तरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। देखिए वर्तमान समय में जो है सोयाबीन की फसल का जो बोने की जो तकनीक हमारे वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं वो रीज एंड फरो मेथड है। इसमें अगर वर्तमान समय में रीज एंड फरो मेथड से सोयाबीन की खेती करेंगे तो अगर ज़्यादा वर्षा हुई तो अतिरिक्त जो जल है वर्षा जल वो नाली के जरिए वो ड्रेन हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और अगर कम हुई तो उसमें जो संरक्षित जो पानी है उससे पौधे का जीवन कुछ हद तक, अगर कुछ बारिश में लंबी खींच हो जाती है तो भी कुछ चल जाती है। तो इस तरह का जानकारी और वैज्ञानिक देते हैं और हमारे किसान जो करते हैं वो बताते हैं, उनका अनुभव होता है, इससे काफी लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल
0: है सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाक से और ऋतुराज साक्षी चाहत सावले जी का। इन्होंने लिखा है, हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। दिनांक 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को महिला सभा कार्यक्रम बहुत पसंद आया। इस कार्यक्रम में माँ का दूध शिशु के लिए वरदान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विषय पर दी गई जानकारी बहुत पसंद आई। साथ ही माँ का दूध शिशु के लिए पहला टीका विषय पर डॉक्टर भारती द्विवेदी से प्रीति जोशी की बातचीत बहुत ही लाभदायक लगी।
1: बिल्कुल स्वास्थ्य वर्धक जानकारी है और देखते हैं, कहते हैं कि है किसी में दम जो माए का दूध पिया है आगे आए। तो वास्तव में ये जो है काफ़ी अच्छी जानकारी प्रसारित की गई और हम समझते हैं कि इसे पालन करना चाहिए भारतीय संस्कृति में।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच व्हाट्सएप आया है अस्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, बेबी बैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, मनीष वर्मा, रिहान खान, पायल जोशी, अंकिता जोशी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी और जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी ने हमें व्हाट्सएप किया है। इन्होंने लिखे हैं कि आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, हम आपके नियमित श्रोता हैं और पूरी हम लोगों का ग्रुप है, सारे ग्रुप सुनते हैं, शेयर करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं।
0: क्या बात,
1: तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है।
0: बहुत सारे रेडियो ग्रुप अलग-अलग शहरों से, अलग-अलग से हमें
1: लिखते रहते हैं। आपने हमें लिखा, कार्यक्रमों को सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सुझाव भी दिए हैं कि प्रतिदिन फरमाइश कार्यक्रम शुरू किया जाए ईमेल एवं व्हाट्सएप पर। आपका सुझाव जो है हमने नोट कर लिया है। बिल्कुल, आप लगता है कि सोहन जोशी जी अब धीरे धीरे डिजिटलाइज्ड
0: होते जा रहे हैं।
1: अब बिल्कुल पत्रों के साथ इन्होंने ईमेल और व्हाट्सएप की भी बात की, क्यों नहीं, हमारा केंद्र भी तो हमारे अपने क्षेत्र का जो कार्यक्रम हो रहा है न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से पूरे विश्व के किसी भी हिस्से में कहीं भी सुना जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और इतने सारे पत्र हमें मिलते हैं, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि उतने ही मेल और SMS भी हमें प्राप्त हो। आप
1: एक बार मेल आईडी और बता
0: जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं लाइव। हमारा मेल आईडी है आपका पत्र इंदौर @gmail.com। आप इसका स्पेलिंग नोट कीजिए, APKAPATRAINDORE@gmail.com आपका पत्र इंदौर radio@gmail.com नंबर बता दीजिए राजेशी व्हाट्सएप का
1: 9993290063 एक बार पुनः सुन लीजिए 9993290063 हमें लिख रहे हैं विक्रम चौधरी गांव बगरी जिला धार मांडव मेरे दोस्त लोग हैं इनके साथ राम जी राती उमेश वर्मा जी फौजी और धर्मेंद्र पटेल टी गांव से इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम सुनता हूँ बहुत अच्छी लगती है पूरी साप्ताहिक गतिविधियों को समेटे हुए गुड मॉर्निंग इंदौर जो हमें श्रोताओं के लिए जो पेश किया जाता है वास्तव में बिल्कुल विविध रंगी और समसामयिक जानकारी से परिपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल सही कहा और हमारा उद्देश्य यही है राजेश जी की सभी श्रोताओं से संबंधित जानकारी जैसे महिला सभा की बात हो रही है युवा साथियों की बात हो रही है हर एज ग्रुप हर तरह के श्रोताओं तक सही जानकारी और लाभदायक जानकारी पहुंचे।
1: हुकुमचंद कटारिया जी का पढ़ लिया क्या?
0: जी नहीं मेल नहीं मिला हमें हुकुमचंद कटारिया
1: और मेल अभी तक नहीं मिला। उन्होंने व्हाट्सएप किया है जिला खरगोन मध्य प्रदेश से इनके साथ हैं पिंटू सेन जी हरिनिवास खेरे जी बाबूलाल चौधरी जी मिश्रा गोल्डन केपी सिंह चौहान दीपक सचिन कटारिया कृष्ण बिराज अर्णव काव्यांशी कृतिका और श्रीमती परवा कटारिया ये लिख रहे हैं आदरणीय पाठक जी एवं तृप्ति जी नमस्कार आपको भी
0: आपको नमस्कार।
1: कुछ नशा तो आपकी बात का है कुछ नशा धीमी बरसात का है हमें आप यूं ही शराबी न कहें ये नशा तो पहली मुलाकात का है क्या बात है शानदार पंक्तियों के साथ आप शुरुआत किए हैं 9 जुलाई को आपका पत्र जो है एक कार्यक्रम सुना महिमा जी और आपका प्रस्तुति काफ़ी अच्छी लगी और 25-26 श्रोताओं के पत्र भी शामिल किए गए और 9 जुलाई को परिक्रमा कार्यक्रम में छत्रीबाग में स्थित लक्ष्मी वेंकटेश इसमें 10 जुलाई से 16 जुलाई तक राम उत्सव मनाया जा रहा है ये भी जानकारी काफ़ी अच्छी लगी और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का लोकार्पण अर्पण गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन से हमें मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ और पता चला आयुर्वेद की औषधियाँ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई अच्छा लगा और विविध भारती पर किड्स वॉइस टाइम कार्यक्रम में शालिनी जी मुकाम जी पद्मश्री तपस्वी जी रूपाली चौहान जी पूजा ठाकुर जी वसुंधरा कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण विषय पर डॉक्टर विवेक चौरसिया जी की जानकारी अच्छी लगी सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे और राजेंद्र कुमार आप प्राण की पुण्यतिथि पर शालिनी जी ने एक से एक गीत भरकर समावेश किया बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इन्होंने लिखे हैं कि 14 जुलाई को पद्मश्री तपस्वी जी ने पार्श्व गायकों के गीतों को सुनाए उनकी इस अनूठी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद किया है बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया जी। अगला मेल
0: राजेश जी जो आया है इसमें सिर्फ नाम आए हैं हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर और कालका से शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज जी ने सिर्फ नाम लिखकर भेजे हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं है।
1: क्या लिखे हैं?
0: सिर्फ नाम ही लिखे हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी है।
1: हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है कमलेश सदाशिव जोशी 53 गिरधर नगर इंदौर से लिखते हैं महोदय जी आपका कार्यक्रम काबिले तारीफ है मानस गान नियमित सुनता हूँ कार्यक्रम के साथ श्री रामचरित मानस ग्रंथ खोलकर सामने रख पढ़ने और श्रवण करने में एक साथ आनंद आता है बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी इंदौर से आज बालकंड के दोहा क्रमांक 145 का प्रसारण हुआ विविध भारती से अरण्य कांड के दोहा 18 का प्रसारण हुआ सुना अच्छा लगा और आगे लिखते हैं कि विविध भारती और आकाशवाणी इंदौर दोनों जगह से एक ही समय में मानस गान का प्रसारण होता है आप कृपा करके 7:45 से 7:55 तक प्रसारण करें ताकि हम दोनों कार्यक्रम सुन सकें आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है अगले फिक्स्ड पॉइंट चार्ट में हम कोशिश करेंगे कि कुछ सुधार करें। और दयाशंकर अमझड़े जी पलसूद जिला बरवानी से लिख रहे हैं आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम लंबे समय से सुन रहा हूं, काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो ऑनलाइन होते ही ऐसा लगता है कि समस्त भारत से जुड़ गया, भारत नहीं पूरे विश्व से जुड़ गए। सुबह की शुरुआत वंदे मातरम से होती है, आकाशवाणी के माध्यम से सूचना शिक्षा और मनोरंजन के जो ये समन्वित जो त्रिवेणी प्रवाहित होता है उसका कुछ आनंद ही कुछ और है। फिल्म संगीत और पुराने फिल्में नगमे जो सुनवाए जाते हैं

0: ऐसा लगता है कि हमारे अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार हो गया। बहुत ही सुंदर प्रतिक्रिया आपने लिखा है और पूरी टीम आकाशवाणी टीम मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर को इन्होंने बहुत बहुत बधाई दिया।
1: राजेश जी, आकाशवाणी जो है वो इन्फोटेनमेंट पे काम करता है, यानी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों, सूचना वो मनोरंजन दोनों को साथ लेकर चलता है, संस्कृति परंपरा सारी चीजों को एक साथ लेकर चला जाता है। इसीलिए उनका कहना है कि जैसे ही रेडियो ट्यून किया जाता है आकाशवाणी, लगता है कि पूरा देश जो है।
0: और यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। देखिए, डॉक्टर विवेक चौरसिया जी ने जो प्रसारित किया
1: जी,
0: भारतीय संस्कृति जल संरक्षण समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए कितने लोगों ने प्रतिक्रिया किया और आज इसकी आवश्यकता भी है।
1: बिल्कुल।
0: जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हमें व्हाट्सएप किए हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोराना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप लिख रहे हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, सुनहरे पल कार्यक्रम अच्छा लगा, लोक रंजनी सुना, फोन करें, गीत सुने, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे और युवानी में हेलो फ्रेंड कार्यक्रम भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इसी बीच हमारे बीच एक और व्हाट्सएप किए हैं चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावद जिला खरगोन से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नवोदित चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी एवं प्रद्युम्न सिंह चौहान लिखते हैं 10 जुलाई का चिंतन काफ़ी अच्छा लगा, मानस गान भी काफ़ी अच्छा लगा और इंदौर के छतरी बाग में लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर में चल रहे धार्मिक कार्यक्रम की जानकारी इंदौर परिक्रमा में मिली, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और साइबर क्राइम ब्रांच की सब इंस्पेक्टर सरिता सिंह, सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह जी ने श्रोताओं को फोन पर सीधी बातचीत कर फ्रॉड साइबर फ्रॉड से बचने की जो जानकारी दी काफ़ी अच्छा लगा और विवेक चौरसिया जी की जानकारी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको। एक मेल हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुरा राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का, उनका बस यही कहना है कि हम दोनों को नमस्कार करते हुए उन्होंने कहा है कि फरमाइश के अलावा आपके केंद्र से हमें बेहतरीन कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं, बस एक ही लाइन में जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। असीम माथुर जी लिख रहे हैं हमें, ये इंदौर के हैं, लिखते हैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ, मेरा आकाशवाणी से एक भावात्मक जुड़ाव भी है क्योंकि मेरे परिवार के कई सदस्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और इसलिए यह संस्थान मेरे लिए सदैव ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का विश्वसनीय माध्यम रहा है। आगे लिखते हैं, मेरा अनुरोध है आकाशवाणी इंदौर से नियमित एवं साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा के कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण प्रारंभ करने पर विचार किया जाए, देखते हैं हम और अधिक से अधिक कितना कार्यक्रम हम प्रसारित कर पाते हैं। आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। हिंदी हमारी पहचान और संस्कृति का अभिन्न अंग है तथा उनके संरक्षण और संवर्धन में आकाशवाणी का योगदान अतुलनीय रहा है। बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल,
1: हम बस मेल का इंतजार ही कर रहे हैं कि अभी आप हमें मेल लिख सकते हैं और अभी भी जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से, आपका पत्र indoor@gmail.com से और इसका स्पेलिंग है APKAPATRAINDOR@gmail.com, आपका पत्र indoor@gmail.com। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है
0: हमारे जी 999-329-0063। हमारे बीच पत्र हैं टेलर रामचंद्र धूम डिबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टीकू इंगोले और रमाबाई सुंदर इंगोले जी, और इसके अलावा जो है हमारे बीच मुकेश जी पत्र लिखे हैं और इसके अलावा जो है शेरपुरा कला गाजीपुर से अवधेश राय दुबीहा नेवदा गाजीपुर से और कोटवा नारायणपुर से, ये इनका फिल्म संगीत के कार्यक्रम चॉइस टाइम वगैरह अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा कई श्रोताओं ने हमारे पास लिखा है कि रेडियो रिपोर्ट जो प्रसारित किया गया
1: जी
0: रविवार को, जिसमें ये था द रोल ऑफ जेंडर इन पॉलिसिंग चैलेंजिंग राइट एंड वर्क प्लेस डायनेमिक, ये काफ़ी बहुत अच्छा लगा और हमें खास करके महिलाओं के लिए ये जानकारी जो है उपयोगी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और घड़ी की सुई जो है अब इशारा कर रहा है

0: श्रोताओं से विदा लेने का। तो अब हमें लगता है तृप्ति जी की पूर्ण बरसात हो चुकी है
1: जी बिल्कुल,
0: और बिल्कुल अब विदा लेने का
1: समय आ गया है
0: तो अब चलें। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: आपका पत्र कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी इंदौर से। कुछ ही देर में समाचार प्रभात हम अनुप्रसारित करेंगे दिल्ली केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
4: This is also one of the most ambitious.
5: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
4: SME, innovation, labor, environment and gender.
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
6: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नैनी पांडे।
3: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी

0: इन विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
1: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर

0: तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
2: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रूपये का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रूपये से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आकाशवाणी इंदौर से अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओ, कभी आपने आसमान में रंग बिरंगी रोशनी को नाचते देखा है? कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पत्थर अपने आप चलते हुए नजर आते हैं, या फिर ऐसी झील जिसका रंग मौसम के साथ बदल जाता है? धरती सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि रहस्यमय भी है। आज के इस हमारे फिल्म संगीत में हम आपको मिलवाएंगे दुनिया की कुछ ऐसी ही चमत्कारिक भौगोलिक घटनाओं से जिन्हें देखकर आपने को लगता है कि मानो प्रकृति खुद को कोई जादूगर समझती हो। तो अगले कुछ मिनटों में हम करेंगे ऐसे बहुत सारी जगहों की बात, और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह के साथ जिसे नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। जरा सोचिए, रात का अंधेरा हो और अचानक पूरा आसमान हरे, गुलाबी और बैंगनी रंगों से जगमगा उठे, यही है नॉर्दर्न लाइट्स। ये नज़ारा मुख्य रूप से नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा और अलास्का जैसे उत्तरी देशों में दिखाई देता है। असल में सूरज से आने वाली विद्युत आवेशित कण जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण में मौजूद गैसों से टकराते हैं तो ये रंगीन रोशनी पैदा होती है। यानी जो हमें जादू लगता है वो विज्ञान और प्रकृति का शानदार मेल है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों में गिना जाता है, और साथ ही ये कई सारे लोगों की बकेट लिस्ट में यानी स्वप्नों में शामिल है। बहुत सारे लोग इसे जीवन में एक बार अपनी आंखों से ज़रूर देखना चाहते हैं।

सीता और गीता इस फिल्म से सुना भी आपने ये गाना आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और राहुल देवबर्मन का संगीत था। श्रोताओं, क्या आपने कभी ऐसा समुद्र देखा है जो रात में नीली रोशनी से चमक उठता है? दुनिया के कुछ समुद्री किनारों पर रात के समय पानी ऐसे चमकता है मानो किसी ने उसमें लाखों नीले सितारे घोल दी हो। इसका कारण है बेहद छोटे समुद्री जीव जिन्हें डायनोफ्लेजेट्स कहा जाता है। ये लहरें उठती हैं या पानी में हलचल होती है तो ये जीव नीली रोशनी छोड़ते हैं। मालदीव, प्लूटो रिको और मैक्सिको जैसे देशों में यह अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है। प्रकृति का ये लाइट शो किसी फिल्मी स्पेशल इफेक्ट से कम नहीं लगता।

0: कोई मॉडल पुराना लगता है।
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती।
2: आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ में सुन रहे थे लव स्टोरी फिल्म से आप ये गाना। आनंद बख्शी गीतकार थे, संगीतकार राहुल देव बर्मन। और आप इसे सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, जहां चल रहा है फिल्म संगीत।
3: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जाँच लें।
4: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: श्रोताओं, अगर मैं आपको कहूं कि पत्थर अपने आप चल सकते हैं तो शायद आप यकीन मुश्किल से करेंगे, लेकिन अमेरिका के डेथ वैली नेशनल पार्क में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो जमीन पर अपनी पीछे एक लंबी सी रकीर छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। कई सालों तक इसे रहस्य माना गया, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सर्दियों में पतली बर्फ, तेज हवा और गीली मिट्टी मिलकर इन भारी पत्थरों को धीरे धीरे खिसका देती है, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये पत्थर चलकर आगे जा रहे हैं, यानी बिना किसी इंसान के हाथ लगाए प्रकृति खुद इन पत्थरों को चलाती है, इसलिए इन्हें चलते पत्थर कहा जाता है।

मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे गाना सरस्वती चंद्र फिल्म से, लिखा था इंदिवर ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। क्या आपने कभी सात रंगों वाले पहाड़ देखे हैं? पेरू के रेनबो माउंटेन और चीन के जांगिया डांशिया पर्वत अपनी रंग बिरंगी धारियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इन रंगों का कारण कोई पेड़ नहीं बल्कि लाखों वर्षों तक अलग अलग खनिजों की परतों का उन माउंटेन्स पर जमना है। आयरन, कॉपर और अन्य खनिज मिलकर इन पहाड़ों को लाल, पीला, हरा, नीला और नारंगी जैसे रंग देते हैं। ये नज़ारा देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से कैनवास पर रंग भर दिए हैं।

0: वक्त इस फिल्म का ये गाना सुना भी आपने आशा भोसले की आवाज़ में, जिसे लिखा था रवि साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया था रवि ने। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत मेरे यानी तृप्ति के साथ में। दोस्तों, सोचिए बर्फ से ढके सफ़ेद अंटार्कटिका में अचानक एक झरना बहता दिखे जिसका रंग बिल्कुल खून जैसा लाल हो। पहली नज़र में तो कोई भी घबरा जाए, लेकिन ये किसी रहस्य या डरावनी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार है जिसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। दरअसल इस झरने का पानी एक प्राचीन भूमिगत झील से आता है जिसमें लोह तत्व यानी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि ये पानी हवा के संपर्क में आता है और आयरन में जंग लगने की प्रक्रिया यानी ऑक्सीकरण होती है और पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बर्फीले वातावरण में भी सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो लाखों सालों से जीवित है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बने हुए हैं। तो अगली बार अगर कोई कहे कि प्रकृति रंगों से खेलना जानती है तो ब्लड फॉल्स का ये अद्भुत नज़ारा जरूर याद कीजिएगा।
1: अच्छा, ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मियों की निहार है?
2: हाँ है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: डन।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना अभी आपने ये गाना फिल्म आराधना से, एस डी बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल थे। तो दोस्तों, प्रकृति के इन अद्भुत चमत्कारों के साथ आज का हमारा ये खास सफ़र यहीं तक। उम्मीद है कि धरती के ये अनोखे करिश्मे आपको जान के हैरानी भी हुई होगी और कुछ नया भी आपने सीखा होगा, और साथ ही गानों को आपने आनंद भी उसका भरपूर उठाया होगा। इसी के साथ अब फिल्म संगीत को यहीं विराम देते हैं। तृप्ति को दीजिए इजाज़त। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। आज लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं बिहारी दास राव के गाए कुछ मालवी लोकगीत। शुरू करते हैं इनकी इस रचना के साथ।

ये मालवी लोक गीत अभी आप सुन रहे थे बिहारी दास राव की आवाज़ में। इन्हीं की आवाज़ में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम के कुछ मालवी लोकगीत। लीजिए, प्रस्तुत है इन्हीं के स्वर में कार्यक्रम का अगला व अंतिम लोकगीत।

बिहारी दास राव के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये मालवी लोकगीत, और इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे बिहारी दास राव के गाए कुछ मालवी लोकगीत। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, जहाँ चल रहा है सुगम संगीत का कार्यक्रम। और सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ए हरिहरन की गाई कुछ गजलें। लीजिए, प्रस्तुत है इन्हीं के स्वर में एक और रचना।

ये गजल अभी आप सुन रहे थे ए हरिहरन के स्वर में। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे ए हरिहरन की गाई कुछ गजलें, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपके लाए हैं प्रकृति वाहनी का संतूर वादन, राग है बैरागी भैरव।

प्रकृति वाहिनी का संतूर वादन अभी आप सुन रहे थे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में राग था बैरागी भैरव। तबले पर संगत दे रहे थे निशान शर्मा। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में जिले की चिट्ठी हम रिले करेंगे अपने भोपाल केंद्र से। जिले की चिट्ठी के बाद सुनिए कार्यक्रम MH हॉटलाइन।

हरदा जिले में बीते दिनों मानसून की दस्तक के साथ मौसम ने करवट ली। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बड़े उत्साह के साथ सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुआई पूरी की। हालांकि लगातार बारिश से कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर आ गए, ग्रामीण मार्ग प्रभावित हुए और कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी। बारिश थमने और धूप निकलने से लोगों को राहत मिली तथा जनजीवन पुनः सामान्य होने लगा। जिले के वनांचल क्षेत्र के उन किसानों के लिए शासन ने नई व्यवस्था लागू की है जिनके पास भूमि का पट्टा या वनाधिकार प्रमाण पत्र नहीं है। अब ऐसे किसान स्वघोषणा पत्र के आधार पर खाद बीज के लिए ई टोकन प्राप्त कर सकेंगे। जिले के खिरकिया रेलवे ओवरब्रिज परियोजना के लिए आईआईटी मुंबई की विशेषज्ञ टीम ने बीते दिनों ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ अलाइनमेंट का निरीक्षण किया। करीब 3 वर्ष से लंबित इस परियोजना को लेकर उम्मीद जताई गई है कि तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा। हरदा जिले में वट सावित्री पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ बीते दिनों मनाया गया। बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर 108 परिक्रमा लगाई और परिवार की सुख समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना की। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र की यदि बात करें तो लॉयंस क्लब हरदा अंबर ने निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन बीते दिनों किया। इस शिविर में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को ऑपरेशन के लिए भोपाल भेजा गया। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर जिले के वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान भी किया गया। जन जागरूकता के क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा जिले में सेफ क्लिक 2.0 अभियान का आयोजन किया गया, जिस अभियान के तहत राजा बरारी गाँव में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिला जेल हरदा में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आध्यात्मिक एवं समाज सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीते दिनों जिले में आयोजित पौधरोपण अभियान, स्वास्थ्य शिविर, सम्मान समारोह, स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रमों ने जिले की सामाजिक सक्रियता को नई दिशा दी। पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया बीते दिनों पूरी हो गई। विभागीय पदोन्नति समिति ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत कुल 109 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। हरदा जिले में दस्तक सह स्टॉप डायरिया कैंपेन का पहला चरण 31 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए जिले के अनुमानित 69,922 बच्चों को सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा IFMIS पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए जिले में 16 और 17 जुलाई को IFMIS केयर्स कैंप लगाया जाएगा। मेरा युवा भारत अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक बीते दिनों कलेक्टर सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में उन्होंने जिले में पोर्टल पर 15 से 29 आयु वर्ग के अधिक से अधिक युवाओं का पंजीयन, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय और वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हरदा जिले में ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 1 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जा रहा है। जिले में किसानों की सुविधा के लिए 40 ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बीते शनिवार को ADR सेंटर में स्कूली बच्चों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। न्यायाधीश चंद्रशेखर राठौर ने उपस्थित बच्चों को बताया कि भारत वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि जागरूक नागरिक बनकर वे समाज में जनसंख्या नियंत्रण, लैंगिक समानता, शिक्षा के प्रसार और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हरदा कलेक्टर ने जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समुदाय में जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन विकसित करने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड हरदा वृत्त ने विद्युत चोरी और अनाधिकृत विद्युत उपयोग पर लगाम लगाने के लिए विशेष सघन जांच अभियान चलाया। विद्युत अधिनियम एवं कंपनी के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए लगभग 1,15,35,000 रुपए की बिलिंग की गई। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जनपद पंचायत हरदा ने हंडिया क्षेत्र के नर्मदा तट के पास की दुकानों में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये जारी आदेश 9 जुलाई से प्रभावी हो गया है। पहली बार उल्लंघन करने पर 200 रुपए का आर्थिक दंड तथा दूसरी बार उल्लंघन करने पर 500 रुपए का आर्थिक दंड और तीसरी बार या बार बार उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील करने या लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। हरदा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ज़िले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी हरदा ज़िले की चिट्ठी। आलेख लोमेश कुमार गौर का था, वाचन था अभिषेक कटियार का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।

0: सभी को तृप्ति लटपटे का प्यार भरा नमस्कार और सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत। आइए आपको सुनवाते हैं पहला फरमाइशी गीत, लेकिन उससे पहले करते हैं बात, हमारे साथ देखते हैं कौन जुड़ रहा है कॉल पे। हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। किससे बात हो रही है मेरी?
1: अमीना जी मंजूरी बोल रही हूँ।
0: अमीना जी कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
0: एकदम बढ़िया है। अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है?
1: अच्छा है मैडम, आप लोगों की दुआ है हमारे साथ।
0: जी जी बिल्कुल, दुआ है और आप लोगों की दुआओं से आकाशवाणी इतना अच्छा चल रहा है। हमारी दुआओं से आप लोग स्वस्थ रहे, ऐसी कॉल करते रहे तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी मैडम
0: जी, बताइए कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: अल्लाह रखा का सुना दीजिए, परवर दिगारे आलम।
0: जी
1: देते रहे
0: जी जी, चलिए आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कॉल करते रहिए हमें। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: इनका हमारा पहला फरमाइशी गीत। और अब हमसे जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, देखते हैं कॉल पे हमारे साथ कौन है। हेलो MH हॉटलाइन। हेलो,
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है मेरी?
1: मैडम मैं रवि परमार, गया मेरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैम।
0: रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: मैडम बढ़िया है।
0: और कहाँ से सुन रहे हैं अभी? घर से सुन रहे हैं या बाहर कहीं से सुन रहे हैं
1: हम
0: रेडियो?
1: वहाँ घर पर ही बैठे थे, भैया साथ में बैठे थे, भगवान सिंह परमार जी उनके मोबाइल में सुन रहे थे, तो उनसे नंबर लिए आपके, तो
0: जी, तो
1: मैंने
0: आप
1: फोन
0: पहली
1: किया।
0: बार कॉल कर रहे हैं कार्यक्रम में,
1: मतलब फर्स्ट का बारी कॉल किया मैंने।
0: कितनी अच्छी बात है। लोग काफी दिनों से इंतजार करते हैं कि उनका कॉल लग जाए, पहली बार में आपने कॉल लगाया और आपका कॉल लग गया,
1: जी
0: बधाई हो
1: मैडम,
0: आपको।
1: कोशिश करने वालों की कहते हैं ना, हार नहीं
0: हार
1: होती।
0: नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो आप पहली बार न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सुन रहे हैं इसे?
1: जी जी मैडम, सुनते तो रहते हैं डेली हम भगवान
0: जी
1: सिंह भैया के मोबाइल पे, तो
0: जी जी जी पर कॉल पहली बार कर रहे हैं,
1: कॉल पहली बार लगाया था मैडम, वो लग भी गया मेरा।
0: बहुत अच्छी बात है। रवि जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं अभी की मेरी पढ़ाई चल रही है और साथ में खेती चल रही है मैम।
0: जी, तो खेती में क्या लगाया है अभी खेतों में आपके?
1: मैडम सोयाबीन लगाई हुई है, मक्का लगाई है, कुछ जगह में कुछ बागवानी सब्जी लगाई हुई।
0: जी, तो कौन सी सब्जियां ज्यादा लगाते हैं ऐसे आप?
1: मैडम जैसे चौली हुई है, भिंडी हुई है, बारिश वाली और लगाई हुई है, कल्चर बोलते हैं।
0: इसके अलावा फूलों की खेती भी करते हैं, जैसे गेंदे के फूल या कोई और फूलों की खेती?
1: मैडम फूलों की, गेंदे की फूल लगाए हैं, थोड़ी लगाए हैं गेंदे तो, ये साथ में बगल में काम पड़ता है
0: हाँ,
1: तो वहाँ के फूल बिक जाते हैं हमारे।
0: जी। और अभी त्योहारों का मौसम आने वाला है, तब तो फूलों की मांग बहुत ज्यादा हो जाती होगी।
1: जी मैडम खेत पर से ले जाते हैं मैडम, जो व्यापारी लोग रहते हैं वो नहीं आ जाते फार्म हाउस पे, वो ले जाते हैं फूल तोड़वा के ताजे
0: जी,
1: फूल।
0: क्योंकि त्योहारों में और शादी के मौसम में फूलों की मांग बहुत बढ़ जाती है।
1: जी जी मैम, सावन का महीना जो आ रहा है ना अभी।
0: जी, सावन का महीना आ रहा है, बिल्कुल सही कहा। और बाकी सोयाबीन की खेती का भी हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा की जाती है। आप सोयाबीन की खेती करते हैं?
1: जी मैडम सोयाबीन के करते हैं साथ में।
0: जी, चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब आप खेत और पढ़ाई दोनों साथ संभाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो भी करना चाहते हैं आगे उसके लिए बताइए, कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको?
1: मैम पहले तो धन्यवाद गाने के लिए, बोले हमें तुमको है प्यार,
0: जी, चलिए। हाँ जी,
1: और जो मूवी का नाम है बेटा तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मूवी का है, अलका याग्निक उदित नारायण जी ने गाया है।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है रवि जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का ये गीत लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: थैंक यू
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन, जिस पे जुड़ चुके हैं हमसे एक और कॉलर। हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी। नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते जी, किससे बात हो रही है मेरी?
1: मैडम जी, मैं जगत सिंह चड़ार ग्राम पिपलिया बराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से बोल रहे हैं मैडम जी। गाना सुनने।
0: बहुत बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप
1: जी? बढ़िया है
0: जी। परिवार में सब लोग कैसे हैं?
1: जी बढ़िया है सभी लोग परिवार में।
0: और कितने टाइम बाद कॉल लग रहा है आपका?
1: पहली बार लग रहा हूँ मैडम, बहुत ट्राई कर रहा है बहुत दिन से।
0: अच्छा, पहली बार कॉल लग रहा है तो बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है। तो काफी दिनों से आप कोशिश ही नहीं कर रहे थे, प्रयत्न करना छोड़ दिया था, या फिर आज प्रयत्न कर रहे थे? क्या कैसा हुआ मुझे बताइए, आज कैसे फोन
1: नहीं,
0: लग गया?
1: मैं तो जानता हूँ कि व्यस्त रहते लाइन, कभी तो लगेगा ट्राई करते रहो।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, वही है कि सब लोगों को ये दिमाग में रखना होता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और प्रयत्न करने से कभी ना कभी नंबर लग जाता है,
1: जी
0: क्योंकि
1: क्योंकि मैं तो और भी रूम पे लगा रहते हैं, कल गुना लगाया था, भोपाल लगाते, सागर
0: जी
1: और
0: जी
1: छतरपुर, आप

0: किया। हाँ
1: जी
0: गया था तो ट्राई करना पड़ा था जब लग पाते।
1: जी तो आप आकाशवाणी के बहुत सारे स्टेशन सुनते हैं यानी।
0: जी
1: जी बहुत बढ़िया। आप बताइए फिर कौन सा पसंदीदा कार्यक्रम है और कौन सा पसंदीदा आपका केंद्र है आकाशवाणी का।
0: जी आपका केंद्र भी पसंद है, इंदौर भी और भोपाल भी और भी।
1: जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम कौन से पसंद आते हैं आपको ज़्यादा।
0: जाना क्योंकि हेलो फरमाइश में कहीं सुन ले बात करते तो अपन को जानकारी मिलती है कहाँ से कौन लोग बोल रहे हैं, क्या कैसा मौसम है, कौन कौन सी जगह पे है,
1: जी आप करते
0: ये
1: क्या हैं
0: जानकारी मिलती रहती है।
1: जी, क्या करते हैं जगन्नाथ जी आप।
0: जी मैं दुकान का ना मैडम जी,
1: अच्छा दुकान, ओके, किस चीज़ की दुकान।
0: किराने की।
1: किराने की दुकान है, अच्छा। और वहाँ पर फिर रेडियो आपके पास चलता रहता है दिन भर।
0: जी हमारे यहाँ रेडियो तो हम बहुत पहल से रखे हैंगे,
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हम
1: और
0: बहुत पहल से सुन रहे हैं आपका केंद्र भी, भोपाल, छतरपुर, जबलपुर, बम्बई।
1: तो सुबह से दुकान के साथ रेडियो भी फिर चालू हो जाता है।
0: जी भर उठे अपन ने मुँह धोया और अपन चालू किया तो भक्ति संगीत से शुरू हुआ अपना
1: जी जी जी
0: रेडियो।
1: वंदना से शुरू हो जाता है।
0: जी रामायण
1: बहुत
0: सुनी, भक्ति संगीत में सुने, समाचार सुने और भी प्रोग्राम आते रहते हैं बहुत सारे।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपकी पसंद का गीत आप बता दीजिए, कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको।
0: जी राजा हिंदुस्तानी फिल्म को सुना दो, कितना प्यारा।
1: बहुत खूबसूरत आपकी पसंद। लीजिए आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का
0: जी
1: गीत
0: और
1: हमें।
0: राम दीदी को, विपिन भाई साहब को।
1: जी
0: जी नमस्ते।
1: जी जी धन्यवाद।

0: मेरे यानी तृप्ति लटपटी के साथ आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। आप भी हमें कॉल करके सुन सकते हैं अपना फरमाइशी गीत और साथ ही कर सकते हैं हमसे बातचीत। आप कॉल करने के लिए डायल कीजिए नंबर 2710224 और नंबर के पहले इंदौर का एसटीडी कोड यानी 0731 जरूर लगाइएगा। आइए देखते हैं अब अगले श्रोता हमसे कौन जुड़ रहे हैं। हेलो एमएच हॉटलाइन। नमस्ते, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किससे बात हो रही है?
1: मैं कृष्णपाल वर्मा, 6 महीना सोनकर तहसील देवास जिला मध्य प्रदेश।
0: कृष्णपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी।
0: और परिवार में सभी कैसे हैं?
1: सब कुशल मंगल है, परमात्मा की दया है
0: जी। बताइए, क्या कुछ नया बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? अभी जिंदगी में क्या नया चल रहा है?
1: क्या नया क्या है कि ये चल रहा है जी। परिवार में खुश है, काम धंधा कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा से सब स्वस्थ है।
0: चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, यही जरूरी है। बताइए गीत कौन सा सुनवाया जाए आपको?
1: गीत सुनवा दीजिए आज दीदी, नील कमल पिक्चर का है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार में।
0: हाँ जी, शादियों का वैसे तो सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है।
1: हाँ बस अब, हाँ ये 11 से देव सो जाएंगे तो दीपावली बाद अब
0: जी बिल्कुल। तो ये विदाई का गीत है एक, और इसी के साथ साथ हम लोग शादी के इस मौसम को भी विदाई ही दे रहे हैं। तो खूबसूरत गाना है, बड़ा ही संवेदन गाना है। चलिए आपकी पसंद पर जी।
1: ये गाने पुराने गाने अच्छे लगते हैं
0: बिल्कुल,
1: शादी हो या नहीं हो पर, लेकिन ये गाने सुनने जब सुनो जब ऐसा लगते है ताजे। बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लीजिए आपकी पसंद पे आपको सुनवाते हैं नीलकमल फिल्म से ये गाना। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: आकाशवाणी इंदौर पर चल रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन, और हमसे जुड़ चुकी है हमारे अगली कॉलर। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, और आपसे बात करती हूँ तो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है।
0: हमें भी आपसे बात करके बहुत खुशी होती है।
1: जी, पता है ना, मतलब आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे तो, सच बात कहूँ तो।
0: धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आप लोगों से ऐसा जब फीडबैक मिलता है तो और अच्छा लगता है।
1: वैसे मैंने कॉल करना बंद कर दिया आपके यहाँ, लेकिन आज आप आई हो तो मैंने सोचा कॉल कर लेती हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि आप हमारी पसंदीदा बन गई हो।
0: क्या बात है, मुझे भी काफी अच्छा
1: जी
0: लगता है आपका फोन आता है। तो बताइए गाना
1: जी
0: कौन सा आपको सुनवाया जाए, फिर हम और थोड़ी
1: हाँ,
0: बातचीत करेंगे।
1: मूवी का नाम है इंसान, और गाने के बोले जब से दिल दिया है तुमको। देखो, डेडिकेट तो स्पेशली आपको रहेगा, क्योंकि आप अच्छी भी हो, दिल की भी अच्छी हो।
0: क्या
1: ठीक
0: बात है, तो बहुत ही
1: है।
0: खूबसूरत बात बोली
1: और
0: आपने।
1: उसके बाद एक वो भैया ने मेरे को डेडिकेट किया था, जगत भाई साहब ने, तो उनके लिए भी रहेगा बस।
0: जी, और बताइए कि जीवन में क्या चल रहा है?
1: जीवन में बस ठीक है, मेरे बच्चे के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो उसी उसी में व्यस्त रहते हैं, बाकी
0: जी,
1: बस अच्छे से एकदम चकाचक।
0: और क्या समय होता है?

0: है बच्चे के स्कूल का?
1: उसका 9:30।
0: जी,
1: हाँ
0: 9:30
1: तो
0: होता
1: बस
0: है।
1: हाँ, अभी 11th में है ना, तो उसकी छुट्टी 2 बजे हो जाती है। हाँ
0: अच्छा, तो 11th में
1: और
0: तो वैसे
1: बाकी
0: आपको ज़्यादा कुछ पढ़ाने की और ये ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, अब तो बड़ा हो चुका है
1: नहीं,
0: तो।
1: अभी तो नहीं पढ़े, लेकिन हाँ वो अपने जेई एडवांस है ना, उसकी कोचिंग ले रहा है, मतलब
0: जी
1: तैयारी
0: जी
1: कर रहा है।
0: हाँ,
1: हाँ
0: और क्या करना
1: और
0: है उसे भविष्य में? अच्छा, जेई कर रहे हैं। ओके ओके,
1: उसका
0: जेई
1: ना फिर
0: एडवांस।
1: ऐसा तो यूपीएससी का, आगे देखते हैं क्या होता है, अभी तो फिलहाल यही कर रहा है।
0: जी,
1: और हम लोग तो उसपे मतलब बोझ नहीं डाले कि बेटा हमारे कहने से कुछ बनो, लेकिन
0: बिल्कुल
1: उसका मूड फिलहाल यूपीएससी का है, और अब देखते हैं क्या होता है 12th के बाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वैसे बोझ डालना नहीं चाहिए बच्चों का, जहाँ
1: नहीं
0: पर
1: हमने बस,
0: रुचि
1: क्योंकि
0: हो,
1: हम तो
0: इंटरेस्ट हो।
1: यही, हम यही कहते हैं बेटा कम मार्क्स आए तो भी चलेगा, ऐसा कुछ
0: जी
1: नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चों के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होता है पढ़ाई का,
1: जी
0: और उसके बाद अगर हम अपने सपनों का बोझ भी उन पर दे देंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पर अच्छी
1: नहीं,
0: बात है,
1: उसके
0: एक
1: पापा तो
0: सपोर्टिव पेरेंट बन के रहना
1: उसके
0: चाहिए।
1: पापा तो ये बोलते हैं कि बेटा पढ़ना है तो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करते, मतलब चाहे वो कुछ भी काम जरूरी भी हो तो भी वो, हम दोनों एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब ऐसा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगा रानू जी आपसे बात करके। चलिए
1: मुझे
0: ऐसे ही
1: अच्छा
0: हमें कॉल करते रहिएगा, और अब बढ़ते हैं आपके पसंदीदा गाने की ओर। कॉल
1: ओके ना
0: करने के
1: सीधा
0: लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छा।

0: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ तृप्ति लटपटे, और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। कॉल कर सकते हैं हमें 271-0224 पे। नंबर के पहले इंदौर का एसटीडी कोड जरूर लगाइएगा। एक श्रोता हमसे जुड़ गई हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉल पे। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका बताइए।
1: इंदौर से
0: जीनत परवीन बोल रही। जीनत जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ मैम।
0: हमारी पहली बार बात हो रही है, करेक्ट?
1: जी
0: जी जी जी। तो आप कॉल लगाती नहीं है ज्यादा, या फिर कनेक्ट नहीं हो पाता?
1: लगाती रहती हूँ वैसे तो।
0: अच्छा, या तो फिर आप व्यस्त रहती हैं, ऐसा कुछ है?
1: हाँ जी, काम निपटा के ही लगाती हूँ।
0: जी जी, तो काम हो चुका है अभी घर का?
1: जी, खाना बर्तन झाड़ू सब हो गए।
0: अच्छा,
1: छोटा मोटा है वो, बाद में कर लूंगी।
0: जी जी, तो जब ये काम चलते रहते हैं तो साथ में रेडियो भी चलता रहता है, या फिर फ्री होके रेडियो सुनती हैं आप?
1: ये जो विविध भारती, ये तो चलते ही रहता है।
0: जी जी जी। अच्छा, तो सुबह से शुरू हो जाता है
1: वो? 7 बजे से कर देती हूँ चालू, काम भी चलता रहता है और वो
0: कार्यक्रम भी चलते रहते हैं।
1: वो रेडियो में सुनती रहती हूँ और फिर इसमें ट्राई करती हूँ 10 बजे से।
0: जी, क्या बात है। और आपके बच्चे?
1: बच्चे 3 लड़के हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो पढ़ाई करते हैं और एक 21 साल के हैं, पापा के साथ जॉब करते हैं।
0: अच्छा, तो बच्चे फिर अभी स्कूल चले जाते हैं इस वक्त? मतलब घर में कौन कौन सुनता है मिलके? सिर्फ आप अकेली ही रहती हैं या फिर और भी घर के लोग सुनते हैं?
1: नहीं, मैं अकेली रहती हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है। तो कौन सा पसंदीदा कार्यक्रम है आपका?
1: मेरा ये एमएच हॉटलाइन है।
0: हाँ हाँ,
1: और भी सुनती हूँ, मन भावन है,
0: फरमाइशी। तो आप खत भी लिखती हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों के दूसरे कार्यक्रम जिसमें खत होते हैं?
1: लिखा था, मगर वो किसी ने बोला कि एक बार में जवाब नहीं देते, वो उसको डालते रहना चाहिए लगातार ही।
0: हमारे पास बहुत सारे खत पहुंचते हैं, और क्या होता है कि बहुत सारे खतों में कई बार एक आध खत यहाँ वहाँ भी हो जाता है, या फिर नहीं कई बार पढ़ने में आ पाता, बट ऐसा नहीं होता। एक बार अगर वो नहीं भी पढ़ा गया तो शायद अगले 2-3 कार्यक्रम में वो आपको आपका नाम सुनाई दे जाए। पर हाँ, अगर आप लगातार लिखती रहेंगी तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका खत जल्दी से किसी अनाउंसर के हाथ में आ जाए और वो कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए।
1: अपन जाओ।
0: जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए कई सारे कार्यक्रम जो है हम लोगों ने अलग अलग तरह के रखे हैं, जैसे आपका पत्र कार्यक्रम आज सुबह जो आता है, जिसमें आप आपकी प्रतिक्रियाएं प्रशंसा सारी चीजें कर सकती हैं। उसमें हम लोगों ने जीमेल पर, ईमेल के साथ साथ में SMS पर भी लिखने की सुविधा दी है, ताकि जिसके लिए जो भी सुविधाजनक हो वो उस तरीके से आकाशवाणी से जुड़ पाए।
1: एक दो बार डाले मैंने तो नाम आए ही नहीं, तो अभी मैं छोड़ दिया था।
0: कोई बात नहीं, वैसे आपका नंबर भी लग गया है। मुश्किल से कई लोगों के फोन भी नहीं लग पाते हैं, क्योंकि लाइन कई बार बिजी होती है, सब लोग लगातार फोन कर रहे होते हैं, पूरे देश भर से फोन आते हैं, तो ऐसे में कई बार थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है। पर देखिए, किस्मत अच्छा ही रही और आज आपका फोन लग गया। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: फिल्म है गुलाम पिक्चर।
0: जी,
1: आंखों से तूने ये क्या कह दिया, ये वाला।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना है, ये मेरी भी पसंद का गाना है। कॉल करने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कॉल करते रहिए, और हो सकता है फिर अगली बार आपसे फिर बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आपके पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं। धन्यवाद जीना जी।

0: एमएच हॉटलाइन में आइए अब जुड़ते हैं अगले श्रोता से। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है मेरी?

0: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
1: सूर्य प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
0: अच्छे हैं मैम।
1: ये जितने आप जोश के साथ और जितने ठहराव के साथ अपना नाम लेते हैं ना, आपके नाम का तेज उतना बढ़ जाता है जैसे सूर्य का तेज होता है। तो बड़ी खूबसूरत
0: धन्यवाद मैम।
1: तरीके से बोलते हैं आप। अच्छा बताइए, क्या चल रहा है अभी जिंदगी में?
0: अभी तो कुछ नहीं मैम, बारिश का इंतजार हो रहा है पर बारिश नहीं हो रही है अभी।
1: हाँ, बारिश का इंतजार तो सब कर रहे हैं, पूरा देश बारिश का इंतजार कर रहा है। और जैसा थोड़ा मौसम बना था कुछ दिनों पहले, उम्मीद तो थी कि बारिश अच्छी होगी, अच्छी चलेगी, और सब लोगों का मन खुश सा हो गया था, गर्मी से राहत मिल गई थी, किसानों ने बुआई कर दी थी, बट फिर से मौसम जो गर्मी वापस आ गई है, तो अभी सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए बताइए, गीत कौन सा सुनवाए आपको?
0: फिल्म का नाम है साजन का घर और उसमें एक गाना है कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में, सावन आया बादल छाए।
1: तो चलिए सावन के इंतजार के साथ ही, कोई बात नहीं, हम सावन का गीत सुन लेते हैं। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रताप जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है ये गीतों से शायद बारिश का मौसम बन जाए।
1: हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि ऐसा हो जाए। हम सभी उम्मीद करते हैं और यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द सावन आ जाए और सभी को राहत मिले। चलिए अभी आपको इस गीत के साथ राहत देते हैं और हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: और इसी गाने के साथ अब संपन्न होता है हमारा फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। तृप्ति लटपटे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।
1: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक। तो हमें कार्यक्रम में फोन करें और अपने पसंद के गीत सुने, और इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर जो है 2660902 और एसटीडी कोड है 0755। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: हेलो।
1: नमस्कार,
2: बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ। मैडम
1: उज्जैन से कन्हैयालाल जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया।
1: क्या चल रहा है?

0: चले खेती का काम कर रहे हैं और ये डोरे चला रहे हैं खेत के अंदर, हमने सोचा कि अब लगा दिए हैं, क्या है कि याद आ गई है।
1: अरे वाह, किस चीज की खेती अभी कर रहे हैं आप, क्या लगाया हुआ है?
0: सोयाबीन की खेती करते हैं मैडम हम।
1: अच्छा, सोयाबीन लगा हुआ है।
0: हाँ।
1: अरे वाह, और खेती करते हुए आप गीत सुन रहे हैं?
0: हाँ जी, गीत सुना दीजिए वारिस का।
1: बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: वो मेघारे मेघारे मत पड़ जाएगा, ये प्यासा सावन का बहुत बढ़िया है
1: जी, लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है।
0: मेघारे मेघारे मत कर दे आज तू
1: हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया आपने।
0: मैं गायक कलाकार भी हूँ मैडम।
1: अरे वाह, अरे वाह।
0: वो क्या था, सुंदरकांड वगैरह सभी में जाता हूँ, रामायण वगैरह वगैरह में सभी में जाता हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आपको आपकी पसंद का ये गीत सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में।
0: ओके ओके, धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: मैं पिंडरी जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
0: मंडला से सुमत कुमार जैन जी, कैसे हैं आप?
1: पिंडरी जिला मंडला
0: जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ अभी तक तो।
0: अभी तक मतलब क्या होने वाला है?
1: अब ऊपर वाले की मर्जी, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा।
0: अरे नहीं, सब बढ़िया ही रहेगा।
1: तो आपसे बात कर रहा जब तक तो बढ़िया।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और क्या करते हैं आप सुमत जी?
1: मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ मैडम।
0: आप रिटायर्ड शिक्षक हैं
1: जी।
0: क्या पढ़ाते थे आप?
1: मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था, सोशल साइंस।
0: कितना समय हो गया आपके रिटायरमेंट को?
1: 4 साल 5 साल हो गए, 21 में रिटायर हुआ था।
0: अच्छा, तो अब आप क्या करते हैं, मतलब कैसे दिखाई देता है आपका जीवन, जो समय है वो कैसे व्यतीत करते हैं?
1: पहले मैं सरकारी नौकर था मैडम, अब मैं घर का नौकर हूँ।
0: अरे वाह, ये भी अच्छी बात है, घर में घर वालों की सेवा करना बड़ी अच्छी चीज है। चलिए, तो फिर आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं? कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने।
1: अच्छा जी मैडम, आप सुना दीजिए, पग घुंघरू बांध नीरा नाची रे, नमक हलाल का।
0: नमक हलाल फिल्म से, बहुत अच्छा।
1: मेरे साथी है कृपाल पटेल, कमला प्रसाद शर्मा, राधेश्याम केवट, मोहम्मद मोहराली। इन लोग भी आप लोगों को फोन लगाते रहते हैं, लेकिन फोन बहुत लगते नहीं है, उंगलियां दर्द करने लगती जब जाके लगता है
0: जी। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो कोशिश करते
1: हैं। आपका कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है ना मैडम, इसलिए। और आप लोगों की वाणी और आप लोगों की बात करने का तरीका, लहजा बहुत ही शानदार है, और कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। बात आपकी, गीत हमारे घर के जो कार्यक्रम आता है उसमें अच्छे विषय उठाते हैं आप लोग, जिससे बहुत ही ज्ञान वर्धक भी होता है और लोगों को अपने विचार रखने में भी बहुत आनंद आता है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप श्रोताओं के कारण ही है, आपका ही प्यार है।
1: नहीं, आप लोगों की ऐसी सोच और आप लोगों का ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का तरीका
0: जी,
1: जो लोगों तक पहुंचे, ऐसी सोच भी और ऐसे तरीका को अपनाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए भी। और अब आपको आपके पसंद का गीत, आपको और आपके मित्रों को आपकी पसंद का एक गीत सुनवा देते हैं किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म नमक हलाल से।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने
1: नमस्कार।
0: जी, किन से बात हो रही है मेरी?
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर केंद्रा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम
0: ओम प्रकाश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हैं।
0: क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
1: मौसम तो बदल हो रहे हैं, कहीं धूप निकल रही है। बस दुकान पर बैठे हुए हैं।
0: अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी?
1: हमारी कपड़े की दुकान है, बस दुकान पर बैठते हैं और अपने आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: तो कौन सा गीत सुनेंगे आज कार्यक्रम में, बताएं?
1: आज हम गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है जवाब हम देंगे। गीत के बोल रहे हैं, हैरान हूँ मैं आपकी इन जुल्फों को देखकर।
0: ये अनुराधा पौडवाल जी और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत है।
1: जी
0: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं ये गीत ओम प्रकाश जी।
1: दोस्तों के लिए
0: जी
1: रेडिकेट रहेगा, परिवार का नाम लेना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हमारे परिवार में श्रीमती किरण नेमा है और आकाश नेमा, विकास नेमा, नंदिनी नेमा, शुभांश नेमा, वो सारा नेमा परिवार है।
0: आपकी परिवार और आपके साथियों के लिए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत जवाब हम देंगे फिल्म से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: नमस्ते, किन से बात हो रही है?
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। बस
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: भोपाल में बारिश आ रही, थोड़ी नहीं हो रही
0: भोपाल में बारिश थोड़ी सी कम हो रही है, थोड़ी और हो जाएगी तो अच्छा लगेगा।
1: यहाँ तो, गर्मी पड़ रही है। गाना
0: हाँ
1: बता दूँ? भीगी
0: हाँ बिल्कुल, गाना बता दीजिए।
1: रात का कैसे तुम देखो,
0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर
1: सुमन
0: की
1: कल्याण
0: आवाज में।
1: लता जी की आवाज में, ऐसे तुम देखो कि बग जाए कहीं हम। ठीक
0: बिल्कुल, ये गीत हमारे पास उपलब्ध है। अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: है, धन्यवाद
0: बहुत
1: तुम,
0: बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के
1: धन्यवाद।
0: लिए।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हाँ मैडम, नमस्ते। मैं सुमित सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से।
0: धार से सुमित सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी।
0: क्या चल रहा है धार में?
1: जी बस मेरी म्यूजिक के क्षेत्र में जॉब है, म्यूजिक कॉलेज में
0: हाँ,
1: हूँ मैं।
0: तो आप गाना सिखाते हैं या कोई वाद्य यंत्र सिखाते
1: नहीं,
0: हैं?
1: मेरा जो विषय है वोकल है, मैं वोकल सिखाता हूँ जी।
0: अच्छा जी, ठीक है। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं बताएं, संगीत कितनी
1: आप
0: बातें
1: मुझे
0: होती
1: सुना दीजिए, आग और शोला फिल्म का गीत है,
0: हैं?
1: अनुराधा पौडवाल जी और मनोहर उदास जी की आवाज में, अरे बरसा।
0: बिल्कुल, ये गीत उपलब्ध है हमारे पास, आपको सुनवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए सुमित जी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: कौन बोल रहे हैं आप?
0: जी मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: मेरे को भी गाना सुनना है। कौन बोल रहे हैं आप?
0: बिल्कुल सुनवाएंगे हम आपको। आपका नाम बता दीजिए। मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: जी हाँ, मेरा नाम सरला चावड़ा है।
0: सरला जी?
1: जी हाँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं सरला जी?
1: मैं रतलाम से।
0: रतलाम से फोन कर रही हैं, कार्यक्रम सुन रही हैं हमारा।
1: जी हाँ।
0: अच्छा ठीक है, क्या करती हैं सरला जी?
1: मैं टीचर हूँ सर।
0: टीचर हैं, अच्छा बताएं अब कौन सा गीत सुनना चाहती हैं, बताएं।
1: मैं सुनूंगी फिल्म नमस्ते जी का, मेरे दो नैना मतवारे।
0: लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत है।
1: जी हाँ।
0: आपको सुनवा देते हैं सरला जी, बहुत अच्छी आपकी पसंद है।
1: मैं 1971 को सुन रही गाने।
0: अरे वाह,
1: मैं कक्षा एक में थी तब से ही गाने सुन रही हूँ और मुझे सभी गाने बेहद पसंद है। और आकांक्षा दीदी और विद्या जैन और सरिता रावत जो भी है, वो जितनी भी है, उनको बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है उनकी आवाज। उन्होंने फूलों के बारे में जानकारी बताई आकांक्षा दीदी ने, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी, आपका जो इतना प्यार है मैं बिल्कुल सबके साथ साझा करूंगी।
1: जी हाँ, थैंक यू जी।
0: अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: जी हाँ, थैंक यू वेरी मच।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हाँ, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम से।
0: जी
1: हाँ, मैं जिला पन्ना मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन पांडे बात कर रहा हूँ।
0: हर्षवर्धन पांडे जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ, हम वो ठीक है। और इस समय भोपाल का मौसम कैसा है? बरसात वगैरह हो रही है? और पन्ना में तो नहीं हो रही है, पन्ना में तो ये जो है जो धूप निकली है, भोपाल का मौसम आप बता दीजिए।
0: हर्षवर्धन जी, पन्ना में जैसी धूप निकली है वैसी भोपाल में निकली हुई है, थोड़े बहुत बादल हो जाते हैं।
1: वो मुझे आज वो जो है बरसात से ही संबंधित गीत सुनवा दीजिए। एक काला बाजार फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी और गीता दत्त के ऊपर में, ये रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। ये फिल्म 1960 में बनी थी और ये इसी का गीत सुनना है और संगीतकार इसके जगदीप बर्मन है। ये वाला गीत सुनवा दीजिए, काला बाजार।
0: बिल्कुल, बड़ी सुंदर गीत की फरमाइश की है आपने। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, अब सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते मैडम जी।
0: जी, किन से बात हो रही है?
1: ये मैं विक्रम मालवी बोला ना, गुलबलोच से।
0: विक्रम मालवी जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बढ़िया हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं सुन नहीं सकी।
1: ये मैं मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबलोच, तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं विक्रम जी?
1: जी मैं वेयरहाउस में काम करता हूँ मैडम जी, और इसके अलावा खेती का काम करते हैं।
0: अच्छा, खेती का काम भी करते हैं। क्या उगा रहे हैं अभी?
1: अभी सोयाबीन बोई है मैडम जी।
0: अच्छा, कार्यक्रम है, फोन करें, गीत सुने, तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गीत सुनना है मुझे, फिल्म है करण अर्जुन का।
0: कौन सा
1: करण अर्जुन का? वो वाला गीत सुना दीजिए, हे माँ काली।
0: कुमार सानू की आवाज में, साथ है अलका याग्निक।
1: जी मैडम जी,
0: बिल्कुल आपको सुनवाते हैं। विक्रम जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी आपको भी धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद।
2: खड़गम चक्र गदेशु चाप परिदान शूलं वुशुंडे शिर शंखम दंत दधिकरैस्त्रिनयनं सर्वांग भूषा

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 11:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।

भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। वर्तमान में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के लक्ष्मी नगर अनाज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कृषक कल्याण वर्ष के तहत आयोजित इस महोत्सव के दौरान किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती सहित शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बलराम कृषि महोत्सव इस माह के दौरान इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से अबूधाबी की शुरुआत भी करेंगे। ये सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री इंदौर जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित 300 बिस्तरीय भवन का लोकार्पण भी करेंगे। मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 20 से 24 जुलाई तक विधानसभा का सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान 14 विधेयक लाए जाएंगे। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज और सतना समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर ने, और गांव चौहलता से संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान, कुणाल ने। आप सबने पसंद किया है खिलाड़ी फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है अलका याग्निक और अभिजीत ने, गीत अनवर सागर का और संगीत जतिन ललित का।

और अब सुनिए परदेश फिल्म का ये नगमा। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का गीत और नदीम शबण का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं ग्राम बगबुड़वा।

और अब सुनिए, पिघलता आसमान फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में इंदिवर के लिखे गीत को सुरों में सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: जामई रोड चांदा मेड़ा छिंदवाड़ा से सादिया जोया जारा आलिया अलीशा नेहा ज्योति चांदनी व उनकी सखियाँ, महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया पराग पगारिया प्रदीप पगारिया केशव पटेल रामनिवास अग्रवाल, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया। आप सबने पसंद किया है मोहब्बत फिल्म का ये गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर उदित नारायण और साथियों की, आनंद बख्शी का गीत और जतिन ललित का संगीत।
1: नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं कुछ संदेश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या?
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: पर सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
6: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
7: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
8: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
9: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
8: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
9: अरे काहे का मजा।
8: क्यों, क्या हुआ?
9: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।

0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है। अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है।
1: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी, राजेश मिश्रा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं।
2: ग्रामीण अंचल में और चाहे शहर में स्कूली शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और काफी अंतर हुआ है, फिर भी हम हास्य व्यंग कलाकार उसमें कुछ खोजने को और अपनी कुछ कल्पनाएं आप तक पेश करते हैं। जो नहीं भी दिखता है तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होता होगा या ऐसा होना चाहिए। तो लीजिए, एक स्कूल की ओर आपको ले चल रहे हैं कि स्कूल में गुरुजी ने विद्यार्थी से कहा, बेटा ये बताओ कि जब मैं घर से पैदल स्कूल जाता हूं तो मुझको 30 मिनट लगता है, आधा घंटा, और जब मैं किसी की साइकिल में जाता हूं तो मुझको 20 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 20 मिनट। और जब मैं

0: स्कूटर में जाता हूँ किसी की बैठकर, तो मुझको 10 मिनट लगते हैं। तो बेटा मेरी उम्र बताओ कि मेरी उम्र कितनी है? एक छात्र खड़ा हुआ, पंडित जी आपकी उम्र ना 50 साल। देखो कितना होशियार बच्चा है। इतने बच्चों में कोई भी बच्चा ये नहीं बता पाया कि जब मैं पैदल आता हूँ स्कूल 1/2 घंटा, जब मैं साइकिल में आता हूँ 20 मिनट, स्कूटर में 10 मिनट, तो गुरुजी की उम्र 50 साल। ये कैसे बताओ, बताओ बच्चों, उनको बताओ कैसे निकाला तुम? पंडित जी हमारे घर के बाजू में एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 25 साल है, वो आधा पागल है।
1: गले बैठ जाओ बेवकूफ, कभी जीवन में पास नहीं होगे। दूसरी एक और बड़ी समस्या सामने आई उस गांव में कि एक बच्चे को, बाकी बच्चों को तो बहुत प्यार से नहीं बोलते थे, मारपीट करते रहते थे, किंतु एक बच्चे को ज्यादा ही प्यार करते थे। बेटा कैसे हो?
0: अच्छा पंडित जी।
1: अपनी अम्मा से बोलना पंडित जी ने राम राम पहुंचाइए, नमस्ते। ठीक है। बच्चा हमेशा जाकर अपने घर में मैसेज दे देता था कि माँ, माँ साहब ने आपको नमस्ते बोला है, राम राम पहुंचाइए। अब चूंकि बच्चा पढ़ रहा था और उनको आशय ये समझ में नहीं आता था कि ये नमस्ते का क्या आशय, ये क्रम चलता रहा। एक दिन उनने अपने पति को बताया कि लोग अगर सुनेंगे तो बड़ा खराब लगेगा, ये नमस्ते क्यों पहुंचाते हैं इनके गुरुजी। तो एक दिन उनने पति पत्नी ने प्लान बना लिया और आपस में, और जो ही बच्चे ने गुरुजी से बोला,
0: गुरुजी प्रणाम।
1: बेटा अपनी माता जी से नमस्ते बोल दिया था?
0: हाँ बोल दिया था, माता जी के नहीं थी कि पिताजी दूसरे शहर जा रहे हैं, आपको बुलाया है।
1: माँ साहब बढ़िया खुश घर पहुंचे। घर पहुंचे इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया, उनके शिष्य की माँ बोली,
0: लगता है कि वो ये आ गए हैं।
1: तो क्या करना है?
0: करना कुछ नहीं, आप हमारी साड़ी पहन लो, मैं बोल दूंगी कि पड़ोस के आए हैं ये आटा पीसने, जो घर में पुरानी चक्की, इसमें आटा पीसना, गेहूं पीसना है, तो वो आए हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं।
1: मरता क्या ना करता, माँ साहब ने जल्दी जल्दी जल्दी धोती पहन के अपना बैठ गए गेहूं पीसने के लिए। और जो ही आए उनके पापा, बात की और इशारा किया, वो चले गए। जब वो चले गए तो माँ साहब ने जल्दी से धोती उतारी, अपना भागे। भागने के बाद एक दिन बच्चे ने बोला,
0: माँ साहब, माँ पूछ रही थी बहुत दिन से आपने नमस्ते नहीं पहुंचाई है।
1: तो माँ साहब बोले, क्यों, तुम्हारे घर का आटा फिर खत्म हो गया क्या? एक डॉक्टर साहब थे और जैसा उनकी पत्नी भी डॉक्टर, पति पत्नी दोनों। एक दिन पत्नी ने शिकायत की पति से और कहने लगी,
0: सुनिए
1: क्या बात है?
0: है ना, आप हॉस्पिटल चले जाते हो ना, सामने हॉस्टल में लड़के रहते ना, दिन के 12 बजते मेरे को देखना चालू कर देते, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप इनको मना कर सकते हैं क्या?
1: बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मना करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, मैं अब भी जाता हूँ। हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल में लड़के रहते थे, कहने देखिए आप लोग यहाँ ढंग से रहिए, क्यों क्या बात है, क्या बात है, दिन के 12 बजते आप लोग मेरी पत्नी को देखना चालू कर देते, ढंग है आप लोगों का, आप लोग नौजवान हैं, अच्छी बात नहीं। बोले डॉक्टर साहब पहले अपने घर के सामने का बोर्ड अलग करिए, क्यों क्या बात है, क्या बात है, देखिए क्या लिखा, क्या लिखा, डॉक्टर सुधा रानी, देखने का समय 12 से 2। छोटी छोटी बातें बड़ी मजेदार हो जाती हैं। मैं कभी घड़ी नहीं पहनता हूं। मेरे से किसी ने पूछा कि राजेश मिश्रा आप घड़ी क्यों नहीं पहनते? मैंने कहा मैं घड़ी इसलिए नहीं पहनता हूं कि हर 1/2 घंटे में हिंदुस्तान में लोग समय अपने आप बताते हैं। अब आप सोच रहे हो कैसे बताते हैं? आप कहीं विलंब से पहुंचे तो क्या यार भैया अभी आ रहे हो, 2:30 बज रहे।

0: ये हम और आपके बीच में अपने आप जो हास्य मिलता है, हास्य कलाकारों को वो ऐसे ही मिलता है कि हम जो बोलते हैं आप जो बोलते हैं वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं। अब इसमें ने कहा अच्छा 2:30 बज रहा है यार, तुम गजब कर दिया, थोड़ी देर हो गया। जब काफी देर अपन बैठ जाते हैं तो फिर कोई कहेगा चलो यार भैया 3 बज गए यार, तो अपन को पता लग जाता 3 बज गए। काहे को अपन इतनी बड़ा वजन टांग कर चलें, और समय की कीमत अगर अपन ने समझी होती तो अपन यहाँ ये हास्य कलाकारी क्यों करते। फिर भी एक भाई साहब से मैंने पूछा कि भाई साहब कितना बजा है, कहले बज के 10 मिनट। मैंने सोचा कि चलो भाई बज के 10 मिनट, मैं समझ गया, अंदर ही अंदर मैं खुश हो गया। व्यक्ति की आदत होती है कि अगर उसको कोई पहचान रहा है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं बहुत, मतलब मुझे ये खुशी हुई कि यार ये व्यक्ति जान गया कि मैं हास्य कलाकार हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि प्रोग्राम चालू होना है, भैया कितना बज गया, बोले बज के 20 मिनट। मैंने कहा यार लगता है ये भी हास्य कलाकार होगा हमको छेड़ने के चक्कर में, तो मुझे फिर बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा अब प्रोग्राम शुरू कराया जाए। मैंने भाई साहब टाइम कितना होगा, बज के 30 मिनट। हमने देखो यार मैं हास्य कलाकार जरूर हूँ किंतु मुझे गुस्सा भी आ जाती है। कहें क्यों क्या बात है, अरे आप लगे हो बज के 10 मिनट, बज के 20 मिनट, बज के 30 मिनट, बताओ ना कितने बज। कहें भाई साहब मेरी गलती नहीं है, मेरी घड़ी का छोटा कांटा टूट गया है। बड़ा कांटा भर है वो घूम रहा है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि बज के 20 मिनट, बज के 30 मिनट, बज के 40। मैं आप नाराज क्यों हो रहे, ये हास्य हमारे आपके बीच में मिल जाते हैं। कभी किसी का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर को अगर आप एकदम, कभी कभी ऐसा माहौल आता कि लगातार ट्रांसफर, अब उसको अगर आप अधूरी बात करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आदमी दुनिया से चला गया हो, और वो बात मैच भी करती जाती है, आप उसके घर भी बैठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाकई हो गया। जैसे उन्होंने कहा काव्या राजेश मिश्रा नहीं दिख रहे, वो तो गए। गए कब, लो आपको नहीं मालूम, सही में नहीं मालूम। अरे नहीं भगवान का सब बिल्कुल नहीं मालूम यार, कैसे का अब, अरे यार आज को समय कोई भरोसा है, हैं आर्डर आ गो चले गए। अरे हमें तो पता ही नहीं, दो पर घर पे माताजी वगैरह है ना। अच्छा अच्छा अब माताजी के पास पहुंच। अब व्यक्ति इतना झूठा हो गया है कि बाहर तक तो कहो हंसता रहे किंतु अगर किसी मरीज को देखने जाए तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चेहरा बना लेगा, इतना बना लेगा कि इनसे बड़ा दुखी कोई है ही नहीं दुनिया में। किसी के यहाँ गमी में जाएगा तो बाहर तक हंसता रहेगा, घर के अंदर पहुंचते कहो गया था भैया, अरे कैसे अचानक, अरे यार भैया, अरे राम राम राम राम, कितने बच्चे हैं भैया, 2 बच्चे, ओहो मिसेस, अब मिसेस क्या 2 होंगी क्या। इतने तो गंभीर मत बनो, जबरन के नाटक इतना झूठ भरे तो नहीं करोगे, एकदम पूछ बैठे कि मिसेस, अरे मिसेस भी तो एक ही होगी। चलो ये हो गया, अब यहाँ ट्रांसफर वाले उसमें आदमी बैठने गया, अब वो गया, अब देखिए संयोग बस, माता जी हाँ बेटा आओ, कहाँ है आज सुना हमें तो पता ही नहीं रहा। हाँ भैया हमें भी तो खुद ही अच्छा नहीं लग रहा, भैया नहीं है तो बिल्कुल इतना खराब लग रहा, हमें ऐसा लग रहा खाने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल ऐसा करता था आते ही साथ, अम्मा ए अम्मा तुम्हारे लाले सेव ले आए, तुम्हारे लाले अंगूर ले आए, अब आज है नहीं, ऐसा सूना लग रहा बिल्कुल। नहीं तो अम्मा उसमें क्या कर सकते बता, नहीं करने को तो अब आप लोग नेता आदमी हो कुछ कर सकते। अम्मा हम लोग नेता हैं, नीचे चलती ऊपर नहीं चल पाती हम लोगों की। अब वो ऊपर में उनको ये लग रहा है कि दिल्ली की बात कर रहे हैं, वो ऊपर कहने अम्मा हम लोगों की तो नीचे ही चलती है, ऊपर तो चलती नहीं।
1: हाँ बेटा, ऊपर की पहुंच तो बड़ी अजीब ही होती है, किंतु अब चलो अब क्या करो, हम इंतजार कर रहे हैं उनका।
0: अब पूरी विधा जो थी वो पूरी बदल गई। आदमी ये सोच रहा है कि वो ऊपर चले गए, वो ये सोच रहे हैं कि इनका ट्रांसफर हो गया, कभी किसी के अस्पताल में देखने जाओ। ये हास्य व्यंग आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, ये आपके समाज में मिलेगा। आप किसी को अस्पताल में देखने जाओ और मान लो वो डिस्चार्ज हो गया है, तो आपने काउंटर में पूछा, भाई साहब राजेश मिश्रा, हाँ वो तो गए, कब? एक घंटा पहले। अरे राम राम राम राम, ओहो हो, मट्टी कब जाएगी? नहीं नहीं मरे नहीं है यार। नहीं नहीं आप बोले ना गए, मतलब हॉस्पिटल से गए यार भैया। कभी आप अचानक घर में फोन करें, हेलो,
1: हाँ
0: देखो यार मेरे को पासपोर्ट फोटो की जरूरत है, तो मैं भेज रहा हूँ चपरासी को, उसको पासपोर्ट फोटो दे देना।
1: हाँ ठीक है।
0: अब आप इंतजार करो पासपोर्ट फोटो का, अगर आपकी पत्नी को पासपोर्ट फोटो नहीं मिलती है तो तुरंत ग्रुप फोटो में से काट के पासपोर्ट बना के भेज देती। फिर आपने फोन लगाया, हेलो तुमने क्या फोटो भेज दी यार, क्या पेपर में देना है, गमी वाला समाचार देना है क्या कि राजेश मिश्रा नहीं रहे, ये तो इस टाइप की फोटो लग रही है।
1: नहीं तो आपने बोला ना अर्जेंट चाहिए,
0: अरे इतनी अर्जेंट नहीं चाहिए थी कि तुम ग्रुप में से काट के दे दो। हम और आपके बीच में ये हास्य हमेशा मिलता रहता है, हंसना मना है किंतु आप खोजिए, आप बस में जा रहे हैं तो वहां हास्य मिल जाता है, आपके बाजू में कोई बैठा हुआ है और आप उसको लगातार देखिए, अब एक व्यक्ति एक को देखा जा रहा, अब उसको शर्म लगे कि ये व्यक्ति मुझे क्यों देख रहा, थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा, फिर उसने कहा भाई साहब क्या हो गया, आप एक घंटे से बैठे हो मुझे लगातार देखे जा रहे हो, बात क्या? नहीं भाई साहब कोई बात नहीं। नहीं नहीं कोई बात तो क्या है कि आपका और मेरी पत्नी का चेहरा बहुत मिलता है। कहने फालतू बात नहीं करना। नहीं नहीं कहने सही बोल रहा हूँ भैया, बिल्कुल गजब बताए आपको, अब क्या बोले यार, हम एक घंटे से देख रहे हैं आपको और एक घंटे से हम मतलब क्या बोले यार, बिल्कुल डिक्टू। कहना फालतू बात नहीं करना, मैं फेंक दूंगा तुमको बाहर, समझ गए? बोल रहे हैं भाई साहब मैं फालतू नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ मूछों का अंतर है, नहीं तो तुम बिल्कुल हमारी औरत के समान लगते हो। तो तुरंत वो व्यक्ति बोला, कह लें मेरी मूछें कहाँ है? कह लें मेरी औरत की मूछें हैं ना भैया।
2: हंसना मना है,
3: हंसना मना है,
2: अरे हंसना मना है,
3: हंसना मना है,
2: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
3: हंसना मना है।
0: लीजिए हंसना मना है इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर्फ्यू या कभी भी 144 धारा जब भी देश में किसी भी कोने में लगती है तो हर अच्छे इंसान को तकलीफ होती है, और हमारे हिंदुस्तान की ये तासीर बिल्कुल नहीं है कि वो कर्फ्यू और 144 धारा पसंद कर सके, शायद कभी नहीं करेगा। खैर ये विषय अलग है, आपको उसमें भी मैं हास्य व्यंग दे रहा हूँ, इसे कहीं कोई अन्यथा ना ले कि किस प्रकार से हमें हास्य व्यंग उसमें मिल जाते हैं, दर्द में व्यंग, इसलिए हम मैसेज पहुँचाते हैं कि कभी आप तक ये बातें पहुँच जाएँ तो कर्फ्यू और दंगे फसादों से व्यक्ति दूर रहे। कर्फ्यू के दौरान में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आम व्यक्ति की, और वो होती है पुलिस वालों से। लोग मुझसे पूछते हैं कि राजेश मिश्रा हिंदुस्तान में व्यंग्य में स्टेज की दुनिया में जितना आप पुलिस वालों के लिए सुनाते हैं और हमेशा पुलिस वालों को छेड़ते हैं, आखिर क्या बात है? और मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि मेरी एक बहन की शादी धोखे से एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब के साथ हो गई है, इसलिए तमाम पुलिस वाले हमारे जीजा होते हैं। मजाक के दौरान में मैं उल्टा सीधा जीजा लोगों को से बोल देता हूँ, तो ये भी निवेदन कर लेता हूँ कि मंच से वो लोग उतनी दूरी बनाए रखें। कर्फ्यू के दौरान में बहुत से लोग बाहर से आते हैं,

0: जो लोकल लोगों को, शहर के नेताओं को, समाज सेवियों को नहीं पहचान पाते हैं। तो सबसे पहले तो जो कर्फ्यू पास मिलते हैं उसको लोग लगाते हैं और उनको सबसे पहले मोहल्ले में दिखाने निकलेंगे। कहा भाई कर्फ्यू पास मिला यार, एसपी साहब ने बुलाया था और कलेक्टर साहब ने बोला कि एकता की अपील के लिए आप लोगों को निकलना है। अब ये तो अपन बोल रहे हैं किंतु सामने वाला सोच रहा साफ, लोगों को भी मालूम नहीं होगा एकता की अपील, पिताजी तो साथ में रहते नहीं है समाज में एकता की अपील के लिए निकलेंगे। ठीक ठीक, निकलो निकलो, आप तो निकल लो, ये वाली गली से निकलो, ये वाली तरफ बहुत ज्यादा तनाव है, जिस तरफ पुलिस थी उसी तरफ भाइयों ने भिजवा दिया। अब जो यहीं पहुंचे तो पुलिस ने, ए किधर, कर्फ्यू लगा हुआ? हाँ कर्फ्यू पास है। ये पास आपने कर्फ्यू पास फाड़ दिया, आप जानते मैं कौन हूँ? वीआईपी आदमी, दो तीन लठ मारो वीआईपी इसको। अरे ए, लठ मार दिया आपने, कैसा? अरे भाई साहब, अरे कैसा कर रहे हैं? मैं पिट गए। जी हाँ, ये वाला पास चलता है। पीठ में निशान आ गए आपके? हाँ पीठ में लठ के निशान आ गए। हाँ तो ये वाला पास दिखाते हुए चले जाना घर में, बता देना मैं पिट चुका हूँ, कर्फ्यू में बाहर मत निकलिए। सुबह सुबह पति पत्नी घूमने के लिए निकल पड़े, पुलिस वालों ने रोक लिया। एश किधर जा रहे हैं? पति बोला मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक कर्फ्यू में? बहुत बढ़िया, इसको जेल भेजो, ये बड़े गोल में मॉर्निंग वॉक करेगा। पत्नी बोली, साथ में पत्नी भी थी, पत्नी तुरंत बोली,
1: नहीं इनको आप माफ कर दीजिए, हमने इनको मना भी किया था कि कर्फ्यू लगा हुआ है किंतु ये माने नहीं।
0: देखो पत्नी कितनी समझदार है, आदमी कितना बेवकूफ, एक लपाड़ा मारो अपने पति को पुलिस बोल रही है कि पत्नी से कि पति को मारो। पत्नी बोली,
1: नहीं हम इनको नहीं मारेंगे।
0: नहीं मारोगी तो ये जेल जाएगा या तो एक चाटा मार दो तो घर ले जाओ, चाटा नहीं मारोगी तो हम इसको जेल भेज देंगे, आप अपने घर जाइए।
1: नहीं देखिए आप प्लीज।
0: अब पति खिसक, मार दो ना।
1: नहीं हम नहीं मारेंगे।
0: अरे लफड़क रहोगे क्या?
1: नहीं हम नहीं मारेंगे।
0: मार दो ना, तुमसे बोल रहे हैं।
1: नहीं ना,
0: अकेले में पटकती रहोगी। कुछ लोग हमारे पास आए, बोले राजेश मिश्रा जी आपको नेता लोग भी चाहते हैं, कलाकार भी हो आप और आपको अधिकारी भी चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, कर्फ्यू में क्या पिटवाना चाहते हो आप? कहने नहीं, नहीं भैया ऐसा था कि आप हमारे लिए, हम लोगों के यहाँ क्या है कि लेटरिन नहीं है घर में, हम लोग सब सुलभ शौचालय जाते हैं, तो आप एक काम करवा दीजिए, सुबह शाम का हम लोगों के लिए पास बनवा दीजिए। और एक टाइम का इमरजेंसी बनवा दीजिए। तो मैंने कहा भैया पास बनवा दें? कहले हाँ, क्या है उधर पुलिस की पॉइंट ड्यूटी लग गई है, हम लोग इधर से जाते हैं पुलिस रगेद देती है, तो आप लोग पकड़ में नहीं आते? नहीं पकड़ में तो आ सकते हैं किंतु जो ही वो पुलिस पास में आती है हम लोग दौड़ते हैं और वो पीछे भागते, जो ही वो पास में आते हैं तो वो फिसल जाते हैं। अरे मैंने कहा भाई साहब आपकी व्यवस्था जल्दी करें, नहीं तो मैं भी फिसल जाऊंगा। उन व्यक्तियों की समस्या हल नहीं हुई, उनमें से एक बेचारा सुबह सुबह नाली में बाहर बैठे हुआ था। सुनने में आपको जरूर अजीब लग रहा होगा किंतु जब आप पूरी बात ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कर्फ्यू दंगे फसाद, इसमें आम गरीब आदमी कितना परेशान होता है कि वो बाहर नाली में बैठे ही था कि पुलिस आ गई, अरे तेरा मालूम नहीं है कर्फ्यू लगा है? अरे साहब हमको क्या मालूम, इसमें भी कर्फ्यू लगा। गलत बहस कर रहा, मारो इसको लट, उठो मार डालो साहब, अबे तो ना उठे। जो ही व्यक्ति फुर्सत हुआ पुलिस ने कहा चलो, कहने कपड़े

0: पहन के आ जाएं। अपने यहां का आदमी बड़ा होशियार, ऊपर चला गया, नीचे पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, ऊपर से झांका, क्या बात है, नीचे उतरो, नीचे नहीं उतरते, क्यों, नीचे कर्फ्यू लगा है।
1: और अब एक और हंसोड़, विनय जैन।
2: एक ऐसा आइटम सुनाने जा रहा हूं जो कि व्यंग है। एक नेताजी जिनका की तगिया कलाम था, बात बात में कहा करते थे कि राजनीति हो गई, हर बात में वो कहा करते थे कि अरे साहब राजनीति हो गई। एक बार आप तमाम लोग भी जान लें, स्वर्ग और नरक में जाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। जो लोग हम और आप अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त करके ऊपर पहुंचते हैं, तो जो इंटरव्यू में पास होता है वो स्वर्ग में जाता है, जो फेल होता है वो नरक में जाता है। और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो नेताजी हैं उनका नंबर 2-3 लोगों के बाद आने वाला है। इंटरव्यू चालू है, सबसे पहले पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, इंटरव्यू चालू है। कैंडिडेट नंबर 1, नमस्ते साहब, कहाँ से आए? साहब इंडिया से आए हैं। हाँ इंडिया से आए हो, इंडिया की स्पेलिंग जानते हो? साहब आई पहले आता है, फिर एन आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है, फिर ए आता है, INDIA, मतलब इंडिया। बड़े शाबाश, स्वर्ग में जाओ। दूसरे को बुलाया, हाँ साहब कहाँ से? फ्रॉम जापान। जापान की स्पेलिंग जानते हो? साहब JAPAN। बड़े शाबाश, तुम भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, चित्रगुप्त साहब ने फौरन सवाल किया, बोले भैया तुम चेकोस्लोवाकिया स्पेलिंग बताओ। अब चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नेताजी मिस्टेक कर गए, बोले नरक में जाओ। नेताजी फौरन चिल्लाया, गुरु राजनीति हो गई, सबसे सरल पूछे, हमसे बस कठिन पूछे, इंटरव्यू एक बार फिर से होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा देंगे। एक बार फिर से इंटरव्यू दोबारा करवाया गया, एक बार फिर से इंडिया वाले को बुलाया गया और पूछा गया, हाँ बोले साहब एक बात बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बोले साहब दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप सन 1903 में आया था। बोले शाबाश, आप स्वर्ग में जाइए। दूसरे को बुलाया, जापान वाले को, बोले साहब आप बताइए दक्षिण अफ्रीका के भूकंप में कितने लोग लगभग मारे गए थे? बोले साहब लगभग 19,998 लोग मारे गए थे। बोले शाबाश, आप भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया तो फौरन से सवाल किया गया, बोले साहब दक्षिण अफ्रीका के इस भूकंप में और ज्वालामुखी के फटने में जितने लोग मारे गए थे सबका नाम बताओ। नेताजी वहां भी मिस्टेक कर गए, बोले साहब नरक में जाओ। नेताजी फिर चिल्लाए कि गुरु राजनीति हो गई, साहब पॉलिटिक्स हो गई, सबसे सरल पूछा जाता है, हमसे ही कठिन सवाल किया जाता है, तो इसके लिए एक बार फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। लोगों ने यह तय किया कि साहब ठीक है इंटरव्यू फिर से होना चाहिए, लेकिन इस बार ऊपर से आदेश हो गया कि इस बार इंटरव्यू आखिरी होगा, बिल्कुल अंतिम होगा, फाइनल होगा और लिखित में होगा। राइटिंग में एग्जाम होगा, जो सही लिख के बताएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो गलत लिखेगा वो नरक में जाएगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। नेताजी कहने लगे, हाउ? इंडिया वाले को बुलाया, बोले साहब लिख के बताइए, कौवा काव काव, कौवा काव काव। बोले शाबाश, स्वर्ग में जाओ। जापान वाले को बुलाया, बोले साहब लिखिए, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बोले शाबाश, बिल्कुल सही लिखा है, आप भी स्वर्ग में जाइए। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, नेताजी को देखते ही से फौरन सवाल किया, बोले साहब आप लिखिए, घोड़ा।
3: हाँ तो दोस्तों, हंसने हंसाने का यह सिलसिला अभी आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक हस्ता मना है की 13वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री संत रविदास एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी अमृतसर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ेगी। भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। वर्तमान में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा है कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बलराम कृषि महोत्सव इस माह के दौरान इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। मंत्रि परिषद की आगामी बैठक 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीश में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 20 से 24 जुलाई तक विधानसभा सत्र चलेगा। सत्र के दौरान 14 विधेयक लाए जाएंगे। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार आज अलीराजपुर, झाबुआ, थार, रतलाम, रीवा, मऊगंज, सतना समेत 20 जिलों में चमक के साथ बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। एक बच्चों का है, लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

कार्यक्रम महिला सभा सुन रही सभी सखियों को सुनीता पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हमारे देश का युवा हमारे देश का भविष्य है। नई सोच, नवाचार, नई ऊर्जा के साथ युवा शक्ति देश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और इसलिए युवाओं को नवाचार की ओर प्रेरित करने के लिए उन्हें सुरक्षित माहौल, सही मार्गदर्शन और समस्याओं को नए नजरिए से देखने की स्वतंत्रता देना बेहद जरूरी है। उन्हें लीक से हटकर सोचने और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। घर परिवार में युवाओं को हर बात पर क्यों और कैसे ये पूछने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। उनकी जिज्ञासा ही नए विचारों और आविष्कारों की नींव बनाती है। हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि असफलता नवाचार की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। हर गलती एक नया अनुभव और सीखने का अवसर प्रदान करती है। बच्चों को रटने के बजाय उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं पर काम करने का मौका दें। सखियों, एक ऐसा माहौल बनाएं जहां उनके सभी विचारों का सम्मान हो, भले ही वे कितने भी अलग क्यों न हों। विचारों के मुक्त आदान प्रदान से ही नवाचार को बढ़ावा मिलता है। सखियों, युवाओं को अपने क्षेत्र के सफल उद्यमियों, वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों से जुड़ने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। उनके अनुभव युवाओं को सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पहलों जैसे स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी जानकारी दें, जो उन्हें अपने विचारों को एक व्यवहारिक व्यवसाय में बदलने के लिए वित्तीय सहायता और मंच प्रदान करती हैं। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने देश के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के बड़े देशों में, बड़े संस्थानों में भारत के युवा अब नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षा, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने समर्पित प्रयासों से नए आयाम स्थापित कर सोच को साकार करने में युवा शक्ति हमारी जो है ना, वो साधुवाद की पात्र है। निरंतर प्रगति के अवसर प्राप्त कर सोपान चढ़ती युवा पीढ़ी हमें आश्वस्त कर रही है कि सुखद बदलाव की ताजगी निरंतर बनी रहेगी।

0: और सखियों, गीत भी आपने सुन लिया है और अपने मन की बात कहने के लिए एक विधा और भी हमें बहुत अच्छी लगती है, वो है कहानी। जी हाँ, हम आपके मन की बात को जानते हैं, इसीलिए आज एक कहानी लेकर आए हैं। कहानीकार हैं डॉक्टर चारुचित्रा। कहानी है बोनसाई की बगावत। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर चारुचित्रा से उनकी ये कहानी।
1: शालिनी ने बड़े आदमकद शीशे में अपने आप को देखा। उसे लगा कोई और ही उसके सामने खड़ा है। आजकल अपने आप को पहचानने में भी उसे मेहनत करनी पड़ती है। उसका गेहूं रंग सफेद हो चुका था, ऐसे ही जैसे दीवारों का पुराना पेंट कई परतों के बाद आखिरकार नए रंग में रंग ही जाता है। राज ने 2 दिन पहले आके पार्लर में सब तय कर दिया था। कैटलॉग में वो उंगली रखते गए थे और राज की पसंद के हिसाब से शालिनी संवार दी गई। शालिनी को अपने घर में रखी नृत्य मुद्रा में एक हथेली ऊपर कंधे के पास और दूसरी कूल्हे के पास रखे वो गुड़िया याद आ गई, जिसे कोई भी आता जाता छू देता और वो कमर और गर्दन को हिलाकर नाचना शुरू कर देता। दरवाजे से बाहर कदम निकालते ही हल्की चिनमिन सी बारिश की फुहार को चेहरा उठाकर उसने छूने की कोशिश की ही थी कि तभी ड्राइवर ने छाते को उसके सिर पर तानकर फुहार की नाजायज गुस्ताखी पर वहीं रोक लगा दी। उसे छूने का हक सिर्फ और सिर्फ राज को था। यहाँ तक कि पापा, मम्मी, भाई और छुटकी भी शादी के बाद उसे जोर से गले लगाने से हिचकिचाने लगे। एक शादी में शालिनी को देखने के बाद जब राज ने घर आकर उसका हाथ मांगा तो जैसे सब कृतार्थ हो उठे थे। सभी हैरान थे कि राज ने इस घर परिवार और शालिनी में ऐसा क्या देख लिया जो उसका दीवाना हो गया। राज ने शादी की पहली रात ही अपने पिछले कड़वे अनुभवों का जिक्र करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि अब उसे एक साधारण परिवार की घरेलू ठीक ठाक सी लड़की चाहिए जो उसके कद और ओहदे को समझ सके और उसके सर पर नाच ना सके। शालिनी की छोटी सी झोली जिसमें बड़े बड़े सपने लेकर वह आई थी एकदम ही खाली हो गई। राज उसके परिवार की उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरा। आर्थिक कठिनाई झेलने वाले भाई को उसने अपने साथ बिजनेस में जोड़ लिया। शालिनी को बिना किसी व्यवधान के कॉलेज जाए बिना ही MA की डिग्री मिल गई। पापा की लंबी बीमारी का अच्छा इलाज भी होने लग गया। एक ही काम रह गया था, छुटकी के लिए अच्छा परिवार और वर ढूंढने का। राज ने वो खोज भी शुरू कर दी थी। राज ठंडी बयार की तरह परिवार के हर सदस्य को सुकून दे रहा था, लेकिन ऐसा क्या था कि अजीब सूखापन शालिनी के आसपास घिर गया था, जैसे सब कुछ खिंचा भिचा सा हो। तरलता को तरस गई थी वह। कहा था शालिनी ने एक दिन पापा मम्मी से, मेरा मन नहीं लगता यहाँ, मुझे अपने घर वापस आना है। मम्मी ने घबराते हुए उसके हाथ को दबाया कि कहीं आवाज गलती से भी किसी तक पहुँच ना जाए। क्या कह रही है, क्या परेशानी हो सकती है तुझे यहाँ? इतना बड़ा बंगला, कारें, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, कितना ध्यान रखता है राज तेरा। अफरात में जब मिल जाए तो भी दिमाग खराब ही हो जाता है, माँ दांत भीजते हुए बोली। मैं कारपेट नहीं हूँ जो बिछती रहूँ मैं इंसान, वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि पापा भी मम्मी का साथ देते हुए बोले, बेटा जी मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है। राज तुम्हें मारता पीटता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, कोई और है उसकी जिंदगी में, बोलो। शालिनी एकटक देखती रही पापा को, कहती भी तो क्या कह। बेटा जीवन एडजस्टमेंट का नाम है, शादी को समय ही कितना हुआ है अभी, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तुम इतने साधारण परिवार से आई हो, वह भी तो तुम्हारे साथ एडजस्ट करता होगा। मानता हूँ थोड़ा डोमिनेटिंग है राज, लेकिन इतनी कम उम्र में क्या क्या नहीं कर लिया उसने। पापा थोड़े फिर रुके, कहा तू ना कहती थी कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, संभाल लूंगी सबको। अब इस परिवार का भविष्य तेरे साथ ही जुड़ा है बेटा। घर के सामने कार रुकने के साथ ही शालिनी के भागते मन पर भी रोक लग गई। खिली धूप में लॉन की चमकती मुलायम मैक्सिकन कारपेट, घास, आसपास करीने से क्यारियों में लगे देश विदेश से आए पौधे, सफेद मेजपोशों से सजी गोल मेजें, लाल रंग के रिबन बांधे अतिथियों के स्वागत को आतुर कुर्सियां, शहर के मशहूर गायक की कव्वाली पर झूमते ढाके लगाते रसूखदार पुरुष और महिलाएं। राज वेलकम वेलकम करता हुआ फोटोग्राफर के साथ तेजी से आगे बढ़ा। पोर्च में एक तरफ खड़े मम्मी, पापा और भाई भी उत्साह से उसकी आगवानी को आगे आए तो राज की एक दृष्टि से उनके बड़े कदम सहम गए। अब क्या चीज कैसे प्रस्तुत करनी है ये राज को हमेशा पता होता है। यंग एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार यूं ही तो नहीं मिल गया था उसे। सबके सामने उसके हाथों को पकड़ता हुआ वह कह उठा, बेबी बहुत खूबसूरत लग रही। फिर धीरे से उसके कानों के पास आकर बेहद कड़े स्वर में वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, ये पल्ला क्यों लपेट रखा है, साड़ी का लुक ही नहीं आ रहा ढंग से। उधर से किसी की आवाज आई, नॉटी बॉय, ये क्या कानाफूसी चल रही है राज। इतने में मंत्री जी की कार के रुकते ही राज के साथ शालिनी भी उनके पैर छूने को झुकी तो मंत्री जी ने इत्मीनान से उसकी अनावृत पीठ पर ऊपर से नीचे तक हाथ फिराकर कुछ ज्यादा ही लंबा आशीर्वाद दे डाला। राज ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और वो एक गिजगिजे जानवर को पूरी दोपहर पीठ पर लिए घूमती रही। राज और शालिनी की शादी की दूसरी एनिवर्सरी का केक कटा और राज ने ग्लास पर चम्मच बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेहद रोमांटिक अंदाज में शालिनी की ओर देखकर बोला, अपनी मल्लिका की नाजुक गर्दन के लिए एक छोटा सा तोहफा इस गुलाम की ओर से। उसके साथ ही शालिनी की गर्दन हीरो जड़े हार से सज गई। जोर से तालियां बजी और टू क्यूट, व्हाट अ लकी गर्ल, प्रेशियस, सो स्वीट, ट्रूली ब्लेस्ड जैसी आवाजें हवा में उछलने लगी। लेकिन इस सुख को शालिनी जी ही नहीं पा रही थी। यादों के बवंडर में उलझी हुई थी वो। 2 सालों में पहली बार उसने राज से कोई तोहफा मांगा था। बड़े ही रोमांटिक अंदाज में, क्या चाहिए तुम्हें, कहते हुए राज ने उसे

0: सीने से लगा लिया। राज, मैं कोचिंग करना चाहती हूँ, यूपीएससी का इम्तिहान देना चाहती हूँ। राज ने सीने से लगी शालिनी को थोड़ा पीछे करते हुए बोला, क्या रखा है इस सब में, पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग खराब करोगी? तुम हैसियत नहीं देखती अपने पति की, छोटी सी बात पर मंत्री आकर खड़े हो जाते हैं घर में। फिर उसके उतरे चेहरे को देख राज ने खुद ही रास्ता निकाल लिया। अच्छा, तुम्हारा घर से बाहर निकलने का मन है ना, तो तुम समाज सेवा वगैरह कुछ कर लो, बल्कि अपना ही एक एनजीओ बना लेते हैं। राज, बचपन से इसी सपने को सींचा है मैंने, और मुझे लगता है मैं कर अभी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही राज का ठंडा स्वर सुनाई दिया, नहीं यह तो नहीं हो पाएगा, घर में बहुत कुछ है करने को तुम्हारे पास। सख्त चेहरे के साथ बिना जवाब का इंतजार किए राज बाहर निकल लिया, और शालिनी अपना वजूद बिस्तर के नीचे, कालीन की गर्द में, बर्तनों के सिंक में, अलमारियों और गुलदानों में ढूंढती फिरी। शालिनी की तंद्रा एक परिचित आवाज से टूटी। मशीनी ढंग से दी जाने वाली बधाइयों के बीच ये मंगल कामना कुछ अपनी सी लगी। अरे शेखर जी, आप कैसे हैं? आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, वो भी फोन पर। कृतज्ञ हूँ मैं, आप नहीं जानते कितनी बड़ी प्रशंसक हूँ मैं आपकी। जाने कितने दिनों बाद वो अपने अंदर से फिर अपनी पुरानी शालिनी को खोज लाई थी। अपनी ही रॉ में किलकती शालिनी शेखर को राज से मिलवाने को आगे बढ़ी। राज, ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, शेखर, इन्हें सुनने तो कॉलेज भी बंक करके मैं पहुंच जाती थी। ये सारे शब्द शालिनी के मन के अंदर ही रह गए। तब तक एक्सक्यूज मी कहता हुआ राज आगे बढ़ा और मुड़कर शालिनी को इशारे से बुलाया। राज की शिष्टता और मुस्कुराहट बरकरार थी, मगर क्रूर हुए थे तो वे थे उसके शब्द। उसने आहिस्ता से शालिनी को कहा, इसको किसने बुलाया है? शालिनी ने अधिकार से कहा, मैंने। मुस्कुराहट और शिष्टता पर तमतमाहट का आवरण पल भर को चढ़ा और फिर उसी रूप में वापस आकर राज बोला, रफा दफा करो उसे, कहीं से फिट हो रहा है वह इस पार्टी में? रुआंसी हो उठी शालिनी, लेकिन ऐसे कैसे? जैसे बुलाया है वैसे ही वापस भेजो और चेहरे की मुर्दानगी खत्म करो। कहते हुए राज की तमतमाहट पर शिष्टता का मुलम्मा फिर चढ़ चुका था। शालिनी ने रंगीन कागज में लिपटी किताब को मेज पर देखा और आंसुओं से धुंधली आंखों ने शेखर की अनुपस्थिति को भी महसूस कर लिया। शालिनी अपने अंतर्द्वंद से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी राज की आवाज सुनाई दी, क्या कर रही हो? आओ जान, तुम्हारे बिना अधूरा हूं मैं। पलों में भाव भंगिमा मूड बदल लेने की राज की है कला आज 2 बरस बाद भी शालिनी को अचंभित कर उठती है। राज लॉन में अपने पसंदीदा हिस्से में खड़ा था, जहां जब तब दस्ताने चढ़ा, कैंची, कटर, तांबे की तारें लेकर कई तरह के खेल और प्रयोग वह पौधों पर किया करता है, और छोटे पेड़ों की एक दुनिया उसने वहां बसा ली है। छोटे छोटे बरगद, पाइन, जापानी लाल मेपल, जूनिपर, चीनी एल्म, फिकस, एडीनियम, यही नहीं संतरे, नारंगी, अमरूद से लदे फदे मिनिएचर्स जाने कितने ही विराट पेड़ों के घमंड को तोड़ते थे। लोग मंत्रमुग्ध थे राज की इस कला पर, और राज किसी विशेषज्ञ की तरह बड़े ही मनोयोग से सबको बोनसाई बनाने की बारीकियां समझा रहा था कि तभी सिन्हा साहब की आवाज ने व्यवधान डाल दिया। तांबे की तारों से लिपटे एक बोनसाई को सबको दिखाते हुए बोले, क्यों राज, तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रकृति के खिलाफ है? किसी की भी नेचुरल ग्रोथ को ऐसे क्यों रोकना है? टॉर्चर कर रहे हो तुम इनके साथ, इन्हें तारों से बांधना, काटना, फैलने से रोकना, बरगद पीपल जैसे विशाल पेड़ों को जरा सी ट्रे भर जगह देते हो, उन्हें प्राकृतिक रूप से बढ़ने दो भाई। राज को विरोध पसंद नहीं है, अपने को जज्ब करता हुआ बोला, अरे साहब क्या कहते हैं, इटली के बोनसाई म्यूजियम में 1000 साल पुराना पेड़ रखा है, टोक्यो के इंपीरियल पैलेस में 17वीं शताब्दी का बोनसाई देख तो मैं दीवाना हो गया। जब इतनी लंबी उम्र तक जीते हैं, बाकायदा उसी तरह फल फूल देते हैं जैसे दूसरे पेड़ देते हैं, खूबसूरती तो देखिए इनकी, तो कैसे आप दावा करते हैं कि इनके साथ टॉर्चर हो रहा है? बस तकनीक का कमाल है, ग्राफ्टिंग और प्र्यूनिंग सही होनी चाहिए। हाँ, तारों से बांधने में कुछ छुटपुट निशान पड़ जाते हैं, एस्थेटिकली जरा अच्छे नहीं लगते, तो उनके भी तरीके हैं ठीक करने के। सौंदर्य सिर्फ खजुराहो, अजंता, एलोरा की मूर्तियों और पेंटिंग्स में नहीं है जनाब, इस कटाई छटाई और उससे उपजे बौनेपन में भी एक परिष्कृत सौंदर्य शास्त्र है। बहुत देर से चुप खड़ी शालिनी एकदम चुनौती दे बैठी, इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई बोनसाई अपने कद से आगे बढ़ गया तो? उसने बगावत कर दी तो? आकार और कद ना बढ़ने देने का ही तो सारा मसला है जाने मन, इतनी काट छांट के बाद या तो बोना रह जाएगा या मर जाएगा। कहते कहते राज मुस्कुराकर फोटोग्राफर को पोज देने को तैयार हो गया।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी ये कहानी बोनसाई की बगावत, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कहानीकार थी डॉक्टर चारू चित्रा। सखियों, देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमने अपने अधिकारों और कर्तव्यों की केवल जानकारी ही नहीं होनी चाहिए बल्कि इनके प्रति जागरूकता और पालन भी जरूरी है। जब तक एक भी महिला अपने हक से अनजान है तब तक हमारा समाज आधा अधूरा है। सखियों, हम आपको कभी भी लौट जाओ नहीं कहेंगे, हम तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करेंगे, और आगे बढ़ने का पहला कदम है अपना हक जानना, क्योंकि जो अधिकार हमें पता ही नहीं उसे पाने के लिए हम संघर्ष कैसे करेंगे भला। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005

घरेलू हिंसा के खिलाफ 1091 पर फोन करना, महिला थाने जाना, और ये सब महिलाओं का अधिकार है। सन 2005 के बाद पिता की संपत्ति में बेटी बेटे का समान अधिकार है। परिवार में पति से संबंध बिगड़ने पर गुजारा भत्ता मांगने का भी अधिकार है। ऑफिस में यदि कोई गलत कमेंट, घूरने और छूने की कोशिश करता है तो ये अपराध है। हर ऑफिस में आंतरिक समिति का गठन जरूरी है, जो शिकायत मिलने पर 90 दिन में जांच पूरी कर दोषी को सजा देने के लिए प्रस्तावित करती है। यह अधिकार कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत हम महिलाओं को मिला है। सखियों, प्राइवेट और शासकीय नौकरी में मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत 26 हफ्ते की सवैतनिक छुट्टी पाना अब हर माँ का अधिकार है। सूचना का अधिकार भी हमें विकास कार्यों, बजट, देरी को जानने का अधिकार देता है। हम 10 रुपए की फीस जमा करके जानकारी मांगने का हक रखते हैं। ये भी याद रखें कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने महिला पुरुष बराबर हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि सिर्फ औरत होने की वजह से हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं की प्रगति से ही नापता हूँ। तो बहनों, कुछ भी गलत हो तो आवाज़ उठाओ। हमारी चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है। अपने आसपास की महिलाओं को भी जागरूक करना ज़रूरी है। एक जलता दिया 100 दिए जला सकता है। जब एक महिला अपने अधिकार जान जाती है तो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को एक नई दिशा देती है। और जब सखियों बात आती है दिशा देने की, तो हम सब अब नए समाज में, अब इस नए बदलाव में कार्यस्थल पर भी जाते हैं और जहां पर भी काम कर रहे हों, अक्सर हमें काम करना पड़ता है कुर्सी टेबल पर। नतीजा कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों में सूजन और एसिडिटी से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। इसलिए चेयर योगा को अपनाकर कार्यस्थल पर ही 10 मिनट में रिचार्ज हुआ जा सकता है। और इन तकलीफों को दूर किया जा सकता है। हाँ, सावधानी ये रखनी है कि कुर्सी बिना पहिए वाली और मजबूत हो, घुटने 90 डिग्री पर हों, रीढ़ सीधी होनी चाहिए और कोई भी आसन अगर दर्द करे तो उसे रोक देना चाहिए। आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल करने से गर्दन और कंधों में जकड़न और दर्द दूर करने के लिए सांस भरते हुए गर्दन दाएं कंधे की तरफ ले जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए बीच में लाएं और फिर बाएं तरफ ऊपर नीचे भी करें। ऐसा 5 बार करें, क्योंकि हर कोई आजकल इन तकलीफ़ों से दो चार हो रहा है। और अगर हम सावधानी बरतें और थोड़ी सतर्कता बरतें और बीच बीच में इस तरह की कोशिश करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो हमारी ये जकड़न बहुत हद तक दूर हो सकती है। इससे सर्वाइकल और मोबाइल नेक में आराम मिलता है। कंधों में जमा टेंशन रिलीज करने के लिए लंबी सांस लेकर दोनों कंधों को कान तक उचकाना चाहिए और सांस छोड़ते हुए झटके से नीचे गिराने की क्रिया 5 से 7 बार दोहराना चाहिए। सखियों, कुर्सी पर बैठकर कटी चक्रासन भी किया जा सकता है। इसे करने के लिए पैर थोड़ा खोल कर बैठो, हाथों को कंधे की सीध में फैलाओ, सांस छोड़ते हुए कमर से दाएं घूमो, दायां हाथ कुर्सी के पीछे, बायां हाथ दाएं घुटने पर। इसी अवस्था में 15 सेकंड तक रुकने के बाद सांस लेते हुए सामने आए और फिर बाएं तरफ दोहराएं। ये आसन लचीलेपन, पाचन और कमर को सही रखता है। कार्पल टनल, माउस वाली जकड़न से बचने के लिए मुट्ठी बांधकर

दोनों कलाइयाँ 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। पैरों में सूजन सुन्न होने को रोकने के लिए एड़ियाँ जमीन पर रखकर पंजों को 15 बार ऊपर नीचे करो, फिर पंजे हिलाकर एड़ियाँ उठाएं। सुस्ती भगाने के लिए और जकड़न कम करने के लिए सीधे बैठकर सांस भरते हुए दायां घुटना छाती की तरफ उठाओ। हाथ से घुटने को पकड़कर 10 सेकेंड खिंचाव देना चाहिए, फिर बाएं पैर से इसी तरह दोहराना चाहिए। एंग्जाइटी को कम और दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए 2 मिनट तक अनुलोम विलोम को भी अपनाना चाहिए। इस प्रक्रिया को 5 मिनट रूटीन में रखना चाहिए। ये प्रोडक्टिविटी को 15% तक बढ़ाता है और हम ऊर्जा से भरे हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। हमारी कुर्सी की हमारी योगा मैट बन जाती है। हमारी फुर्ती और इच्छा शक्ति को जागृत रखने के लिए समय ना मिलने का बहाना अब नहीं चलेगा। योग अपनाइए, कार्यस्थल पर अपनाइए और खुद को स्वस्थ रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी सभी सखियां हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें।

0: सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: 5:30 पर।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे फूलचंद अहिरवार और साथियों के गाए लोक भजन।

सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे मेघा बुधेलिया के गाए गीत।

0: मेघा भदौलिया के गाय इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: और सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और

0: लाइव रेडियो मिर्चा कर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म बीवी हो तो ऐसी सी, अनुराधा पौडवाल की आवाज़, साथ में मोहम्मद अजीज, समीर का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दयावान फिल्म का ये नगमा, अजीज़ कैसी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल के गाए इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब दौरे पर जाएंगे। वे सबसे पहले चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे, जहां विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी संत रविदास एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो अमृतसर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। ये विभाग अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल अब केवल आनंद विभाग के मंत्री रह गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। लखन पटेल पथरिया विधानसभा से विधायक हैं। साल 2023 में सरकार के गठन के साथ लखन पटेल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर से अबूधाबी के लिए प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाएगी और सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। अभी तक इंदौर से अबूधाबी जाने के लिए यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर जाना पड़ता था, जिसमें 7 से 8 घंटे लगते थे। नई उड़ान से यह सफर सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। ये महोत्सव लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में ये महोत्सव आयोजित हो रहा है। महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इंदौर के बाद ये महोत्सव धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 17 जुलाई भारत टेक 2026 चल रहा है। इसमें प्रदेश के पवेलियन में पीएम मित्रा पार्क, टेक्सटाइल इकोसिस्टम और निवेश अनुकूल नीतियों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने देश विदेश के संभावित निवेशकों से विस्तृत चर्चा कर उन्हें प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं से अवगत कराया। प्रदेश ने अन्य 6 पीएम मित्र राज्यों के साथ एक राउंड टेबल सत्र में भी भागीदारी की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज रात अशोकनगर पहुंचेंगे। कल से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। कल वे तार वाले बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद जन सुनवाई करेंगे और स्वसहायता समूह की महिलाओं से संवाद भी करेंगे। शाम को सिमरखेड़ी में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। वहीं 17 जुलाई को कलेक्ट्रेट में DVMC की बैठक के बाद श्री सिंधिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी दिन अशोकनगर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का उद्घाटन और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से गर्मी ने फिर से जोर पकड़ लिया है। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 35

0: 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 6 दिनों से प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश दर्ज नहीं की गई है। अगले 5 दिनों तक भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। अब तक प्रदेश में 9.5 इंच बारिश हुई है, जबकि इस अवधि तक सामान्य वर्षा 10.5 इंच मानी जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बालाघाट सहित 21 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पीआईबी भोपाल द्वारा देश के समग्र विकास और साल 2047 तक भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर कल रीवा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगर मालवा जिले में कल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल संचालकों, दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के बारे में जानकारी दी गई। झाबुआ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के अंतर्गत जिले में 19 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी की पुलिस अधीक्षक यांगचिन डोलकर भूटिया ने कल खुद बैराड़ थाने पर आयोजित ग्राम चौपाल में लोगों से जनसंवाद किया। दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद राहुल सिंह लोधी ने छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा स्थित केंद्रीय विद्यालय का बीती रोज निरीक्षण किया। नर्मदापुरम में कृषक कल्याण वर्ष के तहत जिला प्रशासन किसानों की कृषि लागत कम करने, आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट्स पर लगभग 18%

0: प्रतिशत, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
5: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
4: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमरीका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को

0: निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत हमने लिया है अमृत फिल्म से। मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, बेबी सौती माखीजा, माही पूजा छुटकी, शरद डोडवानी और पूरे माखीजा परिवार ने। तो आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा।

0: आपसे डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, आप सबने फरमाइश की है ईश्वर फिल्म के इस गीत की, जिसे आवाज़ें दी हैं नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति ने। अनजान का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।
1: तार सप्तक, मंदिर सप्तक,

0: जी, तुम्हारे आने से तो सब कुछ सुरीला हो गया।
1: तुम मेरे आने से पहले भी सही गा रहे थे राग धानी सा नी सा गा सा गा सा नी पा पनी पनी सा नी सा नी सा गा सा गा सा गा मा गा मा गा मा पा मा पा मा पनी पनी पनी सा सा नी पनी पा मा गा मा गा सा गा सा नी पनी पनी सा।

0: मितवारे
1: आगे सुख है, आगे सुख है।
2: गंगा जमुना सरस्वती, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़, इंदिवर का गीत और अनु मलिक का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और समरीत पंचोलिया, कवर कॉलोनी बड़भा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली।

प्रेम प्रतिज्ञा लीजिए, सुनिए इस फिल्म का नगमा। बप्पी लहरी और आशा भोंसले की आवाज़ें हैं, गीत इंदिवर का और संगीत बप्पी लहरी का। इस गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, जयराजपुर राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट ने।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब दौरे पर जाएंगे। वे सबसे पहले चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे, जहां विभिन्न बुनियादी ढांचा सुविधा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व युवा कौशल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि युवाओं की प्रतिभा, कौशल, नवाचार और उद्यमिता ही विकसित भारत और समृद्ध मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। ये विभाग अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन

0: यादव अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल अब केवल आनंद विभाग के मंत्री रह गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर से अबू धाबी के लिए प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाएगी और सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में आज 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शुरू किए गए इस विशेष जन जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाना और प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। और मौसम विभाग के मुताबिक आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बालाघाट सहित 21 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30 और रात 8:15। 6:00 प्रसारित होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे मशरूम उत्पादन तकनीक, कम लागत अधिक मुनाफा, इस विषय पर भेंटवार्ता, बुंदेली समाचार और साथ ही लोक रंग सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:00। रात 8:15 भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्रित एक कार्यक्रम पूर्वापलोकन कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:15 आकाशवाणी दिल्ली से, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात 10:00 सुनिएगा नाटक अलिफ लैला की कहानी, लेखक डॉक्टर हामिद हुसैन, प्रस्तुतकर्ता शाकिर अली। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा माधुरी ओक का गायन, राग होगा काफी कानड़ा। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेब 188.32 मीटर, साथ ही GTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेब पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेब 188.32 मीटर्स पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। युवा साथी सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अनुभूति और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है बुधवार और आज का दिन होता है हमारे स्पेशल सेगमेंट एक ही फिल्म से का, जिसमें आज हम आपके लिए एक बेहद ही सुंदर एक्शन रोमांटिक फिल्म लेकर आए हैं। और निश्चित तौर पे हमारे जो युवा साथी आज हमें सुन रहे हैं, उन्हें ये फिल्म और इस फिल्म के गीत काफ़ी पसंद आने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में, जानेंगे आज के दिन के बारे में भी। लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि आज के प्रश्न क्या हैं।

तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वॉइसरॉय कौन थे? और आज का दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप खोज कर रखिए और कार्यक्रम के अंत में अपने उत्तर हमारे साथ आप मिलाइएगा। तब तक आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की इस खूबसूरत गीत के साथ।

साथियों, हर साल आज के दिन यानी 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2014 में युवाओं को रोजगार, बेहतर आजीविका और उद्यमिता के लिए आवश्यक तकनीकी व व्यवसायिक कौशल प्रदान करने के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। यानी कि इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं को आधुनिक समय में यानी कि आज के तकनीकी युग में उस समय की मांगों के अनुसार प्रशिक्षित करना है ताकि युवा वैश्विक चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकें। आज का युग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल साक्षरता का युग है। इसीलिए युवाओं को कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स और तकनीकी युग में कुशल बनाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। भारत में इस अवसर पर विभिन्न कौशल विकास के जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं और साथ ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्किल इंडिया मिशन के तहत कई जागरूकता अभियान, रोजगार मेले और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। एक वैश्विक पहल के रूप में आज का दिवस मनाया जाता है जो युवाओं को आवश्यक कौशलों से लैस करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये शिक्षकों, अभिभावकों, सलाहकारों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और अन्य सभी से ये निवेदन करता है कि ये सुनिश्चित उन्हें करना होगा और ये

को कुशल तरीके से अपनी जो स्किल्स है उन्हें निखार कर आगे बढ़ना होगा और उसकी आवश्यकता स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। युवाओं के कौशल विकास इस दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है जो शिक्षा और कार्य के बीच की खाई को पाटता है। युवाओं को उनके चुने गए करियर पथ में सफल होने के लिए सशक्त बनाता है और बेरोजगारी के जोखिम को भी कम करता है। युवाओं के कौशल विकास में सहयोग करना माता पिता, शिक्षकों, मार्गदर्शकों और व्यापक समुदाय की साझा जिम्मेदारी इसी कारणवश है। इस दिवस पर इस समय में कुछ विशेष पंक्तियां भी याद आती हैं कि डिग्रियों के पन्नों में सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, बिन हुनर के हाथ को आसमान नहीं मिलता। सीखो कोई कला, बदलो तुम अपनी तकदीर, हर युवा के हाथ में है कल की नई तस्वीर। कौशल से आत्मनिर्भर बने और देश को आगे बढ़ाएं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, आज अभी जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो हल्का हल्का बारिश का मौसम हो रहा था इंदौर में, और जब भी बारिश होती है तो दिल का रेडियो एक ख़ास धुन गुनगुनाने लगता है। इसी धुन के साथ वक्त का पहिया हम थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं अब हमारे बेहद ही स्पेशल सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है एक ही फिल्म से में। आज हमारी जो फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जिसने बॉलीवुड में एक्शन जॉनर का पूरा पूरा व्याकरण ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं साल 2016 की उस कल्ट क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्म की, जिसने हमें दिया बॉलीवुड का बागी। जी हाँ, अभिनेता टाइगर श्रॉफ, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और अभिनेता सुधीर बाबू स्टारर फिल्म बागी की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब ये फिल्म सिनेमा घरों में उतरी। साल 2016 यानी कि आज से 10 साल पीछे हिंदी सिनेमा का एक बेहद दिलचस्प मोड़ था। एक तरफ दंगल, नीरजा और उड़ता पंजाब जैसी रियलिस्टिक कंटेंट ड्रिवन फिल्म थी, गंभीर फिल्में थी जो बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही थी। वहीं उसी समय पैरेलल सिनेमा का बोलबाला बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच हमारा जो ठेठ कमर्शियल

सिनेमा हम कहते हैं, और उसमें जो प्रेमी जनता है, खासकर जो युवा है, वो एक ऐसी फिल्म तराश रहे थे जिसे उन्हें थिएटर में सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया जाए। वो तलाश कर रहे थे एक ऐसी लार्जर देन लाइफ फिल्म की जिसमें एंग्री यंग मैन की ऐसी एंट्री हो, एक ऐसी मासूम मगर शिद्दत वाली लव स्टोरी हो जिसमें रोमांस के साथ साथ एक्शन भी भरा हो और पूरी जुनून भरी फिल्म हो। इसी खाली जगह को भांप रहे प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला और डायरेक्टर शब्बीर खान, उन्होंने देखा कि भारतीय दर्शकों को अगर एक सॉलिड रीमेक यानी कि तेलुगु फिल्म वर्षम और इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट्स की फिल्म द रेड का तड़का लगाकर कुछ बॉलीवुड अंदाज में परोसा जाए तो जादू हो सकता है। सन 2016 के उस दौर में जहां डिजिटल वीएफएक्स का इस्तेमाल बढ़ रहा था, इस फिल्म ने तय किया कि वे स्क्रीन पर सब कुछ रॉ और रियल रखेंगे। यही वजह थी कि जब फिल्म बागी का ट्रेलर आया तो युवाओं को समझ आ गया कि ये वो सिनेमा है जो उनकी रगों में एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं एड्रेनलाइन दौड़ा सकता है। और वो क्यों दौड़ा सकता है, आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं इस गीत में।

साथियों, बारिश हो और बारिश के दौरान ये गाना यदि हम ना सुने तो बारिश का मज़ा फीका रह जाता है। ऐसा ही कुछ जादू बागी फिल्म के हर गीत ने किया। अगर हम बात करें बागी फिल्म की कहानी की, तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक बिगड़ैल, गुस्सैल और बिना सोचे समझे मुक्का चला देने वाले एक्शन मिजाज के लड़के रॉनी यानी कि टाइगर श्रॉफ से, उसके इस तेवर से, इस बागी तेवर से परेशान होकर उसके पिता अपनी आखिरी वसीयत में उसे केरल के एक दूरदराज गांव में गुरु स्वामी की मार्शल आर्ट्स एकेडमी कलारियापट्टू आश्रम में भेज देते हैं ताकि उसे अनुशासन सिखाया जा सके। इसी सफर के दौरान ट्रेन की छपाक छपाक करती बूंदों के बीच रॉनी की मुलाकात होती है सिया यानी कि श्रद्धा कपूर से। सिया जो बारिश से बातें करती है, बेपरवाह है और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती है। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत पुरानी यादों जैसा प्यार पनपने लगता है। लेकिन कहानी में असली भूचाल तब आता है जब एंट्री होती है बैंकॉक के सबसे खतरनाक, ताकतवर और बेखौफ बिजनेसमैन राघव की। राघव जो गुरु स्वामी का ही बेटा होता है, लेकिन उसने अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया है। राघव भी सिया की एक झलक देखकर उस पर फिदा तो हो जाता है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है, ट्विस्ट तब आता है जब राघव यानी कि फिल्म में जिसे विलन का टाइटल दिया गया है, वो सिया को किडनैप करके बैंकॉक की एक इमारत में छुपा देता है। अब रॉनी के सामने सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सेना है और बहुमंजिला इमारत है जिसके हर फ्लोर पर मौत उसका इंतजार कर रही है। क्या एक अनुशासित बागी एक पागल आशिक की सनक को हरा पाएगा? ये क्लाइमैक्स जिस तरह हम सोच सकते हैं एक एक्शन थ्रिलर मूवी का होता है, वही होगा या कैसा होगा ये तो स्क्रीन पर देखने में हमें समझ आएगा और उसी में असली थ्रिल भी है। तो श्रोताओं, यदि आपने ये फिल्म देखी है तो आप इसका क्लाइमैक्स हमें बता सकते हैं। फिलहाल आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

चलिए अब फिल्म के पर्दे के पीछे की कला को जरा डिकोड करते हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म बागी की। अगर निर्देशन की बात करें तो शब्बीर खान ने साबित किया उस समय यानी कि 2016 में कि वो मास ऑडियंस की नब्स को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। उन्होंने फिल्म के दो हिस्सों में खूबसूरत तरीके से उसे बांटते हुए पहले हाफ केरल के शांत हरे भरे बैकवाटर्स और आश्रम के सख्त माहौल में उन्होंने जो दृश्य दिखाए हैं जहां अनुशासन है, और दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया कि बैंकॉक की कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतों में जहां सिर्फ खून खराबा और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शंस हैं। संजीव दत्ता का स्क्रीन प्ले बहुत ही लीनियर और सीधा था, किसी तरह का कन्फ्यूजन हमें नहीं दिखता जो सीधा दर्शकों के दिल से कनेक्ट करता है। लेकिन इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन है इसके एक्टर्स यानी कि टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर जो मेन लीड में थे। टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के जरिए जो पर्दे पर अपना कमाल दिखाया उसने भारतीय सिनेमा में स्टंट्स के स्टैंडर्ड को एक अलग लेवल पर पहुँचा दिया। बिना किसी केबल या बॉडी डबल के 360 डिग्री किक्स और किसी तरह से जिस तरह वे स्टंट्स करते आए हैं वो आज भी फैंस के लिए काफ़ी अमेजिंग है। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक डांसर के रूप में नहीं बल्कि एक मुकम्मल एक्शन स्टार भी हैं। और बात करें श्रद्धा कपूर की तो उन्होंने इस फिल्म के ज़रिए अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर की इमेज को तोड़ा। वो सिर्फ एक असहाय लड़की नहीं बनी बल्कि फिल्म के बीच में जब वो खुद एक्शंस करती नजर आती हैं तो निश्चित तौर पर जब ये फिल्म रिलीज हुई होगी तब तालियों से पूरा थिएटर गूंजा होगा। इन दोनों की केमिस्ट्री में एक अजीब सी मासूमियत थी। वहीं दूसरी तरफ सुधीर बाबू के रूप में बॉलीवुड को एक ऐसा विलन भी मिला जो शांत रहकर भी बेहद खौफनाक था, और साथ ही इन सभी एक्टर्स की फिजिक और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

साथियों, अब बात करते हैं उस यूएसपी की जिसके बिना ये फिल्म यानी कि बागी अधूरी है। इसका कल्ट म्यूजिक और दर्शकों का इसके साथ जुड़ाव, मीट ब्रदर्स अमाल मलिक और अंकित तिवारी का कंपोज किया हुआ म्यूजिक आज भी शादियों, क्लब्स और मॉनसून की प्लेलिस्ट में छाया रहता है, या छमछम गाने जैसे जिसकी बात हो, जो आज भी लड़कियां जिन पर रील्स बनाती हैं। और बारिश के समय में जैसा कि हमने बात की कि लोग अक्सर इस गाने को याद करते हैं, और साथ ही इस फिल्म का एक सबसे मेरा पसंदीदा गाना जो है, जो निश्चित तौर पे आपका भी होगा, जो अभी हम सुनने वाले हैं, लेकिन उसके साथ ही जब हम इस म्यूज़िक की बात करते हैं तो ये हम कहने से बिल्कुल नहीं कतराते कि आज भी यानी कि 10 सालों बाद भी, एक डेकेड बाद भी, इस फिल्म का म्यूज़िक हो या फिर ये फिल्म हो जिसका निरंतर हम देखते हैं कि बागी फ्रेंचाइजी जो है वो पहली फिल्म के जादू को निरंतर आगे बढ़ाती आ रही है, चाहे बागी 2 हो या

बागी 3 हो। तो दोस्तों ये फिल्म कुल मिलाकर एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर है जो आपको हंसाती भी है, रुलाती भी है, आपका दिल भी धड़काती है और आखिर में एक ज़बरदस्त हाई देखकर आपको थिएटर से बाहर भेजती है। लेकिन फिलहाल ये फिल्म आप थिएटर में तो नहीं देख सकते, इसलिए आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो जल्दी जाइए और फिल्म देखिए, और अगर देखी है तो इस फिल्म से जुड़ी कुछ और जानकारी आपके पास है तो हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल हम सुन लेते हैं आपका हमारा इस फिल्म का सबसे पसंदीदा ट्रैक।

तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्म फिल्म बागी, जो सन 2016 में रिलीज़ हुई थी। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता देते हैं कि आज के प्रश्नों के उत्तर क्या थे। आज का पहला प्रश्न था, ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वॉइसरॉय कौन थे, जिसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। और आज का दूसरा प्रश्न था कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, जिसका उत्तर है साम वेद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के प्रश्नों के सही उत्तर मिले होंगे और साथ ही आपको आज का कार्यक्रम भी बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त आपकी रेडियो दोस्त अनुभूति को। नमस्कार। अभी युवा

साहिब बीबी और गुलाम, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने, हेमंत कुमार का संगीत था। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 16 जुलाई 2026 यानी कल सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम

कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है, बारिश के दिनों में पेट से संबंधित बीमारियां और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर रविंद्र काले से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 16 जुलाई 2026 यानी कल सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन ले, 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 16 जुलाई 2026 समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। ये कार्यक्रम सुना जा सकता है विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई और अब आपको सुनवा रहे हैं तेरे घर के सामने। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, SD बर्मन का संगीत।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत के आखिर में अब आपको सुनवा रहे हैं कल आज और कल। इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज है, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
3: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
3: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं। कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
3: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
3: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था। फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
3: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था। फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
3: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्र वासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
3: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
3: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
3: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
2: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
3: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
2: जी।
3: अब ये जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
2: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्र वासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं,
3: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
2: जी।
3: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे, और

0: उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
1: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
1: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ, बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
6: अरे, यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
6: हाँ, वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
6: अच्छा, तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है। वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
4: क्योंकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न

0: महाद्वीप में फैल जाती हैं।
1: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
0: हाँ।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
1: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
2: अच्छा।
1: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
2: अच्छी अर्थव्यवस्था।
1: हाँ।
0: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
0: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव। और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम, शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के,

0: परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है, मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे, पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो, अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा, तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय, कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे, जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ, एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र, तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ,
0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
5: नरेंद्रनाथ, तुम सो रहे हो?
6: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
5: क्या सोच रहे हो तुम?
6: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर

0: देने का कष्ट करेंगे।
1: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
0: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
1: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है, तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ। वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
2: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
0: प्रणाम महात्मन।
3: जीते रहो पुत्र।
0: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
2: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
3: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
0: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
2: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
0: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
2: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ए हरिहरन की गाई कुछ रचनाएं।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में आज कलाकार हैं हरि हरेश्वर पोद्दार।

0: आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे हरि हरेश्वर पोद्दार और साथी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कम्प्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसावां डांगो आपोसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जाहरिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आपको सुनवा रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। शाम 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के बारे में जानेंगे। मशरूम की खेती में नई संभावनाएं, इस विषय पर उर्वशी उपाध्याय की वार्ता होगी। घरेलू व्यंजन में भुट्टे की कचौरी बनाने की विधि जानेंगे। घरेलू नुस्खे में अजवाइन के फायदे बताएंगे। साथ ही सुनिएगा लोकगीत। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर कर्टन रेजर कार्यक्रम। रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत में सदाबहार फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 पर। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 आपको सुनवाएंगे नाटक तबादला, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता संजीव मालवीय। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आपको सुनवाएंगे प्रकृति वाहने का संतूर पर बजाया राग पूरिया कल्याण। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित शेष कार्यक्रमों की। अब आपको विवरण दे रहे हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का। कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सुनेंगे कल सुबह 6:30। खेती की बातें होंगी कल सुबह 6:35 पर। अनियंत्रित वर्षा की स्थिति में खरीफ फसल का वैज्ञानिक प्रबंधन, इस विषय के बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर अनुराधा शर्मा। श्री रामचरितमानस गान का पाठ होगा कल सुबह 6:40 पर। कल सुबह 7:20 पर साहित्यिकी के अंतर्गत मैथिली कोकिल विद्यापति के व्यक्तित्व पर समीक्षा करेंगे हरे राम वाजपेयी, डॉक्टर अखिलेश राव और भरत कुमार उपाध्याय। कल सुबह 8:30 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुनहरे पल कार्यक्रम होगा कल सुबह 7:35 पर। राम अवतार अखंड और साथी के गाए लोकगीत आप सुनेंगे कल सुबह 9:00 और शाम 6:45 पर। राजीव शर्मा की गाई कुछ रचनाएं आप सुनेंगे सुगम संगीत में कल सुबह 9:15 पर और शाम 6:30। रोज की तरह शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 9:30। इसमें आपको सुनवाएंगे पंडित अनंत लाल का शहनाई पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। सुबह 10:05 से होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। दिन में 11:00 होगा कार्यक्रम फोन करे गीत सुने। 12:00 संग्रहालय से, 12:30 पर संग्रहालय से। दिन में 12:00, दिन में 2:00 फिल्म संगीत। महिला कार्यक्रम होगा दिन में 1:00। इसके अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संतुलन और स्वयं की देखभाल, इस विषय पर चर्चा होगी। योजना मिशन शक्ति के बारे में जानेंगे। डिजिटल युग में महिलाएं अवसर और चुनौती, दीप्ति व्यास की वार्ता सुनिएगा। कल रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मन भावन। शास्त्रीय संगीत में रात 10:30 पर आपको सुनवाएंगे चित्रांगदा रेशवाल का पखावज पर बजाया ताल चौताल। खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:20 पर। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से होगी शुरू, प्रधानमंत्री।

0: ट्रेन की तस्वीरें साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। यह भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इसके तहत भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू की जाएंगी। नई ट्रेन 10 कोच वाले हाइड्रोजन चलित DEMU सेट के रूप में तैयार की गई है, जिसमें 682 सीटें हैं। इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह ट्रेन बिना हानिकारक धुआं छोड़े केवल जल वाष्प और गर्मी उत्पन्न करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना का बजट 62,500 करोड़ रुपए है। ये योजना 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। इसके तहत कंपनियों को बिक्री पर 2.25 से 5% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार के अनुसार इस योजना से देश में मोबाइल फोन का उत्पादन करीब 39,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमी कंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए कुल 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इस मिशन की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया,
1: हमने सेमिकॉन 1.0 में फोकस दिया कि एक तरीके से उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है भारत में स्थापित। 2.0 में सबसे पहला फोकस आएगा डिजाइन ऑफ चिप्स। डिजाइन ऑफ चिप्स स्ट्रेटेजिक चिप्स भी होगी और कमर्शियल चिप्स भी होगी। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी। उसकी IP भारत में रहेगी और भारत में ही उसका फैब्रिकेशन होगा। इस तरह की व्यवस्था ही सेमिकॉन 2.0 में 100% हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत के 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसे एक जन केंद्रित समझौता बताया गया है, जिसे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। ये समझौता भारत के वैश्विक बाजारों से जुड़ने और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इसके तहत डेयरी उत्पाद, मोटा अनाज, खाद्य तेल, अनाज और सेब जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों की साझेदारी में महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और लघु उद्योगों को नई गति देगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि इससे प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भी सहयोग मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए बेहद मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाता है और इसी कड़ी में महोत्सव आयोजित हुआ। महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन स्मार्ट, सिंचाई, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इंदौर के बाद यह महोत्सव धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब हमारे प्रदेश के अंदर एविएशन के क्षेत्र में, विमानन के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम किसान कल्याण की बात कर रहे हैं, दूसरा आज ही इंदौर से अबू धाबी की भी एक नई फ्लाइट शुरू हो रही है। ये मध्यप्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू हो रही है, इसका VGF हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल ने पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। ये विभाग अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल अब केवल आनंद विभाग के मंत्री रह गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। लखन पटेल पथरिया विधानसभा से विधायक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को हितलाभ और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्र का अवलोकन कर बच्चों के विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इसके अलावा डॉ. यादव ने इंदौर में नवनिर्मित 300 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर से

अभी के लिए प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाएगी और सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। अभी तक इंदौर से अबुधाबी जाने के लिए यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर जाना पड़ता था, जिसमें 7 से 8 घंटे लगते थे। नए उड़ान से यह सफर सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने आज दतिया कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इसमें दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्षता और गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। श्री झा ने स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदाता जागरूकता बढ़ाने को भी कहा। उन्होंने क्रिटिकल मतदान केन्द्रों, अवैध हथियारों की जब्ती और आचार संहिता उल्लंघन जैसे मुद्दों पर भी जानकारी ली। मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल के छोला स्थित श्री खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और उन्होंने अधिकारियों के साथ कॉरिडोर की 3D डिजाइन का अवलोकन कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के सहकारिता विभाग में पदोन्नति नियम 2025 के तहत बड़े पैमाने पर पदोन्नति की गई है। कुल 15 संवर्गों में 613 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। इनमें प्रथम श्रेणी के 41, द्वितीय श्रेणी के 84 और तृतीय श्रेणी के 486 पद शामिल हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। इसके तहत 1.25 लाख एकड़ से अधिक जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। 28 जुलाई से रीवा से कोलकाता के लिए एयर इंडिया की उड़ान शुरू होगी। ये उड़ान भोपाल होते हुए कोलकाता पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इससे विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को कोलकाता जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कैबिनेट मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हरसूद विधानसभा क्षेत्र में आज विधानसभा स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होकर बहनों से संवाद किया। प्रदेशव्यापी नशे से दूरी है जरूरी अभियान का शुभारंभ आज शिवपुरी, मंडला, आगरमालवा जिलों में जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 के अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। अशोकनगर में आज राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए लगभग 2,20,00,000 रूपये की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त की गई है। छिंदवाड़ा की 11 वर्षीय अशिता डेहरिया ने विशाखापट्टनम में आयोजित 37वीं अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। झाबुआ में 5 वर्ष तक के बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दस्तक अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त तक पूरे जिले में चलाया जाएगा। सीहोर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 46B के बुतनी स्थित मिडघाट सेक्शन में आज भीषण सड़क हादसे में 8 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर में पिछले 4-5 दिनों से उमस से बेहाल शहरवासियों को आज शाम करीब 4 बजे हुई तेज बारिश के बाद राहत मिली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली अपनी सगली बहन ना के अने दादा भाइयों के मनीषा शर्मा की प्रेम भरी राम राम। भाई बहनों, वैसे तो अपन समय समय पे बहुत सारी चर्चाओं करा अने कुछ काम की बात भी करा अने बहनों, आज अपन बात करांगा एक ऐसी योजना का बारा में जिन्हें घर की रसोई से धुओं मिटायो

ने चोका को में काम काज करने वाली बेन्ना को संताप भी मिटायो। आज की चर्चा को विषय है उज्ज्वला योजना, धुआं मुक्त रसोई, स्वस्थ परिवार। बेनहन, याद है कि पहला का जो अपन चूल्हा चौका पे जब काम करती थी तो लकड़ी कंडा का धुओं कितरो होतो थो, अने आँख में आंसू, खांसी अने सांस की तकलीफ, सोची के मन आज भी घबराई जावे। पर बेन्ना की परेशानी के देखते हुए भारत सरकार ने बड़ो कदम उठायो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का तहत गरीब घर की बई बेन्ना के फ्री में गैस कनेक्शन दियो गयो और आज भी गैस कनेक्शन दियो जा रियो है। बेनहन, इन योजना को उद्देश्य है कि परिवार के धुआं का जहर से बचानो अने अपना परिवार के स्वस्थ रखनो। और बेनहन, रसोई गैस में जो और भी बहुत सारा फायदा हो यदि अपना घर में एक रसोई गैस सही जाए तो, पर पहलो और सबसे बड़ा फायदा तो यो है कि समय बची जावे। 2 मिनट में बनने वाली चाय के बनाने में पहला का समय में चूल्हो चेताने में 15 मिनट लगी जाता था, अने अब चाय हुई जाए तैयार 2 मिनट में, ने बच्चा हुआ समय में अपनी जो बहन होने है वी या तो कहीं अपनो कामकाज निपट ले, कहीं सीखने को काम कर ले या फिर अपनो मनोरंजन कर ले। दूसरो फायदो है सेहत। बहन हो, धुआं से होने वाली कई सारी बीमारी से परिवार बची जावे और साथे साथे घर भी साफ सुथरो रहे, बर्तन दीवार ना भी काली नहीं पड़े। और सबसे बड़ो फायदो यो है कि अपन जो लकड़ी में ईंधन का रूप में यूज़ करता था वह लाने का लिए अपन कई सारा पेड़ों काटता था, अने भी पेड़ों कटने से बचिया तो अपनो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगो, पर्यावरण के नुकसान नहीं होएगो, मतलब अपने भी नुकसान नहीं होएगा। उज्ज्वला योजना का इतना सारा फायदा सुनी के जो बेन्ना कनेक्शन लेने में पीछे रह गई है वे तो कलच जाई के ने बस कनेक्शन लेगी लेगी, पर अभी कहीं करा कनेक्शन तो जाएगी अपने काल लेनो है। अभी अपने करनो है कि योजना के लिए जो भी कागजात की जरूरत है उनके भेला कर लो, जैसे कि आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, बैंक खाता नंबर का लिए बैंक खाता की पासबुक। अब ई सगड़ा कागज ने तुमने भेला तो कर लिया, आने बड़ी उतावली भी हुई रही हो, पर उतावल मचाने से पहला यो तो देख लो कि जानो कहाँ है, सुनो जानो कहाँ है अपने, अपना आसपास की कई भी जो गैस एजेंसी है वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम्हारे एक फार्म दियो जाएगो। यो फार्म एकदम मुफ्त है, इके भरने का लिए तुम्हारे 1 रुपयो भी नहीं लगेगो। उन्हें फॉर्म में कुछ जानकारी होन तुम्हारे से मांगी जाएगी, भी जानकारी होन बिल्कुल सही भर दो तो तुम्हारे जो है गैस कनेक्शन मुफ्त में मिल जाएगो। बेनहन, काम जल्दी जल्दी निपटानो होय, अपना परिवार के स्वस्थ रखनो होय और अपना घर के साफ सुथरो रखनो होय तो उज्ज्वला योजना के अपनाओ और झंझट से निजात पाओ। मेनहन, या तो अपन ने करी उज्ज्वला योजना की बात, अब क्यों नहीं एक लोकगीत भी अपन सुन ला। इन्हें लोकगीत गायो है बेन मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री ने।

0: भाई बहनों, पारंपरिक खेती तो अपन समझ करा, पर खेती की नई तकनीक और नई नई फसल के अपने के अपन अच्छो मुनाफो भी कमा सकता है। ऐसी जो एक खेती हुई मशरूम की खेती, कम जगह और कम समय में शानदार मुनाफो देने वाली एक बेहतरीन फसल है। या इके वैसे तो मुख्य रूप से सर्दियों में उगायो जाइए, लेकिन अपन तापमान के नियंत्रित करी के कमरा होन में भी इके साल भर का उगाई सकता है। मशरूम की खेती लगभग 40 से 60 दिन का भीतर फसल तैयार कर दे और 1 क्विंटल भूसा और अन्य सामग्री का आने वाला छोटा मोटा जो खर्च है उनका साथे आप कई गुना ज़्यादा मुनाफो कमाई सकता है। आना मशरूम जो है इसे बेचने के लिए आप अपना आसपास की स्थानीय सब्जी मंडी में जा सकता है या फिर सीधा सुपरमार्केट से भी संपर्क कर सकता है। अने मशरूम की खेती का लिए और भी वैसे बहुत सारी जानकारी की जरूरत रहे, क्योंकि कई भी नयो काम अपन करो तो उसके लिए सटीक जानकारी और प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। पर प्रशिक्षण से पहला इन्हीं फसल का कई कई आगे जाए के भविष्य है, किस तरह से अपन मशरूम की खेती कर सकता है, इन सब का बारे में एक वार्ता लिख गई हूँ। वार्ता में मशरूम की खेती में नई संभावनाएं विषय पर चर्चा करी रही है उर्वशी उपाध्याय।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक एवं लाभकारी कृषि तकनीकों को भी अपनाना चाहिए। मशरूम ऐसी ही एक फसल है जो कम स्थान, कम लागत तथा सीमित संसाधनों में अच्छी आय प्रदान कर सकती है। बदलते समय में कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए मशरूम उत्पादन एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभर रहा है। मशरूम एक फंगस है, वर्षा ऋतु में आपने अनेक स्थानों पर इसे स्वतः उगते हुए देखा होगा, विशेषकर उन जगहों पर जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा

0: मात्रा में नहीं पहुंचता। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। हालांकि प्रकृति में उगने वाले सभी मशरूम खाने योग्य नहीं होते। इसमें से कई प्रजातियां विषैली होती है, इसलिए केवल वैज्ञानिक रूप से पहचानी गई एवं खेती द्वारा उत्पादित मशरूमों का ही सेवन करना चाहिए। खाने योग्य मशरूम की प्रमुख प्रजातियों में ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, पेडिस्ट्रा मशरूम, शिटाके मशरूम तथा मोरेल या गुच्छी मशरूम प्रमुख है। भारत में व्यावसायिक खेती के लिए बटन, ऑयस्टर और मिल्की मशरूम सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के अनुसार इन प्रजातियों की खेती की जा सकती है, जिससे देश के अधिकांश क्षेत्रों में मशरूम उत्पादन की अच्छी संभावनाएं उपलब्ध हैं। मशरूम एक प्रजनन के लिए बीजों के स्थान पर स्पोर्स बनते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में मशरूम इन्हीं स्पोर्स के माध्यम से अपना जीवन चक्र पूरा करता है, किंतु व्यावसायिक स्तर पर मशरूम उत्पादन के लिए सीधे स्पोर्स का उपयोग नहीं किया जाता, इसके स्थान पर स्पॉन का प्रयोग किया जाता है। स्पॉन वास्तव में मशरूम का तैयार बीज होता है, जिसमें मशरूम का माइसेलियम गेहूं, ज्वार अथवा अन्य अनाजों पर विकसित किया जाता है। किसानों को सदैव प्रमाणित प्रयोगशालाओं, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा बागवानी विभाग से ही स्पॉन प्राप्त करना चाहिए। मशरूम आज छोटे बड़े सभी शहरों में तेजी से बिकने वाली नकदी फसल बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके उत्पादन के लिए कृषि भूमि की आवश्यकता नहीं होती। एक साधारण कमरे, शेड अथवा खाली भवन में भी इसका सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए सीमित भूमि वाले किसान भी इसे अतिरिक्त आय के स्रोत में अपना सकते हैं। मशरूम उत्पादन के लिए सबसे पहले कमरे की तैयारी की जाती है। कमरे में सीधी धूप नहीं आनी चाहिए तथा तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। उत्पादन प्रारंभ करने से पहले कमरे को अच्छी तरह साफ एवं विसंक्रमित किया जाता है, जिसे किसी प्रकार का संक्रमण या अन्य फफूंद विकसित न हो सके। इसके बाद गेहूं या धान के सूखे भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में भिगोया जाता है तथा उसे उपचारित किया जाता है। अतिरिक्त पानी निकालने के बाद भूसे को ठंडा किया जाता है, फिर पॉलिथीन बैग में भूसे और स्पॉन की परतें बारी बारी से भरी जाती है। बैग को बांधकर उसमें छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं। इन बैगों को अंधेरे या कम प्रकाश वाले कमरे में रखा जाता है। लगभग 15 से 20 दिनों में सफेद माइसेलियम पूरे बैग में फैल जाता है, जिसे स्पॉन रन कहते हैं। इसके बाद बैगों को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां पर्याप्त नमी और हल्का प्रकाश उपलब्ध हो। कमरे में 80-90% आर्द्रता बनाए रखने के लिए समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। कुछ ही दिनों में बैगों के छिद्रों में से छोटे छोटे मशरूम निकलने लगते हैं। उचित तापमान और नमी मिलने पर ये तेजी से विकसित होते हैं। जब मशरूम पूर्ण आकार प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्हें सावधानीपूर्वक तोड़ लिया जाता है। सामान्यतः पहली फसल 25 से 30 दिनों में प्राप्त हो जाती है। मशरूम उत्पादन में स्वच्छता का विशेष महत्व है। केवल प्रमाणित स्पॉन का उपयोग करना चाहिए, उत्पादन कक्ष को साफ रखना चाहिए तथा संक्रमित बैगों को तुरंत अलग कर देना चाहिए। तापमान और आर्द्रता का उचित प्रबंधन इस खेती की सफलता की कुंजी है। मशरूम उत्पादन प्रारंभ करने से पहले किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यानिकी विभाग अथवा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। उचित प्रशिक्षण से उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों, रोग एवं संक्रमण प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण तथा विपणन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। इसे उत्पादन के दौरान होने वाली त्रुटियों और आर्थिक हानि की संभावना कम हो जाती है तथा सफलता की संभावना बढ़ जाती है। वर्तमान समय में लोग स्वास्थ्य के प्रति पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक हो गए हैं। पौष्टिक, कम वसा युक्त तथा प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों की मांग लगातार बढ़ रही है। मशरूम भी ऐसा ही एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, जिसके कारण इसकी खपत और बाजार मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसमें उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन, विटामिन बी समूह, विटामिन डी, खनिज लवण तथा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो इसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाते हैं। देश विदेश के बाजारों, होटलों, रेस्टोरेंटों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। यदि किसानों को मशरूम के पोषण मूल्य, बाजार की मांग तथा उसके वास्तविक आर्थिक महत्व की सही जानकारी हो, तो वे अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की बदलती जीवन शैली और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता को समझकर किसान अपने उत्पाद का बेहतर विपणन कर सकते हैं तथा उसे उसके वास्तविक मूल्य पर बेच सकते हैं। यही कारण है कि आज मशरूम केवल एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उभरता हुआ व्यावसायिक अवसर भी बनता जा रहा है। यदि लागत और लाभ की बात करें तो सामान्यतः स्पॉन 100 रुपए से 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध हो जाते हैं। 100 किलोग्राम भूसे के लिए लगभग 2 से 3 किलोग्राम स्पॉन की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम स्पॉन से औसतन 4 से 6 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है। एक मशरूम बैग तैयार करने में लगभग 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की लागत आती है, जबकि उससे प्राप्त मशरूम की बिक्री में 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का शुद्ध लाभ अर्जित किया जा सकता है। स्थानीय बाजार, होटल, रेस्टोरेंट तथा सब्जी मंडियों से सीधे जुड़कर किसान अपनी आय में और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। आज का युग स्मार्टफोन, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का युग है। जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब हमारे किसान भाइयों को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। समय के साथ चलना ही प्रगति का मार्ग है। समझदारी अवधारणा के विपरीत तैरकर पत्थरों से टकराने और स्वयं को घायल करने में नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और नवीन तकनीकों की नाव में सवार होकर समय की धारा के साथ बढ़ने में है। खेती गृहस्थी के क्षेत्र में भी आधुनिकता और नवाचार को अपनाकर हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और कृषि को अधिक लाभकारी बना सकते हैं। मशरूम की खेती आधुनिक कृषि का एक सफल और लाभकारी विकल्प है। कम भूमि, कम लागत तथा कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त होने के कारण किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार का उत्कृष्ट माध्यम बन सकती है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें गेहूं का भूसा, धान का पुआल तथा अन्य कृषि अवशेषों का उपयोग किया जाता है। इससे कृषि अपशिष्ट का सदुपयोग होता है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है तथा किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर प्राप्त होता है। मशरूम उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष भी उत्तम जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायता मिलती है। मशरूम की खेती को पारंपरिक खेती के साथ साथ आसानी से अपनाया जा सकता है। किसान अपनी नियमित फसलों के उत्पादन को प्रभावित किए बिना इसे सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित कर सकते हैं। यही कारण है कि यह खेती आज किसानों के लिए अतिरिक्त आय और रोजगार का एक सशक्त माध्यम बनती जा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ ऐसी नवीन तकनीकों और फसलों को भी अपनाएं जो बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। मशरूम की खेती न केवल आय के नए स्रोत उपलब्ध कराती है, बल्कि कृषि को अधिक वैज्ञानिक, टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और लाभकारी बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि वैज्ञानिक जानकारी, उचित प्रशिक्षण और बेहतर विपणन व्यवस्था हो तो मशरूम की खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने तथा किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद।
1: मशरूम की खेती में नई संभावनाएं, इन विषय पर अभी हमने वार्ता सुनी। वार्ताकार थी उर्वशी उपाध्याय। अनंत, देखो उर्वशी बहन ने कितनी अच्छी बात अपने बताई कि नई तकनीक और नई नई जानकारी का साथ है, आप कम समय और कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमाई सकता है। अन देखो, या तो अपन कई भी क्षेत्र में होए, यदि जानकारी अपने होए तो जानकारी का साथ है मुनाफा तो बढ़े ज बढ़े। ऐसे ही कभी अपन मंडी भाव की जानकारी ले ला तो भी अपना कुछ फायदा तो हो जाएगा, यदि अपन फसल के ली के मंडी तक जावांगा तो मंडी भाव आज कृषि उपज मंडी समिति इंदौर से हम लोग मंडी भाव लेके आया है। मंडी में आज सोयाबीन की आवक थी 978 कुंटल, भाव रियो 4,700 रुपया से लगे के 7,350 रुपया, मॉडल भाव 7,155 रुपया। गेहूं की आवक थी 1,476 कुंटल, भाव रियो 2,184 रुपया से लगे के 3,200 रुपया, मॉडल भाव 2,500 रुपया। डॉलर चना की आवक थी 3,161 क्विंटल, भाव रियो 5,500 से 9,210 रुपया, मॉडल भाव 8,300 रुपया। देशी चना की आवक थी 408 क्विंटल, भाव रियो 4,000 रुपया से लगई के 8,365 रुपया, मॉडल भाव 4,000 रुपया। मूंग की जो आवक थी वह थी 68 क्विंटल, भाव रियो 5,600 से 7,200 रुपया, मॉडल भाव 6,720 रुपया। साते साते सरसों की आवक थी 14 कुंटल, भाव रियो 6,785 रुपया से लगे के 7,495, मॉडल भाव रियो 7,495। भाई बहनों, मॉडल भाव का सामने जो मंडी भाव है उनकी जानकारी का बाद में एक लोकगीत और सुन लांगा तो कितरो आनंद आ जाएगो। लोकगीत सुना जिके गावे बेन शारदा पगारे ने।

भाई बहनों, अपना बड़ा बुजुर्ग कहता था कि छोटो मोटो दवाखानों तो अपनो रसोई घर ज है, अने अपना रसोई घर में जो डब्बा उन रख्या है उनमें कई सारी बीमारियां की दवा भरी हुई है। तो क्यों नहीं आज अपन भी खोला अजवाइन को डब्बो, इनमें देखा है कि इससे अपन कौन कौन सी बीमारियों की दवा मिली सकती है। भाई बहनों, पेट फूलनो, गैस, अपच और पेट से जुड़ी कई सारी बीमारियों के लिए अपन कई तरह की भोजन का बाद एक चम्मच अजवाइन और कालो नमक गुनगुना पानी का साथ यदि अपन ली लांगा तो अपने बहुत आराम मिलेगो। सर्दी जुकाम हुई जाए तो ऐसा में अजवाइन के तवा पे सेकी लो और इना सेकिया हुआ अजवाइन के सूती कपड़ा में बांधी लो और इके बार बार सूंघता रहो, जिससे कहीं होएगो कि यदि नाक बंद है तो नाक खुली जावेगी। आने अपना का छोटा मोटा नाना मोना बालक ना रहे उनके अपन या जो पोटली है इके तवा पे हल्के हल्के गर्म करी के ने उनसे किसी कई करी सकता है तो बच्चा उनकी छाती में जो कफ जमी हो वो भी निकली जाएगो और भी राहत भरी नींद सोई पाएगा। भाई बहनों, मोटापो आज का समय में बहुत बड़ी समस्या है, तो मोटापा के दूर करने का लिए एक चम्मच अजवाइन के रात भर पानी में गले के रख दो अने सुबह उठी के जो यो पानी है इके अच्छी तरह से उबाल लो। जब यो पानी उबली जाए ने ठंडो हो जाए तो इना पानी को सेवन कर लो निरना। ऐसो कुछ दिन तक करने पे आपके महसूस होएगो कि आपका जो चर्बी है वह गलीरी है। अने दांत में दर्द होए तो ऐसा में भी अपन अजवाइन को उपयोग कर सकता है। अजवाइन के पानी में उकाल लो और इना पानी के ठंडो कर लो। जब यो पानी अच्छी तरह से ठंडो हो जाए तब इना पानी का गरारा करो। इका से कहीं होगो कि अपना दांत का बीच में जो भी कीटाणु होन रहेगा उनसे अपने राहत मिलेगी। अने ध्यान रख जो वो कहे नहीं कि ज़्यादा कहीं भी होए तो वह नुकसान अच करे। इका वा से अजवाइन की तासीर गर्म रहे तो अजवाइन को सेवन करते वक्त ध्यान रख जो कि सीमित मात्रा में करा जिससे कि नुकसान नहीं होए। अने अपनी जो गर्भवती बहन होन है वी भी ध्यान रखे। प्रसव का पश्चात तो दियो जाएगो पर प्रसव का पहला अजवाइन को सीमित मात्रा में सेवन करे। अने देखो भाई बहनों, अजवाइन का फायदा का बाद में क्यों नहीं एक लोकगीत और अपन सुनना जिके गाया है बहन प्रमिला रणसोरे ने।

भाई बहनों, बरसात को मौसम आई गयो है अने इना मौसम में चटपटी और गर्मा गर्म चीज खाने की सबके मन होय। अने जो चीज आसानी से उपलब्ध हो जाए वो कोज उपयोग करा तो देखो और भी आसान रहे। अब देखने में रही हो है कि इना मौसम में भुट्टा बाजार में जहाँ देखो वहाँ कहीं भी से भी गली से गुजरो तो एक ना एक भुट्टा वालों तो मिल जाए। तो क्यों नहीं ऐसा मैं अपन भुट्टा की कचौरी बनाई लांगा तो स्वाद भी आएगो आना अपन अच्छी तरह से उसको सेवन भी करी पाएंगा। तो भुट्टा की कचौरी बनाने के लिए अपने कई कई सामान की जरूरत पड़ेगी। पहला यो सुन लो, चार पांच भुट्टा ले लो, उनके किसी के धर लो।

एक चम्मच अदरक और हरी मिर्ची को पेस्ट ले लो, जीरो, अजवाइन, हरो धनियों, नमक, अमचूर और 2 कप मैदो मोयन का लिए और तलने के लिए तेल ले लो। आने चटपटो पसंद हो तो थोड़ी बहुत लाल मिर्ची भी अपना हिसाब से डाली सकता है। तो सबसे पहला आपने कही करना है भाई बहनों कि सबसे पहला आपने मैदा में अच्छी तरह से मोयन डाली के, अच्छी तरह मिलाओ और देखी लो कि वो जो आटो है वो कोई मुट्ठी बंदी रही हो, इतरो मोयन डाली के थोड़ा नमक डालो और गुथी के एक तरफ धर दो। उसके बाद फिर कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करो, उसमें जीरो अजवाइन डाली के किसिया हुआ भुट्टा के डाल दो और 4-5 मिनट अच्छी तरह से उनके सेकी लो ताकि उनको कच्चोपन निकली जाए। फिर मैं अदरक मिर्च और जो पाउडर है वो पेस्ट तो वो डाल दो, नमक, अमचूर, धनियों और जो भी मसाला अपन ने ली रखा है वे सब अच्छी तरह से डाली के 2 मिनट का लिए और धीमी आंच पे होके सेकी लो। फिर इके ठंडो कर लो। जब ये ठंडो हो जाए तो जो अपन ने आटो रखियो थो उके एक बार और अच्छे से गुथी लो और इन आटा की नींबू बराबर लोई होन बनाई लो और इन लोई होन के हथेली का बीच दबाई दबाई के कटोरी जैसो आकार दे दो और बीच में भुट्टा को मसालो जो अपन ने लियो है वो भरी के अच्छी तरह से बंद कर दो और कचोरी को आकार दी के कढ़ाई में तेल गरम रखो। जब तेल गुनगुनो रहे तब से कचोरी उनके तलने के लिए डाल दो। धीमी धीमी आंच पे ही तलाएगी तो इनमें जो फुग्गा बनी जाए वे भी नहीं बनेगा और अच्छी सुनहरी होने तक तल लो। फिर इका बाद दम इके या तो चटनी, हरी चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ सेवन करो तो देखो घणो आनंद आएगो और बरसात को भी मजा ही जाएगा। अने मजा तो अपना कार्यक्रम में भी घना आवे है, आज भी आया ने काल भी आएगा। तो काल भी हम तुमसे आवांगा खूब सारी बात करने, खूब सारा लोकगीत सुनने अने विशेषज्ञ भाइयों की जानकारी उनके लिए के। पर आज घड़ी की सुई गई रही है कि जाने की बखत आई गई है। तो तुम्हारी बहन मनीषा शर्मा के आज का लिए दो विदा। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुत ही अहम फैसले लिए हैं, जो पूरे देश के विकास के लिए, हमारे मूलभूत ढांचे के विस्तार के लिए अहम है। क्या हैं ये फैसले और किस तरह से ये हमारी अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करेंगे, इस सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद
3: अदिति जी। आज कई तरह के अलग अलग फैसले लिए गए हैं, विभिन्न जो हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, उससे जुड़े हुए, सेमीकंडक्टर जो हमारा इकोसिस्टम है, या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, रेलवेज, या एग्रीकल्चर से जुड़ा एक बहुत अहम फैसला है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से बहुत जुड़ा हुआ एक अहम फैसला लिया गया है। आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन 2.0 मिशन से जुड़े कैबिनेट निर्णय के बारे में क्या कहा।
5: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन

0: ने जो कैमरा है घर में, फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है।
1: इसको आप कैसे देखती हैं इस परिदृश्य में कि सेमीकॉन 1.0 कुछ वर्ष पहले लाया गया था?
2: आपने जैसा कि कहा कि बहुत ही मूलभूत परिवर्तन के लिए बड़े बड़े आज डिसीजंस लिए गए हैं। अगर आप सारे डिसीजंस को एक तार में पिरोकर देखना चाहें तो आप जानेंगी कि ये मोस्टली आत्मनिर्भरता की तरफ देश को ले जाने के लिए
1: जी
2: बहुत
1: जी
2: इम्पोर्टेंट कार्यक्रमों की घोषणा आज हुई है, जिसमें सेमीकॉन 2 जो आपने कहा जो सबसे अहम आज का डिसीजन है, वो देखिए अहम इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व का जो सबसे इम्पोर्टेंट सब सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप किसी भी बड़े देश को देख लीजिए, जो जो देश इकोनॉमिक तरक्की जल्दी कर पाए हैं वो देश हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे हमारा कॉम्पिटिटर है चाइना, तो उससे हम कम्पीट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। अब मोबाइल एक्सपोर्ट्स में भारत ऑलरेडी दूसरे नंबर का देश बन चुका है, हम चाइना से ही पीछे हैं और हम बहुत तेजी से प्रगति करने वाले हैं। और सेमीकॉन की इंडस्ट्री सोनू जी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो ड्राई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जिसका सेमीकॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो पूरे स्ट्रेटेजिक सेक्टर को आज की डेट में ड्राइव कर रहा है। ना सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया की है, स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दें और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इस इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। आप जानती हैं कि माइक्रोन का बहुत बड़ा एक प्लांट ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन में जा चुका है। उसके बाद केन्स का प्लांट जो 46 एकर्स में फैला हुआ है उसका भी अब शुरुआत हो चुकी है, तो उसी को आगे ले जाने के लिए आज इसकी घोषणा की गई है।
1: सो ये जो एक इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जैसे आप कह रही हैं कि 12 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे सेमीकॉन 0.1 के अंदर और ऑलरेडी 3 ऑपरेशनल हो चुके हैं, बाकियों पे बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। सो आपको लगता है ये मोमेंटम जो बना रहे उसके लिए आज का जो ये अनाउंसमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका किस तरह से हमारे जो रोजगार सृजन पर भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उसके बारे में भी अगर आप हमें बता सकें?
2: देखिए कम से कम इससे 60,000 जॉब्स की जनरेशन का प्लान है। और आप ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में सेमीकंडक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज की डेट में करीब अगर पूरे देश का लैंडस्केप आप देखिए 105 स्टार्टअप्स हैं जो इसी सेक्टर में कार्यरत हैं इस टाइम, और जो फंडिंग सपोर्ट ले रही हैं वो ऑलरेडी जो मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ भी जा रही हैं अपने लेवल पर, वो करीब 24 हो चुकी हैं। और कम से कम ये जो प्लांट्स आज की डेट में काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, जैसा कि आपने देखा कि आज अश्विनी वैष्णव जी ने जब अपनी प्रेजेंटेशन दी उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज वहां बताई कि हमारे देश की दूर दराज गांवों की लड़कियां उनको हम चिन्हित करके फिर सेमीकंडक्टर के ऑपरेशंस में उनको ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, थाईलैंड जा रही हैं बच्चियां। झारखंड की एक लड़की का वहां पर वक्तव्य हुआ और उसने बताया कि वो कह रही है कि मैं कभी झारखंड से बाहर नहीं गई और सीधा थाईलैंड गई और सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लेके अब वो सेमीकंडक्टर प्लांट में कार्यरत है। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे रूरल इंडिया की लड़कियों को ट्रेन करके, और 60% जो बच्चे और जो वर्कफोर्स इस वक्त सेमीकंडक्टर ऑपरेशंस में भारतवर्ष में है उसका 60% महिलाएं हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो ये है कि जो नया सेमीकंडक्टर का करिक्युलम बन गया है, क्योंकि अब हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो करीब 500 कॉलेज भारत के ऐसे हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है और 8,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रतिवर्ष सेमीकंडक्टर करिकुलम को पढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो ये सब कल को जाकर हमारे वर्कफोर्स को एनर्जाइज करने वाले हैं।
1: और इस सरकार ने हमेशा ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का उस पर बहुत बल दिया है, उसके विकास पर, और सड़कों को लेकर आज जो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास एक 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो 6-लेन ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर है, और दूसरा प्रोजेक्ट है 43 किलोमीटर से ज्यादा 6x4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। इन दोनों में जो 25,400 करोड़ रुपए का खर्च बताया है सरकार ने किया जाएगा, इनके प्रमुख फायदे क्या होंगे इस जो एरिया में रहते हैं लोग, और अगर हम कारोबार की बात करें, टूरिज्म की बात करें, थोड़ा विस्तार से बता सकें तो?
2: देखिए आजकल हमारे शहरों की सबसे बड़ी चैलेंज है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर वक्त से पहुंच पाएं। उसी से हमारी प्रोडक्टिविटी डिपेंड होती है। हम जब सड़क पर बहुत सारा वक्त जाया करते हैं या ड्राइव कर रहे हैं।

0: हैं तो वक्त जाया करते हैं, तो वो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, हमारी अर्बन मोबिलिटी को लो करता है और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को डाउन करता है. बहुत सारी ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं जो हमें ये बताती हैं कि मॉडर्न एक्सेस कंट्रोल्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स अगर हम बनाते हैं तो उससे ना सिर्फ अर्बन कनेक्टिविटी बढ़ती है सोनू जी, उससे हमारी यू नो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम बेहतर काम कर पाते हैं, हम इकोनॉमी में अपना बेहतर योगदान दे पाते हैं. तो ये एक साइक्लिकल इम्पैक्ट होता है पूरी इकोनॉमी पर. और जैसा कि कनेक्टिविटी से जाहिर सी बात है कि आसपास के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको भी बहुत गति मिलेगी क्योंकि आसान हो जाएगा आवागमन. ये जो दो प्रोजेक्ट्स वाराणसी के लिए घोषित हुए हैं इनसे बहुत सारी अर्बन मोबिलिटी की जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ट्रैफिक चोकिंग की वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ना सिर्फ लोकल रेजिडेंट्स को इसका फायदा होने वाला है, वाराणसी एक बहुत ही बड़ा इस वक्त टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गया है. रिलीजियस टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो बहुत ही अहम डेस्टिनेशन बन गया,
1: इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए
0: इंटरनेशनल ऑल्सो. और आप देखिए इनक्रेडिबल इंडिया का जो ब्रांड है उसको भी गति मिलती है ना जब ग्लोबल टूरिस्ट आते हैं और कनेक्टिविटी इम्प्रूव नजर आती है, सीमलेस ट्रांसपोर्ट नजर आता है, तो फिर वो एक अच्छा इम्प्रेशन लेके भारत का बाहर जाते हैं, उससे फिर हमारी ग्लोबल और इंटरनेशनल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है.
1: और अगर हम वापस फिर एडवांस टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन्स के लिए जो अप्रूवल आया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का 62,500 करोड़ रुपीस का आउटले है 5 सालों के अंदर, और उसमें इंसेंटिव सपोर्ट की भी बात की गई है, और एक जो बड़ा उन्होंने कहा है कि लक्ष्य है कि भारतीय ब्रांड्स बिल्ड हों, इसको आप कैसे देखती हैं? अभी तक जो मोबाइल फोन में हमने प्रगति देखी है पिछले 11 वर्षों में, उसको देखते हुए ये आपको और कितना एक आगे ले जाने वाला स्टेप दिखाई देता?
0: देखिए जो मोबाइल फोन्स हैं इस वक्त भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में टॉप का प्रोडक्ट है, और हम अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और हम पिछले दशक के कंपैरिजन में देखें तो 2014 में हमारा जो स्थान था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में वो हम 9th स्पॉट पर थे पूरे विश्व में, और आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 3rd नंबर पर आ गए हैं. तो ये 10 साल का हमारा प्रोग्रेस है. वहीं अगर हम विद इन द सेक्टर किसी प्रोडक्ट की बात करें तो मोबाइल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का जो इस वक्त टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी है इंडिया से. मतलब आप समझिए कि डीजल से भी आगे हम डीजल का एक्सपोर्ट करते हैं, फ्यूल का भी कुछ एक्सपोर्ट हम करते हैं, और आज ही अश्विनी वैष्णव जी ने भी बताया कि ये टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी बन चुका है. और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि 10 साल पहले टॉप 100 में भी नहीं था. टॉप 100 एक्सपोर्टेड आइटम जो इंडिया से है उसमें मोबाइल फोन का जिक्र नहीं था, और आज वो टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी बन गई है. तो ये जताता है और दर्शाता है कि देश में इनहेरेंट कैपेसिटी और इनहेरेंट पोटेंशियल कितना था. आपको याद है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई
1: जी,
0: आई थिंक 2021 में आई, और उसको कितना बड़ा उसका लाभ हुआ है इकोनॉमी को, कि आज की डेट में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़ गई है कि एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है
1: जी.
0: और सेकेंडली जो और भी बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो ये है कि इस वक्त भारत में 98% जो फोन यूज हो रहे हैं वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड फोन्स हैं. तो हम ना सिर्फ एक्सपोर्ट सेगमेंट में बढ़ चढ़ के निकल रहे हैं मोबाइल सेक्टर में, हम इवन डोमेस्टिकली इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अब यूज भी कर रहे हैं. और जैसा कि सरकार का अनाउंसमेंट है कि इंडिया के मोबाइल ब्रांड्स को पूरे विश्व में एक्सेप्टेबिलिटी दिलानी
1: जी,
0: तो ये एक चैलेंज है. आई थिंक उसी चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए आज ये स्कीम लाई गई है.
1: अदित्य, एक और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूरिया में आत्मनिर्भरता हम अचीव कर सकें उसके लिए जो पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई निवेश नीति यूरिया क्षेत्र से संबंधित एक कैबिनेट निर्णय के बारे में भी बात की. आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा.
2: नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है. तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे. ईच वन ऑफ देम वुड बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 12.7 लाख मैट्रिक टन्स, उससे करीब 1 करोड़ मैट्रिक टन्स के प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे. इस पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए. 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है. और ये 8 और प्लांट ऐड करने से भारत की कंप्लीट रिक्वायरमेंट, जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा.
1: इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं?

0: ऑफ क्रूड को. सिमिलरली यूरिया का इम्पोर्ट एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है. और देखिए हमारा एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, हम ये ना भूलें सोनू जी कि हम जितने मर्जी एडवांस्ड हो जाएं, हमारे देश में जो रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की वो किसान है, और किसान के माध्यम से फार्मिंग है और एग्रीकल्चर है. तो उसकी तरफ जो ध्यान सरकार ने आज दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे होने क्या वाला है, इससे हर प्लांट जब ये बन जाएगा, 8 प्लांट्स की घोषणा हुई है, 6 ऑलरेडी बन चुके हैं पिछले 10 साल में, 8 और बनेंगे. जब एक एक ये प्लांट कायम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, 250 करोड़ प्रति प्लांट इम्पोर्ट पे जो जा रहा है, 250 करोड़ प्रति प्लांट जो जा रहा है वो हम सेव करने वाले हैं, और 1 करोड़ मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हम बढ़ाने वाले हैं. तो आप सोचिए कि आपने देखा है कि ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड होता है यूरिया, तो इसके लिए हेल्प होगी फार्मर्स की.
1: सो बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाले सारे आज डिसीजंस थे, जिसमें 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स रेलवेज के भी शामिल हैं उड़ीसा और झारखंड में, जिनसे जो रोड पर भार है वो कम होगा, रेलवेज की तरफ डाइवर्ट होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होंगे, एनवायरमेंट को फायदा होगा. बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी, आप आई और आपने इन अहम फैसलों पर, उनकी बारीकियों पर हमें जानकारी दी.
0: धन्यवाद.
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा. इसमें भाग ले रही थीं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है AIRNSDetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है. आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्रित पूर्वावलोकन कार्यक्रम.

0: आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन।
1: करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का जीवन स्वरूप एक अनुपम महापर्व है पूरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है जिसकी भव्यता शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आने के लिए आतुर होते हैं। यही है भगवान और भक्त के मिलन का

सनातन संस्कृति का गौरव और मानवता के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेम का अद्भुत प्रतीक रथ यात्रा। 12वीं शताब्दी में निर्मित श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से तीनों रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही विधियों के अनुसार परंपरागत शिल्प कला में निपुण सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम करते हैं और आधुनिक मशीनों के युग में भी इन विशाल रथों का निर्माण परंपरागत तकनीकों से ही किया जाता है। तीनों में सबसे बड़े भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। ये रथ 16 विशाल पहियों वाला है। पीले और लाल रंग के रेशमी कपड़े जरी आदि से सुंदर रूप से सजे इस रथ को गरुड़ ध्वज तथा कपित ध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलभद्र का रथ है ताल ध्वज जो 14 पहियों

0: का है और हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है, जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, जो 12 पहियों वाला सौम्य और आकर्षक रथ है। काले एवं लाल रंग के कपड़े इस रथ पर शोभायमान होते हैं। ये तीनों रथ केवल लकड़ी के बने ढांचे नहीं बल्कि चलते फिरते देवालय हैं। तीनों ठाकुरों को रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ कराने से पहले श्री मंदिर के पुरोहित तीनों रथों की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। श्री बलभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष प्रक्रिया से श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, जिसे पोहंडी विजय कहा जाता है। और जब शंखनाद, घंट ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं के कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ की गूंज उठती है तो पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच उतर आने को आतुर हों। रथ यात्रा के विषय में मूल तथ्य की जानकारी लेते हैं जगन्नाथ संस्कृति के जानकार डॉक्टर शांतनु कुमार रथ से।
1: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व में अनन्य है। ये इसीलिए अनन्य है कि यहाँ भक्त भगवान को नहीं, स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पतित पावन यात्रा। इसका मतलब ये है कि संसार में आकर माया और संस्कार बस मनुष्य जो पतित हो जाता है, इन पतितों मनुष्यों को पावन करने के लिए महाप्रभु स्वयं ये यात्रा रचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि रथ पर आरूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने से मनुष्य को अपने अंदर विराजमान आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। रथ यात्रा के सारे क्षण ऐसा हो जाता है कि यह भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये ऐसे एक बिंदु है जहाँ दोनों समाहित हो जाते हैं। धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय विचार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को प्रेम करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, तुम भी करो। महाप्रभु का यह संदेश शत्रुभाव से सड़ता हुआ सारे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी है।
0: अपने अपने रथों पर जब तीनों ठाकुर विराजमान हो जाते हैं, तब होता है रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुष्ठान, जिसे छेरा पोहरा कहते हैं। छेरा पोहरा विधि के पीछे के संदेश के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं रथ यात्रा के भाष्यकार श्री मोहन मजीठिया से।
2: दो शब्दों को मिलाकर छेरा पोहरा नामकरण हुआ है। छेरा का अर्थ है चंदन का गाढ़ा घोल और पोहरा का अर्थ है झाड़ू से साफ करना। ये एक विशेष नीति है जिसके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आद्य सेवक माने जाने वाले पुरी के गजपति महाराजा को सौभाग्य प्राप्त है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता जब रथों पर विराजमान हो जाते हैं, तब गजपति महाराजा के पास संदेशा भेजा जाता है। महाराजा राजकीय वेशभूषा में एक स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में बैठकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। रथारूढ़ ठाकुरों के दर्शन, पूजा, आरती के साथ साथ सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का सिंचन कर महाराजा अपनी छेरा पोहरा की नीति संपन्न करते हैं। राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, विनम्रता का, समानता का, जहां राजा अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर सेवक बन जाते हैं। क्योंकि जो जगत के नाथ हैं, जो जगत के सम्राट हैं, उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर हैं, सभी उन्हीं के सेवक हैं।
3: हरि ओम तत्सत् श्री श्री जगन्नाथ।
4: हरि ओम तत्सत् श्री श्री जगन्नाथ।
0: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्धन मठ की विशेष भूमिका के बारे में बता रहे हैं गोवर्धन पीठ की आदित्य वाहिनी के प्रमुख श्री मातृ प्रसाद मिश्र।
5: आदि शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मोद्धारक माना जाता है, क्योंकि जगन्नाथ आदि चतुर्धा विग्रह 164 साल भूमिगत थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर दिग्विजय यात्रा में बृहद भारत को परिभ्राजक रूप में परिक्रमा करते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनको कपाबल के मालूम हुआ कि जगन्नाथ आदि चतुर्धा विग्रह मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उस समय आदि शंकराचार्य जी भगवान ने तत्कालिक राजा को आदेश देकर वनराज पद्धति ने ब्रह्म को उद्धार किया। केवल ब्रह्म ही था क्योंकि दारू विग्रह भूमिगत होते हुए क्षय हो गए थे, उसी वजह से आदि शंकराचार्य भगवान पुनः जगन्नाथादि चतुर्दा विग्रह को रूप प्रदान किया। वही जगत गुरु जी जो मंदिर के सारी रीति नीति परंपरा पूजा व्यवस्थावली सब कुछ तय किए, भारत से कोने कोने से ब्राह्मणों को बुला के 16 शासन प्रतिष्ठा किए, मुक्ति मंडप प्रतिष्ठा किए। पहले महाप्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल सेवायत वर्गों के लिए उपलब्ध था। सारी आने वाले भक्तों के लिए भी इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए प्रसाद बढ़ाया, भोग मंडप प्रतिष्ठा किया। इतने कृत्या आप देख रहे श्री जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था में, सारी कृतियों का नियामक आदि शंकराचार्य भगवान है। उस समय से 2005 साल से वही स्वर्णिम इतिहास आज भी श्री मंदिर व्यवस्था में प्रचलित है। वर्तमान में वही गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो आचार्य पद में वरण होते हैं, वही श्री मंदिर का सारी रीति नीति परंपरा धार्मिक कृतियों का नेतृत्व लेते हैं।
0: पूरी की रथ यात्रा प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को देश विदेश से अपनी ओर आकर्षित करती है। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वापस घर लौटने की यात्रा, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के मार्ग में भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे रुकते हैं, जहाँ उन्हें भोग के रूप में उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन पोड़ो पिठा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच पारिवारिक स्नेह का सुंदर उदाहरण है। फिर श्री मंदिर के बाहर रथों पर ही पारंपरिक रूप से ठाकुरों को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। सोना वेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भी देर रात तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। श्री मंदिर में माता लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब वापस आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने को होते हैं, तब देवी लक्ष्मी क्रोध और अभिमान के कारण मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। इस अनोखी परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रथयात्रा भाष्यकार श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
6: जिस लीला में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मां के पास भेंट करने के लिए 9 दिन की यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत श्री मंदिर को पुनः लौटने वाली लीला की अंतिम लीला लीलाद्री विजय लीला रूप में जाना जाता है। इस लीला में सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, दाऊ बलदेव जी, बहन सुभद्रा माता जी एक एक होकर रथ से उतरकर सिंहासन की ओर यात्रा करते हैं, उसको गुटी पांडी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जब जब मंदिर की सिंहासन से बाहर आते हैं, तब भक्तों के साथ भेंट होने के लिए मन में उत्सुकता की भाव रहता है, जिस कारण प्रभु जी धाड़ी पहनने में आते हैं। अर्थात भाव यह है कि भक्तों को छोड़कर उनसे दूर हटने के लिए प्रभु जी मन नहीं करते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक बाद एक अंदर जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लीलाद्री विजय की यात्रा में बलदाऊ और सुभद्रा जी अंदर जाने उपरांत जब जगन्नाथ जी सिंहासन की ओर यात्रा शुरू करते हैं, तो माँ महालक्ष्मी क्रोध अभिमान आदि भाव से मंदिर के द्वार को बंद कर देते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को अपनी रथ यात्रा में साथ न लेने के कारण क्रोध में आकर ऐसी मनुष्यचित लीला करते हैं। दूसरी भगवान जगन्नाथ जी भी माँ महालक्ष्मी जी की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने साथ वस्त्र अलंकार तथा रसगुल्ला भी लेकर जाते हैं और महालक्ष्मी जी को मनाते हैं और सिंहासन की ओर जाते हैं। परम ब्रह्म को यह मनुष्य लीला वास्तव में बड़ी अनोखी है, आनंदमय शास्त्रीय होने के साथ साथ संसार कल्याण का कारण भी है।
0: रथयात्रा में श्रद्धालुओं की निरापत्ता एवं श्रृंखलित रथयात्रा के लिए की गई विधि व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पुरी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक सिंह।
7: सारे डिपार्टमेंट सबकी तरफ से मिलके एक मिलित प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़ किया है, पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाया गया है, इन्फॉर्मेशन चैनल्स बढ़ाए हैं, पब्लिक के साथ हम जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, टाइमली शेयर करना चाह रहे हैं, एम्बुलेंस मूवमेंट, फर्स्ट एड सेंटर्स का इफेक्टिवनेस, इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारी एजेंसी, सारे डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं रेगुलरली, सब लोग मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं।
0: श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी रथ यात्रा के सुचारू संचालन के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं।
8: स्पेशल एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन एंश्योरिंग द स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिचुअल्स, द नीति साइड वी कॉल एफिशिएंट क्राउड मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर सर्विसेज, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो मेनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू फैसिलिटेट ए वेरी सेफ, ऑर्डरली एंड स्पिरिचुअली फुलफिलिंग रथ यात्रा फॉर द डिवोटीज कमिंग फ्रॉम फार अक्रॉस द वर्ल्ड। The Sri Jagannath Temple Administration expresses its gratitude to all the sabats of the Sri Mandira, the officials, the volunteers and all the stakeholders for their wholehearted cooperation and dedication. With the divine blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, every effort is being made to ensure the successful and peaceful conduct of this year's chariot festival. We request all the devotees coming for this grand spectacle to kindly follow the instructions and the procedures laid out for them. There would be few traffic restrictions in the city and also there would be few specific guidelines relating to the movement of devotees in the Badadanda and the adjoining areas. So we request everyone to kindly follow the SOP issued by the administration.
0: पूरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वे किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान है और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है। इसी शाश्वत संदेश के साथ हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।
9: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर निशांत मजीठिया, प्रस्तुति सहयोग दिलीप कुमार नायक और राजीव कुमार महुंता, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
10: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। कितनी हसीन है ये रात, इस रात में कुछ तो है बात। आसमान में फिर से निकल आया है चांद, टिमटिमा रहे हैं तारे, गहरी है रात, जगमग है नज़ारे। तुम कहती हो कि मैं सो जाऊं, पर मैं कैसे सो जाऊं इस जगमगाती रात में। तुम जो मेरे साथ हो, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें टकटकी लगाए देखता जा रहा हूं और तुम शर्मा रही हो, अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा रही हो और कह रही हो ये कैसी रात है, नींद के आगोश में सो गई है सारी दुनिया। और तुम कहते हो कि तुम्हें नींद नहीं आती।

रात ढलती जा रही है। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, दिल की बात जुबां पर आते आते रुक सी जाती है। मोहब्बत का इजहार करना बड़ा मुश्किल है। दिल तो चाहता है बहुत कुछ कहना, पर तुम्हारे पास आते ही जुबां मौन हो जाती है और हम कुछ नहीं कह पाते। तन्हाई की ये कुछ ऐसी अजब रात है, तन्हाई की ये कुछ ऐसी अजब रात है, तुमसे जुड़ी हुई हर याद मेरे साथ है। तड़प रहा है तन्हा चांद बिना चांदनी के, तड़प रहा है तन्हा चांद बिना चांदनी के, इस अंधेरी रात में आज कुछ और बात है।

वो लम्हा क्या तुम्हें याद है जब हम बरसते पानी में एक ही छाते के नीचे सुनसान सड़कों पर निकल जाया करते थे। कभी तुम भीगते और कभी मैं, कभी तुम सिमटते तो कभी मैं। उस रात, उस भीगी रात में तन और मन दोनों भीग जाया करते थे। तुम्हारे साथ बिताए हुए वो लम्हे मेरी जिंदगी की डायरी के खूबसूरत पन्ने थे। उठाकर जब हमने वो डायरी देखी, वक्त ठहरा सा, मुस्कुराता सा मिला। लम्हा लम्हा इंतजार किया उस लम्हे के लिए, लम्हा लम्हा इंतजार किया उस लम्हे के लिए, और वो लम्हा आया भी तो बस एक लम्हे के लिए। गुजारिश है ये खुदा से, गुजारिश है ये खुदा से कि काश वो लम्हा फिर से मिल जाए बस एक लम्हे के लिए।

दोस्तों, मिलना और बिछड़ना यही तो दस्तूर है इस जहां का। जब मिलते हैं, बातें करते हैं, दिल को सुकून मिलता है। जब बिछड़ते हैं तो दिल गमगीन हो जाता है। दिल तो चाहता है कि मिलने पर कभी ना बिछड़ें, पर अक्सर यह मुमकिन नहीं होता। आज की मुलाकात बस इतनी सी। मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 40 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एनुइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रूपये से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए, 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है, और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
2: हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई है। ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रूपये के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Centre clears two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Tensions rise in West Asia as US reimposes naval blockade on Iran amid exchange of fresh strikes between the two countries. Three Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England at Atlanta in the US tonight for a place in the final. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the Cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. He informed that investment worth 4 lakh crore rupees is expected under Semicon 2.0.
8: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
7: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. He said the scheme is aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub.
8: Today, Cabinet approved the mobile phone manufacturing scheme with a total outlay of 62,500 crore rupees over a period of 5 years. The scheme provides a wide range of incentives to promote domestic sourcing as India has now developed a strong manufacturing ecosystem and many mobile phone components are being exported from the country. Under the scheme, cumulative production worth around 39 lakh crore rupees is expected and around 60,000 new direct jobs will be created.
1: 3,000 direct jobs may create.
7: The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Mr. Vaishnav said the other project is related to the development of around 43-kilometer-long 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna River Bank in Varanasi City in Uttar Pradesh at a total capital cost of around 11,000 crore rupees.
8: The project is a fully elevated 6-lane and 4-lane corridor along the Varuna River. It will have a total length of 43 kilometers with an estimated investment of 10,998 crore rupees. It will have a total length of 43 kilometers with an estimated investment of 10,998 crore rupees and is expected to be completed in approximately 4 years. The fully elevated 6-lane corridor running alongside the Ganga River, it will span 46 kilometers and is estimated to be built at a cost of 14,448 crore rupees.
1: 14,448 crore rupees ka banega.
7: The cabinet also gave the nod to two multi-tracking projects covering four districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. It also approved the national investment policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. The policy seeks to encourage new investments in the urea sector for setting up gas-based urea manufacturing units in the country, helping achieve the goal of self-sufficiency. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom became operational today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero duty access to 99% of Indian exports in the UK market, including those in textiles, leather, engineering, food processing, pharmaceuticals and MSME. On the first day of CETA, Indian goods worth $140 million were exported to the United Kingdom. We have a report.
9: Commerce Secretary Rajesh Agrawal said that this agreement is completely aligned with Prime Minister Narendra Modi's vision for Viksit Bharat by 2047. He said this is one of the most aspirational and biggest trade agreements which will open up opportunities in market access on both sides.
10: Take advantage of this FTA from day one. Many consignments are being sent to UK under this India-UK CETA in different parts of the country by our different industry and industry partners. I am told that more than 140 million worth of goods are being shipped to UK today under this India-UK CETA on day one. This is a very happy news.
9: Talking to Akashvani, High Commissioner of UK to India, Lindy Cameron, said that this agreement is a great deal for both sides.
11: It is wonderful to be here today, celebrating the deal going into force, making it faster, cheaper, easier to do business between the UK and India. And for so much hard work on both sides, it's a great deal for both sides. We have very complementary economies.
9: Talking to Akashvani News, Chairman of Apparel Export Promotion Council, Dr. A. Shaktiwal, said that due to this agreement, exports will be doubled in 1.5 years.
12: They were waiting last 1 year for this historical agreement. Now it has been done. We are very happy about this. We are thankful to the Honorable Prime Minister of India and Honorable Commerce Minister of India for bringing this historical CETA agreement to us.
9: Talking to Akashvani News, Tarun Bajaj of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority said this agreement will be beneficial for agricultural and processing sectors.
13: This is extremely benefit for our agriculture and processed food sectors because 95% of the products will now be exported zero duty to UK market. And UK is a very developed nation and they are quite sensitive to the products. Now our products which matches the quality, now we'll also have a competitive advantage. In a short while we are hopeful that we will be able to double our exports.
9: Talking to Akashvani News, Executive Director of Gems and Jewelry Export Promotion Council, Sabyasachi Ray, said that this sector will be immensely benefited by this agreement.
14: The gems and jewelry sector is a very large sector from India. We are employing more than 5 million people across the country and we are on the largest exporter of diamonds in the world. We are again the largest manufacturer of emeralds in the world. All these will be benefited with this agreement.
9: This will significantly enhance the competitiveness of Indian exports in the UK market, generate new opportunities for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. Under the agreement, India has protected its sensitive sectors including dairy products, cereals, millets, edible oils, oil seeds, apples and several vegetable products. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
7: Vice President C.P. Radhakrishnan emphasized that these agreements will significantly expand market access, strengthen trade and services, and facilitate greater mobility for professionals. Prime Minister Narendra Modi said CETA will give a fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs, and MSMEs, along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan today called for corporate social responsibility support to strengthen agriculture through startups, skill development and agri-tech. The minister said this while addressing the ICAR Technology Portfolio for Corporate Social Responsibility Conclave 2026 in New Delhi. He urged the corporate sector to embrace the Indian ethos of trusteeship and dedicate a part of its earnings towards the welfare of farmers, agricultural research and rural communities. The Election Commission today extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, which were scheduled till the 29th of July, will now continue till the 8th of August. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till 3rd August. Earlier, the house-to-house visits were to conclude on the 24th of July. Yesterday, the Commission had extended the SIR schedule for Haryana and Andhra Pradesh. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab on Friday. The Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. He will launch various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind. Mr. Modi will travel to Chandigarh in the afternoon, where he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 6,600 crore rupees. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met with European Union Commissioner for Startups, Research and Innovation Ekaterina Zaharieva at Brussels in Belgium. In a social media post, Dr. Jaishankar said during the meeting they discussed opportunities for research in clean and green energy technologies. Tensions in West Asia have escalated after the United States reimposed a naval blockade on Iran amid fresh exchanges of strikes between the two countries following attacks on vessels in the Strait of Hormuz. The U.S. Military Central Command said the latest strikes were aimed at reducing Iran's ability to target commercial shipping in the Strait of Hormuz, a key route for global energy supplies. Iranian officials said U.S. strikes hit an army barracks, killing at least seven troops. Iranian state media reported that U.S. strikes also hit the southern port city of Bushehr, home to the country's civilian nuclear power facilities. Meanwhile, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 16 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बारिश के दिनों में पेट से संबंधित बीमारियां और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर रविंद्र काले से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 16 जुलाई 2026 यानी कल सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए फ़ोन नंबर 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 16 जुलाई 2026 सुबह 10:32 से 11:02 तक ये कार्यक्रम सुना जा सकता है विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत। कार्यक्रम का अगला गीत भीगी रात फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, रोशन का संगीत।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: चित्र गीत कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम 20 साल बाद, लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, हेमंत कुमार का संगीत।

चित्रगीत में आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम कुछ ही पलों में रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं बल्कि समझौतों से लिखा जाता है। ऐसे समझौते जो सीमाओं को नहीं संभावनाओं को जोड़ते हैं, ऐसे समझौते जिनकी गूंज केवल बंदरगाहों और बाजारों तक नहीं बल्कि उद्योगों, खेतों, कारखानों, स्टार्टअप्स और करोड़ों युवाओं के भविष्य तक सुनाई देती है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा भी कुछ ऐसा ही कदम है। ये सिर्फ आयात निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है। लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएगा? क्या ये लिविंग ब्रिज को आर्थिक महासेतु में बदल पाएगा? क्या इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समझौता केवल व्यापार बढ़ाएगा या भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस विशेष चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, डॉक्टर ए के भट्टाचार्य और डॉक्टर एस पी शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया,
4: नमस्कार।
2: डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, ऐसे में ये जो भारत के साथ समझौता हुआ है इसे आप कैसे दूसरे समझौतों से अलग देखते हैं, और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में इसके प्रमुख पहलुओं पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।
3: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ब्रेग्जिट के बाद यूके ने काफी देशों से समझौते किए हैं। यूके एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है और वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और यूके का जो आगे का चलन है, जो यूके का एक ग्रोथ ट्राजेक्टरी है और जो यूके की एक रेजिलियंस है वो सभी को मालूम है। सभी देशों में यूके अपनी रेजिलियंस के दौर पे माना जाता है। तो यूके ने अपना जो ट्रेड ट्राजेक्टरी को और जो अपना इकोनॉमिक होराइजन्स है उनको इंक्रीज करने के लिए जो व्यापार समझौते किए, पहले किए और जो भी इंडिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्टोरिक एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें खास बात यह है कि एक तो दोनों ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। एक तो इस तरीके से दोनों में जो एक आदान प्रदान है, दोनों में जो एक संभावना है वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरा जो एक हम कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करते हैं कि कई बार दोनों ही इकोनॉमी कॉम्पेटिटिव होती हैं तो उनमें खास जो इकोनॉमिक और ट्रेड डील्स नहीं हो पाती हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती हैं क्योंकि दोनों ही कंपटीशन में हैं। लेकिन हमारा यूके के साथ ऐसा नहीं है, हम एक कॉम्प्लीमेंटरी इकोनॉमी है। जैसे हम ज्यादातर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूके हमें जो हाई एंड कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में है, ज्यादातर जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूके से लेते हैं और आगे और ज्यादा लेंगे, और दूसरा जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं जैसे हमारे जो लेदर है, हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, हमारा जो स्टील है और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो ज्यादातर हम यूके को और तगाद में आगे दे पाएंगे, जो कि हमें 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्केट एक्सेस दिया गया है। जैसे ये तो एक बात होगी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में गिव एंड टेक है, बहुत ही एफिशिएंट है, हम जो प्रोडक्ट्स उनको देंगे वो उनमें हम कंपटीशन में नहीं है, उनको भी जरूरत है और हमें भी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी, और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है। एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंटरिटी है जो हमारा लक्ष्य है एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एडवांस्ड मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से। कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलके आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है, इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है। तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं।
2: जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा। यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवाजाही आसान होगी। डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है?
0: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो सेटा जो की जो टर्म्स जो हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो हैं भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है। उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या दलहन ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, वो सारे क्षेत्र में ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं, उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो आंकड़े हैं वो जरा समझने चाहिए। यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, पर उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इंपोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%। अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है, टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ है प्रोसेस फूड्स के ऊपर, वो घट के जीरो हो रही है। मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है, उसमें जीरो हो रही है। इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है, उसमें 18% था, उसमें जीरो हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स, वो बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें 18% है, जीरो हो जाएगा। लेदर एंड फुटवेयर में 16% था, उसमें जीरो हो जाएगा। और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था, उसमें भी जीरो हो जाएगा। और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8% था, उसमें भी जीरो हो जाएगा। ये सारे सेक्टर में, जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा कि हमारा शेयर सिर्फ 6% है, वो मैं समझता हूँ बढ़ जाएगा काफी। उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इंपोर्ट में 1% है, वो भी बढ़ जा सकता है। ऑटोमोटिव में देखें तो उसमें भी 1% से कम है। केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है। इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है। ऐसे सारे चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोसेस फूड और गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, इन सारे क्षेत्रों में जो काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जॉब इंटेंसिव है, इनका जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो यूको है, और यूको जैसे मैंने कहा ये सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा आयात करता है पर हमारा शेयर बहुत कम है इस वक्त, तो सेटा के बाद जब 0% ड्यूटी में आ जाएंगी ये सारी वस्तुएं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, हमारी डोमेस्टिक एमएसएमई सेक्टर है, जॉब क्रिएशन की जो क्षमता जो है अर्थनीति की, उसमें काफी एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उसके साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं, उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है। उसी के साथ जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं, उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूं कि इस एग्रीमेंट से ना कि भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने की डर है, उसके साथ साथ जो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर हैं ये सारे सेक्टर्स में और जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो यूके की जो मार्केट में जा सकते हैं। इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहां पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है, उनमें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह दोनों जगह टैक्स कटते हैं, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं। इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूं कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है, बिजनेस की जो कंट्रीब्यूशन जो है उसमें काफी इजाफा होगा।
2: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात एफटीए के करते हैं तो कई सारे मादक पदार्थें हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स पर भारत के उच्च आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचाएं और दोनों देश इससे लाभ भी उठाएं।
3: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है, क्योंकि यूके का मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है और उनके जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स की बात की है, तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन वो क्रिएट करेंगे। तो उसके दो मायने हैं, एक तो पहला कि हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जो ऑलरेडी बहुत कम्पेटिटिव है तो और ज्यादा कम्पेटिटिव बनेगी, हम भी एक कम्पिटिशन फेस करेंगे और बड़ा हेल्दी कम्पिटिशन होगा जिसको हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है। एक कोटा के थ्रू जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में बढ़ेगा। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारे इनोवेशन के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, खास करके जो पीएलआई है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे एफटीए करने के काबिल बने हैं। अब देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई एफटीए साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने एफटीए शुरू किए, मॉरिशस से शुरू होकर अभी हम आज यूके इम्प्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट को फ्लड कर दें और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए।

0: तो एक ग्रेजुअल प्रोसेसेस है जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस देगा।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
2: देखिए, जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूं कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा, जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो प्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, तो पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ऑरिजिन की जो बात की
1: जी,
2: उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सेटा का एक प्रोविजन है, उसमें रूल्स ऑफ ऑरिजिन का जो सर्टिफिकेट देने का और उसको मान्यकरण करने का जो प्रोसेस जो है, जो प्रणाली जो है, वो बहुत ही सरल की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जुलाई से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे, अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो FTAs जो है और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूं ये रूल्स ऑफ ऑरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इम्पोर्टर को भी। समय आने पर हमारी भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
1: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
0: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की, कि बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी, दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं, 70% यूके है और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारी आईटी सर्विसेज हैं या फिर हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं या फिर हमारी एजुकेशन सर्विसेज हैं या फिर हमारे जो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उनके लिए एक प्रोविजन में उनको आगे मार्केट एक्सेस दी जाएगी, उनको कोई ऐसी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग, और वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वहीं पे एजुकेशन करके वहीं पे ही सेटल होने का और वहीं पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक माध्यम भी बनेगा, जो कि FTA आगे दर्शाता है कि उनको आगे मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो आगे वहां पे ही अपना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर, तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर FTA की बात है। आप देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड, दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द FTA। अभी FTA के बाद आगे का क्या रहेगा, मैं समझता हूं कि दोनों, खैर ज्यादातर हमें जो एक्सेस है जिसके लिए हमने FTA को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी, जिसके लिए हमारा ये FTA भी हुआ, तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कम्पीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं। जो भी ये अनुपात है 23-24 और 33-34 का, मैं समझता हूं कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में, उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
2: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था, उसके बाद ये सारे जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हैं ऑलरेडी, यूके उसी में से एक है। इसका कारण है कि वो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है वहां पे, जो फ्री ट्रेड की जो एक वातावरण था, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था उसमें काफी एक धक्का पहुंचा था। तो मेरा मानना यह है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है उसमें एक काफी एक धक्का मिला है उसको, और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, ईयू को मिला के मैं कह रहा हूं, एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ हम लिंक्ड होने का एक एडिशनल एडवांटेज मिले। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक हमने इस सेटा में एक हमारी उपलब्धि ये रही है कि जो सीबैम का जो एक डर था, उस डर में हमारी जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसमें काफी हानि पहुंचने की एक डर था यूके के साथ, पर हमने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ब्रिटेन के साथ किया है उसके अंडर हम करीबन 85% जो हमारी स्टील एक्सपोर्ट्स है वो यूके सरकार की जो नई सीबीएम की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो क्लाइमेट एडजस्टेड जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो है, सो इसका मतलब 85% हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स है में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, सिर्फ 15% एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत रोकथाम लगेगी, सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी और वो क्लाइमेट एडेप्टेशन की जो कॉस्ट होती है वो 15-20% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा। पर मैं समझता हूं कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा, ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% है और सर्विसेज जो अनदर 50% है, दोनों की प्रोविजंस की गई हैं। जो चीज इसमें शायद आनी चाहिए थी और भी वो इन्वेस्टमेंट की थी कि इन्वेस्टमेंट को भी हम कैसे इसको ला सकें, पर हम यही आशा कर सकते हैं जब ट्रेड बढ़ेगा, सर्विसेज ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, तब हमारी यूके और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है, रफ्तार जो है, वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
0: देखिए, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही है, और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही है, और खास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ऑटो कंपोनेंट्स, टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही हैं। तो अब ज्यादातर जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और आगे उनका और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी ये सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के, तो इनको और ज्यादा आगे ब्रेक थ्रू मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमई के हित हैं उस मद्देनजर उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज्यादा इंक्रीज हो, और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज्यादा, उनको जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगी जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खास करके ये जो अभी हमारा इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उनके जब प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की और ज्यादा बढ़ने की संभावना है और उनको और ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की और उनके और ज्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की

0: संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नजरिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
2: देखिए, अगर आप रोजगार की बात देखें तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो लो लेवल जॉब्स में जो जरूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारी चीजों में, सब चीजों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में वो अब जीरो में आ चुकी है। जीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियां जो हैं उसमें ज्यादातर एमएसएमई हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं, हमारी युवा पीढ़ियों के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से वो एम्प्लॉय होती हैं, उनको नौकरी मिलती है, उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि एक जो डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलॉन्ग विद सीटा के साथ जो हुआ है उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो नौकरी पेशाजीवी जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है। और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से, आईआईएम से जो लड़के लड़कियां निकलती हैं, बाहर ग्रेजुएट करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये सर्ज हर जगह मैं समझता हूं कि जो नौकरी की जो अवसर होती है वो उनकी वृद्धि जरूर होगी।
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5 से 10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
0: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्रैजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, और एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक। उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हरेक 5 से 7 वर्षों में आगे और डबल हो, और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनीफोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए। और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपना टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव चैप्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं। और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं, और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है इनको सपोर्ट करेगा। अब उसका एक ड्यूअल एडवांटेज है, एक तो एमएसएमई की सपोर्ट के साथ उनका जो ट्रैजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इम्प्लीमेंट हो गया है यूके के साथ, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे। दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस। जब उनका इकोनॉमी जॉब स्केल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगी, और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे, और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
2: ये समझौता जरूर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में। इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारी जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, और मैं समझता हूं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफी इंक्लूसिव होगा, हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा, एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा।
1: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि

0: भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है। ये 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है। जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपका डॉक्टर भट्टाचार्य चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
1: शुक्रिया, थैंक
2: यू, धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक तबादला। इसके लेखक हैं विश्वनाथ शिरोडकर, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता संजीव मालवीय।
1: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग। रेखा मैडम, कितनी देर से आ रही है आप? ये ऑफिस है या कोई धर्मशाला?
1: सॉरी, क्या पूछा जोशी जी आपने?
2: मैंने पूछा कि ये ऑफिस है या धर्मशाला।
1: मैं कैसे बता सकती हूँ जोशी जी कि ये ऑफिस है या धर्मशाला? अपने ऑफिस की फाइल देखनी पड़ेगी जोशी जी। किराया नामा भी देखना पड़ेगा, नगर निगम का स्वीकृत नक्शा भी देखना पड़ेगा, तभी बता सकती हूँ कि ऑफिस है या धर्मशाला। वैसे आप मुझसे पूछ ही रहे हैं श्रीमान जी, तो मेरे विचार से सारी दुनिया धर्मशाला है।
2: अभी तक बड़े साहब नहीं आए, पर अब आप मुझे बताएंगी कि आज आप देर से क्यों आई?
1: जोशी जी, क्या बताऊं आपको?
2: अरे कुछ तो बताइए।
1: मैं आने के लिए तैयार हो रही थी कि मेरे मिस्टर,
2: हाँ हाँ मिस्टर,
1: मतलब मेरे पति परमेश्वर।
2: सब जानते हैं आपके मिस्टर मतलब पति परमेश्वर, आगे बोलो।
1: ओहो जोशी जी, मैं तो बता रही थी कि मैं ऑफिस आने के लिए तैयार हो रही थी और मेरे मिस्टर।
2: मिस्टर को क्या हुआ?
1: यानी मेरे पति परमेश्वर सवेरे टीवी देख रहे थे और टीवी देखते देखते अचानक गिर गए, अस्वस्थ हो गए। उनकी हालत देख ऐसा लग रहा था कि मानो अभी बेहोश होने वाले हैं।
2: अरे बाप रे, फिर तो आपने डॉक्टर को बुलाया होगा।
1: ओह नहीं नहीं जोशी जी, मेरे मिस्टर यानी मेरे पति परमेश्वर की हालत ज्यादा खराब होती देख सबसे पहले मैंने टीवी बंद किया। हाँ, फिर उनको पीने के लिए पानी दिया और थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा सुस्त महसूस करने लगे तो मैंने उनसे बार बार पूछा, पर वे कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहे थे। आखिर में जब मैंने फिर से पूछा तो कहते हैं क्रैश हो गया।
2: क्रैश हो गया
1: जी, धड़ाम से गिर गया।
2: धड़ाम से गिर गया,
1: सर्वनाश हो गया।
2: सर्वनाश हो गया।
1: हाँ, तो मैं घबरा गई जोशी जी। मैंने फिर जोर देकर पूछा क्या हुआ, तो बोले शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया।
2: क्या क्या कह रही हो रेखा मैडम, शेयर मार्केट क्रैश हो गया?
1: क्या बताऊं जोशी जी आपको, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया।
2: धड़ाम से नीचे आ गया
1: जी, हाहाकार मचा हुआ है।
2: क्या बता रही है रेखा मैडम?
1: हाँ, मेरे मिस्टर की थोड़ी सी जो बहुत जमा पूंजी थी वो खत्म, समझो
2: जमा पूंजी खत्म
1: जी।
2: रेखा मैडम
1: जी, जी जोशी जी, पर अब अपने बड़े साहब का क्या होगा जोशी जी?
3: बड़े साहब का क्या होगा मतलब?
2: अरे विनोद, अपने बड़े साहब तो शेयर मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं, रोज ट्रेडिंग भी करते रहते हैं ना। रेखा मैडम उन्हीं की बात कर रही है। बड़े साहब तो दिन भर शेयर मार्केट का ही पहाड़ा रटते रहते हैं। अरे रे रे रे रे, अपने बड़े साहब का तो भगवान ही मालिक है, उन पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। अब गए बड़े साहब लंबी छुट्टी पर।
3: जोशी साहब जरा धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। बड़े साहब पर संकटों के काले बादल घिर आए और मुसीबतों के बड़े बड़े पहाड़ टूट पड़े, और घबराकर बड़े साहब लंबे अवकाश पर अंतर ध्यान हो जाएं, उससे पहले मुझे मेरा तबादला कराना है जोशी साहब। वहाँ दूर नागपुर में मेरी बीवी घर में अकेली है, अकेली है।
2: सबकी बीवियाँ घर में अकेली ही होती है, हर ऑफिस में सबके साथ।
1: जोशी जी, क्या कह रहे हैं आप?
2: नहीं नहीं रेखा मैडम, मेरा कहने का मतलब है ऑफिस में अकेलापन नहीं होता ना।
3: जोशी साहब, नहीं, वैसे तो मेरे घर में बच्चे हैं, परंतु मेरी माँ और पिताजी बहुत वृद्ध हैं, बीमार भी रहते हैं। अकेले ही मेरी पत्नी को सब संभालना पड़ता है, ऊपर से मेरी पत्नी को नौकरी पर भी जाना पड़ता है। वो सब कुछ कैसे संभालती होगी बेचारी?
1: क्या कहा बेचारी? अरे विनोद, तू तो कह रहा था कि तेरी बीबी रणचंडी है, आज बेचारी कैसे शादी हो गई?
3: मतलब हम दोनों जब अकेले होते हैं ना तब वो रणचंडी होती है।
4: राजी चाय लाऊं क्या?
3: अरे तेरी चाय से मेरे तबादले का क्या लेना देना। अरे जाए यहाँ से, जाए
4: यहाँ से। बाबू राव सही कह रहा है, जरा पैसे निकालो, चाय मंगाओ भाई, तबादले का मैटर है के नहीं तुम्हारा?
3: चाय चाय चाय
4: बाबू राव, तीन चाय लेकर आओ, अभी लाया था, लाई भी रहता।
3: मगर मेरे तबादले का क्या होगा जोशी साहब, कुछ तो कीजिए।
4: मैं क्या कर सकता हूँ?
3: अरे बस सिर्फ मेरे तबादले भर का देख लीजिए आप तो, बस इतना ही।
2: अरे तुम्हें तुम्हारे तबादले की पड़ी है, हमारे ऊपर कितना संकट आया है मालूम है क्या तुम्हें?
3: अब कौन सा संकट आन पड़ा आप पर जोशी जी?
2: अरे अमेरिका में सबका दीवारा निकल गया है और तुम हो कि अपने तबादले का रोना लेकर बैठे हो। हद है यार विनोद।
3: अरे जोशी साहब, अमेरिका के संकट से हमारे देश का क्या संबंध, हमारी कंपनी का क्या संबंध और मेरे तबादले का क्या संबंध है भला?
2: है ना, संबंध है। मैं बताता हूँ बाबू, अमेरिका में अगर किसी को अच्छी छींक भी आ जाए तो हमारे यहाँ बहुत सो को निमोनिया हो जाता है कि नहीं? तुम्हें इतनी सीधी सी बात समझ में नहीं आती।
5: वहां का संकट यानी कि हमारा संकट नहीं वरन पूरी दुनिया का संकट होता है बाबू।
1: ओहो जोशी साहब, आप क्या बोल रहे हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इस विनोद की बदली का इन सब से क्या संबंध? यूनियन की सचिव होने के नाते मैं हमारी यूनियन को पहले ही विनोद के नागपुर की बदली के लिए प्रबंधन को लिख चुकी हूँ।
2: ये देखिए, कल अमेरिका का शेयर मार्केट धराशाही हो गया, अब आज अपना शेयर मार्केट भी धड़धड़ाता हुआ नीचे गिर गया, फिर अब अपने बड़े साहब भी बेचारे जमीन पर आ जाएंगे ना, मालूम नहीं कितने दिनों तक सदमे में रहेंगे।
3: लेकिन इस सदमे से मेरी बदली का क्या?
2: बदली क्या लगा रखी है बाबू? अरे अमेरिका के संकट के आगे तुम्हारा तबादला महत्वपूर्ण है क्या? एक बार बता दिया ना कि जब अमेरिका का संकट दूर होगा तब हमारे यहाँ का शेयर मार्केट भी संभल जाएगा और इस तरह हमारे देश का संकट भी दूर हो जाएगा। उसके बाद ही तुम्हारे तबादले के बारे में बड़े साहब से चर्चा की जाएगी विनोद बाबू।
3: अरे जोशी साहब, ये सब क्या है?
1: ओहो जोशी साहब, कीजिए ना कुछ बेचारे के तबादले का, पिछली बार भी कितनी दफा इसका तबादला होते होते जू रह गया।
2: क्या कर सकते हैं रेखा मैडम।
4: चाय
1: चाय
4: चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय

0: के साथ समोसे का मजा और बढ़ जाएगा।
1: 100 का नोट क्यों?
0: अरे समोसे आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा।
2: देखिए विनोद बाबू, आपको तबादला कराना है कि नहीं? बाबू राव का 100 का नोट दीजिए पहले।
1: तबादला? 100 का नोट?
2: हाँ हाँ दीजिए, समोसे के बिना तबादला कैसे होगा? 100 का नोट दीजिए आप।
1: ठीक है भाई, ये एक ही कड़क नोट बचा है, ले जा इसे भी तू।
0: अभी लाया।
2: अरे कुन्ने वाली दुकान से लाना बाबूराव।
3: हद हो गई भाई, हद हो गई। शुरुआत में ही विनोद का तबादला होने वाला था
4: और एक हाँ मैडम,
3: बड़ी साहब का नया मकान बन रहा था, इसलिए बड़ी साहब को समय ही नहीं था जोशी जी, और विनोद को भार मुक्त करने के लिए कोई समय नहीं निकाल पाए वो। और उस वक्त हेड ऑफिस से तबादले के आदेश होने के बावजूद बेचारे का तबादला अटक गया। उस वक्त विनोद यहाँ से जा नहीं सका, इसलिए हेड ऑफिस ने किसी दूसरे को वहाँ भेज दिया। अभी शुरुआत में ही विनोद का तबादला होने वाला था, पर बड़े साहब का नया मकान जो बन रहा था, इसलिए बड़े साहब को समय ही नहीं था विनोद को भार मुक्त करने का।
4: वो तो है रेखा मैडम।
3: और उस वक्त हेड ऑफिस के तबादले के आदेश होने के बावजूद बेचारे का तबादला अटक गया। बेचारा विनोद साहब के मकान के लिए कुर्बान हो गया जोशी जी।
2: तो क्या हुआ साहब, लोगों का घर मतलब सिर्फ घर थोड़ा ही होता है रेखा मैडम।
5: तो फिर क्या होता है?
2: साहब का घर मंदिर होता है, माधतों के लिए उनके साहब का घर पवित्र स्थान ही होता है। अब इतने बड़े पवित्र वास्तु के निर्माण में बड़े साहब व्यस्त थे। तुम्हारे तबादले का आदेश मैंने कई बार उनके सामने रखा था विनोद बाबू, पर हर बार बड़े साहब यही कहते थे
6: बाद में देखेंगे।
2: और बाद में देखने की जरूरत ही नहीं रही, तबादला आदेश हेड ऑफिस ने ही रद्द कर दिया था।
3: आश्चर्य है जोशी साहब, पर बड़े साहब के मकान से इस बेचारे विनोद के तबादले का क्या संबंध?
2: संबंध है, संबंध नहीं होता तो इस वक्त विनोद अपने घर अपनी रणचंडी के साथ हो। मतलब कि अपनी बीवी के साथ होता। मैं तो कहता हूँ कि साहब लोगों के घर से ही नहीं वरन हर एक गतिविधि से माथहतों का नजदीक का संबंध होता है। मुझे ही देख लो, मैं अपने बड़े साहब का दायां बायां हाथ नाक कान आंख सब हूँ।
3: गला रह गया जोशी साहब।
2: मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम दोनों? कल के दिन तुम कहोगे बड़े साहब का मुंह पेट। बाप रे, साहब लोगों का पेट कितना बड़ा होता है इसका अंदाज नहीं है तुम लोगों को। परंतु अपने बड़े साहब का पेट इतना बड़ा नहीं है, और मेरा मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा पेट तो बहुत ही छोटा है।
1: अरे जोशी साहब, बड़े साहब का नया मकान बनने के तुरंत बाद भी तो मेरा तबादला हो सकता था ना?
2: बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता था, परंतु बड़े साहब का नया मकान बनने के तुरंत बाद हमारे विभाग के मंत्री महोदय के ऊपर CBI और आयकर विभाग का एक साथ छापा नहीं पड़ा था क्या? कई दिनों तक बेचारे बड़े साहब इसी चिंता में खाना पीना तक भूल गए थे। इतने बड़े संकट का उन्हें सामना करना पड़ा, और तुम्हें अपने तबादले की पड़ी हुई है। क्या आदमी हो तुम लोग यार, दूसरों के बारे में जरा भी नहीं सोचते।
3: जोशी साहब, हम क्या सोचेंगे और क्यों सोचेंगे, छापा मंत्री पर पड़ा, बड़े साहब की पूछताछ हो गई, इन सबसे आम आदमी का या आम मतदाता का क्या संबंध है हमारा?
2: वही तो, आम आदमी को लगता है कि उसका किसी से भी संबंध नहीं, परंतु आम आदमी का संबंध सब बातों से होता भी है और आता भी है। दरअसल इस आम आदमी के कारण ही सारे संकट और समस्याएं हैं। आम आदमी के लिए राजनीतिज्ञों को क्या क्या नहीं करना पड़ता, क्या क्या नहीं सहन करना पड़ता, उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये तुम्हारे जैसे आम आदमी को क्या मालूम।
1: विषय क्यों बदल रहे हो, मंत्री से या आम आदमी से?
7: मेरे तबादले का क्या संबंध है?
3: मैं तो भूल ही गई थी कि मैं यूनियन की सचिव हूँ जोशी साहब। हाँ तो जोशी साहब बताइए, इन सब से विनोद के तबादले का क्या संबंध?
2: बताता हूँ। जिस किसी मंत्री पर भी छापा पड़ता है उसे आम आदमी ही तो चुनकर भेजता है ना। ऊपर से आप सब कहते हैं कि आम आदमी का क्या

0: लाख खोजने पर भी हमारी कंपनी में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
1: मुझे छोड़कर।
0: अरे बड़े साहब ने तो अपना पूरा जीवन ही क्रिकेट को समर्पित कर दिया।
1: कुछ मालूम है तुम लोगों?
2: हाँ, जोशी साहब, फिर वो नौकरी क्यों करते हैं? क्रिकेट ही खेलना चाहिए ना उन्हें।
0: वही तो कर रहे हैं।
2: हाँ, मतलब
0: तुम लोगों को पता है क्या, अपने बड़े साहब को नौकरी क्रिकेट के कोटे से ही मिली। अर्थात अपने बड़े साहब का क्रिकेट का शौक और दीवानगी हेड ऑफिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में है।
3: अरे अरे अरे, अब तो मैं पागल हो जाऊंगा। बड़ा क्रिकेट लेकर बैठे हमारे बड़े साहब का।
0: विनोद बाबू, बड़े साहब के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और बड़े साहब क्रिकेट लेकर नहीं बैठे हैं। क्रिकेट ये एक मैदानी खेल है और बड़े साहब जैसा क्रिकेट का जानकार खिलाड़ी मिलना भी मुश्किल है। अगर बड़े साहब को क्रिकेट का शौक है तो मुझ जैसे और तुम्हारे जैसे मातहत सेवकों को क्रिकेट के और साहब के हमेशा गुणगान करते रहना चाहिए।
3: जोशी साहब, मैं भी खूब बड़े साहब के क्रिकेट की रात दिन तारीफ करने के लिए और गुणगान करने के लिए तैयार हूँ। उनका सब कुछ क्रिकेट मैं हो, यही कामना है। हाथ लगाएं वहां गुदगुदी की बजाय, हाथ लगते ही वहां चौके छक्के हो। वे क्रिकेट की ही पूजा करते रहें और क्रिकेट की ही आरती उतारते रहें, यही मेरी अभिलाषा। जोशी साहब, बड़े साहब ये सब मजे में करें, परंतु मेरे तबादले के बाद।
4: ये तबादला तबादला तबादला लेकर क्या बैठे हो है? बड़े साहब का क्रिकेट महत्वपूर्ण है या तुम्हारा तबादला?
1: मेरी बात ध्यान से सुनो रेखा मैडम। आप भी
0: तुम क्रिकेट सीखो, क्रिकेट खेलते रहो, अच्छी बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में निपुण हो जाओ। एक बार अगर बढ़िया फील्डिंग जमाना आ गई तो समझो सब काम आसान हो जाएंगे, समझे विनोद बाबू?
3: अरे क्रिकेट क्या खाक सीखे, मैंने तो कभी गिल्ली डंडा भी नहीं खेला। मुझे मेरी बदली के अलावा कोई भी बात दिमाग में नहीं आती। अच्छा मुझे बताइए कि क्रिकेट का विश्व कप खत्म होने के बाद भी मैंने मेरी बदली के लिए बड़े साहब से कितनी बार विनती की थी, पर कुछ हुआ? नहीं हुआ। अरे क्या तो बड़े साहब अपनी बेटी की शादी में व्यस्त थे। अब मुझे बताइए कि बड़े साहब की बिटिया की शादी का मेरे तबादले से भला क्या संबंध हो सकता है?
1: कैसे नहीं हो सकता है?
0: संबंध है। बिटिया की शादी तुम्हें क्या हंसी मजाक लगती है? जिसके यहाँ बिटिया की शादी होती है उससे पूछो, बाबुल की दुआएं लेती जा, जहाँ तुझको सुखी संसार मिले। यही रिकॉर्ड बजा बजा कर बड़े साहब ने अपनी लाडली को डोली में बिठा कर विदा किया था। बड़े साहब अपनी लाडली के सुख संसार के लिए जी जान से लगे हुए थे, और उसमें तुम्हारे तबादले की कोशिश कहां से करते विनोद?
4: अरे अरे तुमसे यार है ना, दूसरों का सुख दुख देखा नहीं जाता यार।
3: ये क्या कह रहे हो जोशी साहब, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, करबद्ध निवेदन है आपसे, करबद्ध निवेदन है। जोशी जी कुछ तो कीजिए।
5: गुड इवनिंग सर।
6: गुड इवनिंग।
7: नमस्कार साहब।
8: जानता हूँ, सुबह की दोपहर हो गई इसलिए तुरंत याद दिलाने की जरूरत नहीं। जोशी
7: सर, सर सर सर
8: क्या रिपोर्ट है आज की?
7: सब ठीक,
8: सब लोग काम कर रहे हैं ठीक से ना? या हमेशा की तरह गप्पे हाकी जा रही है?
7: हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सर, नहीं सर।
8: जोशी
7: जी जी जी जी सर,
8: जरा चाय के लिए भेजो किसी को।
7: अरे बाबूराव, दो चाय मारना बड़ाई मार के खाते में लिख देना विनोद के।
8: अरे बड़ी थकान महसूस हो रही है।
0: कितना बोझ है काम का आपके ऊपर, घर की चिंता सर, बाहर की चिंता सर, ऑफिस की चिंता। इस विनोद की चिंता पर कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती सर।
1: तबीयत तो ठीक है ना सर आपकी? घर जाकर आराम करें ना सर, यहाँ हमें ना सर में सब सवाल लूंगा। जोशी
8: ठीक है, जोशी ठीक है। विनोद
3: जी सर, जी सर
8: तुम्हारे काम का क्या?

0: बताए हुए सारे पत्र लिख लिए कि नहीं? और सुनो, वो भुगतान के बिल्स भी सबको भेजे या नहीं?
1: जी सर।
0: अरे जी सर, यार क्या लगा रखा है, इतने सवाल पूछे सबका जवाब जी सर, ए क्या है ये सब तमाशा?
1: नहीं सर, यस सर, जी हाँ सर, मतलब सर, दुबई एंड कंपनी को सोमवार सुबह 10 बजे आपसे मिलने के लिए बुलाया है।
0: इतनी जल्दी सुबह 10 बजे किसको समय दे रखा है? अरे तुम कभी नहीं सुधरोगे।
1: सर अपना ऑफिस तो सुबह 10 बजे शुरू होता है ना। हाँ, अब आपके आने का कोई समय निश्चित नहीं तो
0: शट अप, क्या कहना है तुम्हारा? मैं समय पर नहीं आता।
2: नहीं सर, उसका ये कहना नहीं है। उसका कहना है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं ना, इसलिए आपका ऑफिस आने का कोई निश्चित समय नहीं हो सकता ना सर। ऑफिस में
0: जोशी
2: जी जोशी
0: हर समय विनोद की तरफदारी करते रहते हो। ऑफिस का पूरा ढर्रा बिगाड़ कर रख दिया है। मुझसे लिखवा लो, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अरे साहब, यानी क्या कोई रेलवे का इंक्वायरी ऑफिस है कि हर कोई 24 घंटे में पूछताछ करता रहे?
1: सॉरी सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप नाराज न हो सर, एक निवेदन था सर। एक
0: तुम और निवेदन? बोलो, निवेदन ही करते रहोगे या काम धाम भी करोगे? काम के नाम से तो नकार घंटा बजता है हमेशा। ये मुझे नहीं आता, वो मुझे नहीं जमता, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, और ये काम तो मुझे मालूम ही नहीं। अरे बाबा, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ आता है क्या?
1: मुझे सब काम आते हैं।
0: सुनो जोशी सुनो, अरे ढिंढोरा पीटो, सब जगह मुनादी करवाओ, इस आदमी को सब काम आता है। अरे बाबा, 20 साल हो गए, एक तरक्की नहीं हो पाई, ये रहा है सब जानता हूँ। विनोद प्यारे, अब मुझे ये बताओ, तुम्हें कौन कौन से काम नहीं आते?
1: मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता सर, मुझे शेयर मार्केट भी ऊपर नीचे करना नहीं आता, और सर मुझे ऐसा कुछ भी करना नहीं आता जिससे मेरे घर पर छापा पड़े।
0: जोशी
2: सर,
0: अरे क्या हुआ है इसे?
2: सर बावला हो गया।
0: पागल तो नहीं हो गया है विनोद? क्रिकेट क्या, शेयर मार्केट क्या, छापा क्या, जांच क्या, अरे जोशी क्या बड़बड़ा रहा है विनोद? ऑफिस के काम से इन सब का क्या संबंध?
1: संबंध है सर। जोशी साहब कह रहे थे कि बॉस इज ऑलवेज राइट।
2: यस।
1: और सर, जो आपकी पसंद वो हमारी भी पसंद होनी चाहिए ना। जाने दीजिए सर, ये बताइए अब आपकी तबीयत कैसी है?
0: मेरी तबीयत को क्या हुआ है?
1: नहीं, जोशी साहब कह रहे थे कि शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया है, और अब अपने साहब का भी कुछ सही नहीं लगता।
0: क्या कहना है तुम्हारा, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा?
1: नहीं, ऐसा नहीं सर, पर आपने शेयर बाजार में अपनी बहुत सारी पूंजी लगा रखी है ना, इसलिए आपका कुछ ज्यादा नुकसान हो गया होगा ना।
0: उसका क्या, और ऑफिस के काम से उसका क्या संबंध
1: है? संबंध है सर। अब देखिए, शेयर मार्केट गिर गया इसलिए मेरा तबादला नहीं हो सकता, इसके पहले हमारे विभाग के मंत्री के घर पर छापा पड़ा इसलिए मेरा तबादला नहीं हो सका, उसके पहले मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता था इसलिए मेरा तबादला नहीं हो सका, और उससे भी पहले आपकी बेटी का विवाह था इसलिए मेरा तबादला नहीं हो सका, और सर उसके भी पहले आपका नया मकान बन रहा था इसलिए मेरा तबादला नहीं हो सका। और इससे पता पड़ता है कि इन सब से मेरा और मेरे काम का संबंध है, इसलिए पूछा आपका स्वास्थ्य ठीक है ना सर।
0: जोशी सर, ये सब क्या चल रहा है? ये ऑफिस है या किसी गांव का चौपाल? अच्छा जोशी
2: सर,
0: तो मेरी गैर हाजिरी में

0: होता है इस
1: हाँ सर हाँ नहीं नहीं नहीं सर नहीं सर सर सर नहीं नहीं नहीं सर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर, इस विनोद का तबादला नहीं हो पा रहा है इसलिए बावला हो गया सर, माफ कर दीजिए सर इसको।
0: नसीब अपना अपना पगलाया नहीं है, नहीं तो मेरे कुछ खैर नहीं
1: थी। सर सर सर सर प्लीज सर सर कुछ कीजिए ना विनोद की ट्रांसफर का सर, प्लीज सर कुछ कीजिए ना।
2: हाँ सर यही तो निवेदन कर रहा था विनोद, इसके घर की हालत बहुत ही खराब है साहब, इसकी पत्नी अकेली है, माँ बाप बुजुर्ग है, बीमार रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब इसके, सब इसकी पत्नी को अकेले ही संभालना पड़ता है, कुछ तो कीजिए ना सर, आपका आपको बहुत उपकार होगा।
0: मैं आपकी बात समझ रहा हूँ रेखा मैडम, लेकिन फिलहाल तो ये संभव नहीं लगता।
2: क्यों साहब?
1: क्यों साहब?
2: नहीं,
0: अभी हाल ही में टीवी पर समाचार देखकर आ रहा हूँ।
3: तो उस समाचार से मेरे तबादले का क्या संबंध है?
0: आज ही चुनाव की घोषणा हो चुकी है बरखो।
3: तो उस चुनाव से मेरे तबादले का क्या संबंध है?
0: संबंध कैसे नहीं, अब आचार संहिता लागू हो गई है, अब तो पत्ता हिलाने के लिए भी मंजूरी चाहिए।
2: तो साहब तब तक विनोद क्या करेगा?
0: चुनाव खत्म होने का इंतजार और क्या। जी सर कब? 8 दिन पहले जी, पूरा दफ्तर शिफ्ट करना है। कहाँ? औरंगाबाद से नागपुर। जी सर, मेल आज ही भेजा है, चुनाव के बाद तुरंत पूरे स्टाफ का नागपुर तबादला। ओहो जी सर, मैं समझ गया, पूरे स्टाफ का नागपुर तबादला। जी सर, सबको बताता हूँ सर। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर।
4: सर, सर सर क्या हुआ? हेड ऑफिस से फोन था, किस ऑफिस को शिफ्ट करना है सर, किसका तबादला सर?
0: बताता हूँ, विनोद के लिए खुशखबरी है, उसका तबादला नागपुर हो गया है।
3: क्या? अरे वाह, कैसे, कब?
1: अरे अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, अरे बेचारे की अनेक वर्षों की इच्छा पूर्ण हुई, आनंद है विनोद के लिए। अरे सर मजा आ गया।
0: रुको रुको रुको रुको, विनोद के लिए तो ये खुशी की बात है, परंतु हम सबके लिए बुरी खबर है, हमारी कंपनी का विस्तार हो रहा है, उत्तर भारत का पूरा बाजार पड़ा है, वो फिलहाल नागपुर से संचालित होना है, यहाँ औरंगाबाद का काम पुणे से होगा, अतः यहाँ का पूरा ऑफिस मैं स्टाफ के नागपुर शिफ्ट करना है।
1: ऑफिस शिफ्ट करना है।
0: 8 दिन पहले ही निर्णय हो चुका है, फिलहाल विनोद को अस्थाई रूप से वहाँ भेजना है, वो वहाँ जाकर आरंभिक तैयारी करेगा और देखभाल करेगा, फिलहाल नागपुर में हमारे 2 ही आदमी अपने घर से ही काम देखते हैं, अब वहाँ पूर्ण रूप से एक शाखा खोलने का तय हो गया है, हेड ऑफिस बड़ा भवन पहले ही तय कर चुका है, और चुनाव के बाद हम सब लोगों का नागपुर तबादला होगा।
1: अरे सर मेरा सारा परिवार यही रहता है, अब इस उम्र में तबादला बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन है।
5: मेरा तो हो गया।
1: 1 मिनट सर, कैसे होगा ये? और सर आपने भी तो अपना यहाँ मकान बनाया सर, उसका क्या होगा? और रेखा मैडम, और रेखा मैडम आपके पति का कितना बड़ा व्यवसाय है, अरे कैसे होगा?
0: मैं क्या बता सकता हूँ आप सबको, पर फिलहाल विनोद तुम्हारा अभिनंदन।
6: विनोद बाबू

0: भाई बहुत बहुत बधाई, अब तो 1000 का नोट निकालिए, सबके लिए मालपुए ले आता हूँ चाचा अभी मैं।
1: बाबू
2: अभी आपने सुना नाटक तबादला। इसके लेखक थे विश्वनाथ शिरढोनकर। पात्रों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: बड़े साहब बी एन बोस, जोशी संजीव मालवीय, विनोद रवि कुमार सोनी, रेखा सुधा शर्मा और बाबूराव संतोष अग्निहोत्री। इस नाटक के निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे संजीव मालवीय।
3: अभी आप सुन रहे थे नाटक तबादला।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आपको सुनवा रहे हैं प्रकृति वाहने का संतूर पर बजाया राग पूरिया कल्याण। तबले पर आपके साथ हैं उल्लास राजहंस।

0: शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे प्रकृति वाहने का संतूर पर बजाया राग पूरिया कल्याण। तबले पर आपके साथ थे उल्लास राजहंस। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं हिंदी में समाचार। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स। तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है। अभी 10 यूनिट लग चुके हैं। उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में